सुप्रभात। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं और हमारी आज की प्रसारण सेवा अब आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक

0: सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना, यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारतीय मनीषा की इस चिंतन धारा में सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो, न केवल समस्त धरती पर रहने वाले मनुष्य ही समाये हुए हैं, न केवल प्राणी मात्र अपितु समस्त सृष्टि, जिसमें पशु पक्षियों के साथ ही साथ जल और समस्त हरितिमा को सजाने वाले पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं, ये वासुदेव कुटुंबकम का प्रत्यक्ष श्रेष्ठ उद्घोष है। इस सारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी एक कुटुंब के समान ही नहीं है, बल्कि सारी मानव जाति एक कुटुंब ही है। एक व्यक्ति का दुख सबका दुख है, और धरती के एक छोर पर रहने वाले एक व्यक्ति का सुख धरती के दूसरे छोर पर रहने वाले दूसरे व्यक्ति के सुख के साथ भी जुड़ा हुआ है। भूमंडलीकरण और संचार सुविधाओं ने जिस सत्य को आज हमारे सामने इतने करीब ला दिया है, उस सत्य को सृष्टि को रचने वाले ने सबसे पहले ही स्थापित कर रखा है। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये सागर, ये नदियां, ये पहाड़, ये जंगल, ये निरंतर अपने अनुशासन में बदलता मौसम का चक्र, पूरे संसार में एक सी व्यवस्था चल रही है। और सह अस्तित्व में ये सारा संसार गुथा हुआ है। हिमालय की बर्फ पिघलती है या हिमालय के पहाड़ों के जंगल कटते हैं तो बलशाली अमेरिका भी चिंतित होता है। बूंद जब बादल से धरती की ओर गिरती है, जब नदी सागर से मिलने दौड़ पड़ती है, उसमें वासुदेव कुटुंबकम की गूंज सुनाई देती है। वृक्ष पर जब फूल खिलता है या फल पकता है तो उसमें भी वासुदेव कुटुंबकम की सुगंध और मिठास फैल जाती है। संसार के समस्त मनुष्यों ने, युग प्रवर्तकों ने, धर्मों ने, मजहबों ने इसी भावना का प्रतिपादन किया है। सारी मानव जाति एक कुटुंब के समान है। सभी प्राणियों में बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ताकि इस पृथ्वी पर मानव जाति बनी रहे और अपने सर्वोच्च को प्राप्त कर सके। मानव जाति का इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने अब तक जितना विकास किया है, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें यही वासुदेव कुटुंबकम की भावना ही मूल तत्व के रूप में विद्यमान रही है। किंतु यह भी सत्य है, मनुष्य में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां साथ साथ रहती हैं, और इन आसुरी प्रवृत्तियों ने मानव जाति का कोई कल्याण नहीं किया है। युद्ध और नरसंहारक शस्त्रों की होड़ ने समस्त मानव जाति को भयग्रस्त कर रखा है। इसी भय से मुक्त होने और शांति के साथ मानव कल्याण को दुनिया के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सृजन किया गया। हम भारतीयों ने वासुदेव के विराट स्वरूप की कल्पना करके जिस तरह सारी मानव जाति सहित समस्त सृष्टि को एक कुटुंब माना है, उसी को वेदों की ऋचाओं में इस तरह प्रतिष्ठित किया गया है। हम सबकी कल्पना एक हो, हृदय एक हो, मन समान हो, जिससे उपजे सुंदर सम्मति, सह अस्तित्व भावना सब में गतिमान हो। यही वो भावना है जो सुनामी की लहरों के आतंक को दूर करने के लिए सारी दुनिया एक कुटुंब की तरह बन गई और एक दूसरे की सहायता की। सारी मानव जाति का कल्याण हो। ओम शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन सर्वे भवन्तु सुखिनः। वाचन स्वर था प्रेम कुमार सडाना का। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ मातृवंदन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में मातृवंदन। आइए अब आरंभ करते हैं प्रभु आराधना, प्रथम पूज गणपति वंदना के साथ। हर नई शुरुआत का पहला नाम, हर शुभ कार्य का पहला प्रणाम, भगवान श्री गणेश। आप विघ्नों को हरने वाले हैं, सुख समृद्धि के दाता हैं, बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता। हे गणपति बप्पा, हम आपको नमन कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए।

कभी पुकार में शिव, कभी मौन में शिव, कभी आंसुओं में शिव, तो कभी मुस्कान में शिव। बस श्रद्धा भरी आंखों की जरूरत है, क्योंकि भोले शंकर कहीं छुपे नहीं हैं, वो तो कण कण में विद्यमान है, हर उस हृदय में विराजमान है जहां प्रेम, करुणा, सत्य और श्रद्धा का दीपक जलता है। भक्त की पुरख पुकार दरअसल अपने भीतर बसे शिव को खोजने की यात्रा है। आइए नमन करें उस भोले शंकर को।

माँ को शक्ति कहें तो वो दुर्गा है, करुणा कहें तो वो भवानी है, स्नेह कहें तो वो जननी है, और विश्वास कहें तो वो अंतर्यामी है। जीवन की हर धड़कन में, हर प्रार्थना में और हर आशा में माँ का स्वरूप ही झलकता है। माँ के चरणों में पहुंचकर शब्द छोटे पड़ जाते हैं, वहां केवल भाव बोलते हैं, आंसू प्रार्थना बन जाते हैं और श्रद्धा आरती बन जाती है।

गिरधर गोपाल की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये भावना हमें निराश नहीं विनम्र बनाती है। कर्म हमारे हाथ में है। जब अहंकार मिटता है तब ईश्वर का प्रकाश दिखाई देता है, जो हमें जो भक्त स्वयं को करता नहीं वरन प्रभु इच्छा का साधन मानता है, उसके जीवन में शांति और संतोष का वास हो जाता है।

श्रोताओ, प्रभु का प्रभाव चंदन की सुगंध जैसा है। चंदन स्वयं तो सुगंधित होता ही है, उसके संपर्क में आने वाली वस्तु भी महक उठती है। ठीक वैसे ही संतों का सानिध्य जीवन में सद्भाव, शांति और विवेक का संचार करता है। ये संगत हमें संसार से भागना नहीं सिखाती, बल्कि संसार में रहते हुए मन को निर्मल और संतुलित रखना सिखाती है। जीवन की राह में कई मोड़ आते हैं, लेकिन जब संतों की वाणी और सत्संग का प्रकाश साथ हो तो राह आसान लगने लगती है।

जब हृदय में भक्ति का दीप जलता है तब साधारण सा मन भी मणिमय आसन बन जाता है और ईश्वर स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं। ईश्वर को सोने चांदी के सिंहासन नहीं, प्रेम और विश्वास से सजा हुआ हृदय प्यारा है, और जहाँ सच्ची भक्ति होती है प्रभु का निवास भी वही होता है।

इसी जैन भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काकभुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो उज्जैन चले गए थे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी अनुराधा पोडवाल। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का।

आज सायं 7:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम गरीब कल्याण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समय याद रखिएगा, सायं 7:10।

प्रातः 7:30 पर शैल संगीत कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे लता पांडे और साथियों के गाए कुमाऊनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा प्रातः 8:30 पर। सुबह 9:45 पर सेहत कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे

ये भेंटवार्ता डॉक्टर योगेश्वरी कृष्णन से विकास चमोली की बातचीत, विषय रहेगा दांतों की उचित देखभाल। प्रातः 10:35 पर आप सुनेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में शशि जोशी और रुचिका रानी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत, और सुबह 11 बजे अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप सुनिएगा व्हाट्सएप फरमाइश।

0: दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में होंगे आयुषी चौहान के गाए भजन। दोपहर 12:30 पर घर गृहस्थी कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी वार्ता छुट्टियों में बच्चों का व्यक्तित्व विकास। वार्ताकार होंगी श्रीमती पूनम राणा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। अपराह्न 4:02 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे हरे कृष्ण शाह से शुद्ध सारंग और मांड में सितार वादन। अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम में आज की अदाकारा होंगी नरगिस। सायं 5:10 पर युवा साथी सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। सायं 5:45 पर पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम होता है ग्राम जगत। आज इसमें आप सुनेंगे खिरसू श्री संपत सिंह रावत से विनय ध्यानी की बातचीत पर्यटन स्थल खिरसू विषय पर। किसान साथी कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं सायं 7:00। आज इसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता इस माह किसान साथी क्या करें डॉक्टर योगेंद्र पाल से जानकारी। हिंदी वार्ता का समय रहेगा रात्रि 8:00 वंदे मातरम आजादी के आंदोलन की आत्मा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ममगई की वार्ता। रात्रि 10:00 कवि गोष्ठी होगी श्री विजेंद्र हर्ष, श्रीमती मीरा भारद्वाज और श्री केपी सिंह होंगे कवि। श्रोताओं ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यान्मार भारतयोः मध्ये सुरक्षा सम्पर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृति संरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणां उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरंगस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुं उद्बुद्धवान्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप गर्म हवाएं ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेन्दु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादश दिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादश दिनांके भविष्यति। एकोननवति वर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। पञ्चाशदधिक ऊनविंशति शततमाद् वर्षात् सप्तत्यधिक ऊनविंशति शततमं वर्षं यावत् चलचित्र संगीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीय भाषासु कृत कार्याणां कृते एषा वयोवृद्ध गायिका प्रसिद्धा आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और

0: विशाल में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुरवे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5 से 9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till the 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will expand his cabinet today. 35 new ministers will be inducted into the Council of Ministers. The swearing-in ceremony will take place at Lok Bhavan at 11 a.m. The fresh inductions will significantly scale up the Adhikari administration, which took charge the 9th of May with a core team of 5 cabinet ministers. With this expansion, the total strength of the state cabinet will rise to 41, strictly keeping with the constitutionally mandated 15% limit for the 294-member West Bengal Assembly. The notification for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states will be issued today. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to polls. Former Prime Minister and JDS leader H.T. Devagowda, Union Ministers and BJP leaders George Kurian and Ravneet Singh, the leader of the opposition in the Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge, among the members who are completing the terms this month. In Maharashtra, ruling Mahayuti Alliance has finalized the seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Maha Vikas Aghari had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats. Shiv Sena UBT 4 seats and Sharad Pawar led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nander seats are still underway. Today is the last day for filing nominations for the Legislative Council polls. Holy relics of the Arahat Sariputra and Arahat Mahamogalana were ceremonially enshrined at the Ganden Theglan Ching Monastery in Ulaanbaatar, Mongolia, on the occasion of Buddha Purnima 2026. Arahat Sariputra and Arahat Mahamogalana are the two chief disciples of Lord Buddha. The Union Ministry of Culture stated that the relics have been brought from India for a 10-day exposition until the 10th of June. The exposition was inaugurated in the presence of Assam Governor Lakshman Prasad Acharya and the Ambassador of India to Mongolia, Atul Malhari Gotsarf. Prime Minister Narendra Modi had announced the exposition during Mongolian President Ukhnagin Khurelsukh's visit to India in October last year. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women wrestlers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze in Da Nang, Vietnam. Leading the charge, Diksha in the 43-kilogram category and Garima in the 73-kilogram category clinched gold medals with dominant victories in their respective finals. India added 3 silver medals through Nikita in the 49-kilogram, Antara in the 65-kilogram and Tania in the 69-kilogram categories. In cricket, Royal Challengers Bengaluru won the IPL title for the second consecutive year, beating Gujarat Titans by 5 wickets in the final match at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Put into bat first, Gujarat Titans posted 155 for 8 in the stipulated 20 overs. Washington Sundar emerged as the top scorer with an innings of unbeaten 50 of 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के 7:10 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत चित्र रागिणी।

राग भैरवी पर आधारित ये गीत हमने लिया है किनारा फिल्म से, गुलजार की बोल और आर डी बर्मन का संगीत, और आवाज लता मंगेशकर के साथ है भूपेंद्र सिंह।

कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सबके लिए संगीतकार जयदेव द्वारा रचित राग मांड पर आधारित है। फिल्म है दो बूंद पानी। आशा भोसले की सुरीली आवाज और कैफी आजमी की शब्द रचना।

0: श्रोताओ, इसी गीत के साथ चित्ररागिणी यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। अब श्रोता सुने उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। पहले मुख्य समाचार। देशभर में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। किसानों को मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती और कृषि भूमि संरक्षण के प्रति किया जाएगा जागरूक। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ 133 नए अधिकारी आईटीबीपी में शामिल हुए। राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा के लिए शपथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। देशभर में आज से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। इसका राष्ट्रीय शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों और खेती के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताया है। अभियान के तहत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और नकली खाद बीज की पहचान जैसे विषयों पर जागरूक किया जाएगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि विभाग भाग लेंगे। वहीं खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ आज देहरादून के सैसपुर स्थित ढाकी क्षेत्र से किया जाएगा। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 1 जून से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों, कृषि विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद कर कृषि भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि संरक्षण के साथ साथ किसानों के सम्मान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी है। मसूरी स्थित आईटीबीपी अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के साथ 133 नए अधिकारी बल में शामिल हो गए। 50 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अधिकारियों ने राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ ली। समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों को आईटीबीपी की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा करने का संदेश दिया।
2: जहाँ सामान्य जीवन की कल्पना भी कठिन हो जाती है, वहाँ आईटीबीपी का जवाब उनके ऑफिसर, उनके सभी साथीगण पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ राष्ट्र की सुरक्षा में और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से, राष्ट्र भाव से तैनात रहते हैं।
1: कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी देश की सीमाओं की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आईटीबीपी के इस बैच में डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य उच्च शिक्षित युवा शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार, सैन्य प्रशासन और नेतृत्व क्षमता से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वहीं नवनियुक्त अधिकारियों ने कहा कि वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश सेवा के लिए तैयार हैं।
3: बचपन से जैसे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के होने के कारण आईटीबीपी को हम देखते रहते थे, आईटीबीपी का जो काम है, और हम एक एस्पिरेशन भी रखते थे कि आईटीबीपी में एक अधिकारी पद पर आए। तो आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का पल है कि मैं आईटीबीपी में एक अधिकारी के तौर पर पास आउट हो रहा हूँ।
4: जो फौज की एक तरीके से लाइफस्टाइल है, वो सिविलियन लाइफस्टाइल से थोड़ी हटके है। जो फिजिकल ट्रेनिंग को जिस तरीके से महत्व दिया जाता है, आपकी हेल्थ भी एक तरीके से मैनेज रहती है और साथ में आप हर वक्त किसी न किसी काम में एंगेज रहते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जो अपनी फिजिकल हेल्थ को देखते हुए और साथ में राष्ट्र सेवा के लिए चाहते हैं कि आगे उसमें अपना करियर बनाए, तो फौज में
5: आए। 6 का प्रयत्न है, आखिर आज पासिंग आउट परेड के रूप में हम बाहर आ रहे हैं। एक सिविलियन की तरह आए थे, अभी हम एक अच्छे फौजी की तरह निकल रहे हैं।
1: चमोली जिले की सीमांत नीति घाटी में कल नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ हुआ। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन के पहले दिन कल रिमखिम नीति मलारी के बीच 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 117 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं मलारी नीति मलारी 42 किलोमीटर अल्ट्रा रन में 118 प्रतिभागी शामिल हुए। इस 3 दिवसीय आयोजन में आज और कल 5, 10 और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। समापन अवसर पर गमसाली से मलारी के बीच 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
6: के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात खेले गए आईपीएल के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। बेंगलुरु की ओर से रसिक सलाम डार ने 3 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोस हेजलवुड ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 ओवर में 5 विकेट खोलकर 161 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन की मैच विजयी पारी खेली। गुजरात की ओर से राशिद खान ने 2 विकेट लिए। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीजन के अंत में वैभव सूर्यवंशी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी जीती और सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी बने। कगिसो रबाडा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की। आगामी मानसून को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मानसून से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट।
7: जिलाधिकारी ने सड़क, विद्युत, पेयजल, सिंचाई, नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों को अपने स्तर पर टास्क फोर्स, कंट्रोल रूम और वॉर रूम स्थापित कर जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सड़कों पर संचालित प्राथमिकता वाली जनहित परियोजनाओं के कार्य 7 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजनाओं के पूरा होने के बाद संबंधित सड़कों की मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य तत्काल शुरू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को नदी, नहरों और बरसाती नालों के चैनलाइजेशन कार्य शीघ्र पूरा करने, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की निगरानी बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर वाटर पंप के साथ टास्क फोर्स तैनात करने को भी कहा गया। जिलाधिकारी ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की नियमित निगरानी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को भी कहा गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
1: बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से लौटते समय लापता हुए पर्यटक की तलाश कल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। पर्यटक की खोज के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: देश भर में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। किसानों को मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती और कृषि भूमि संरक्षण के प्रति किया जाएगा जागरूक। मसूर स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ 133 नए अधिकारी आईटीबीपी में शामिल हुए। राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा के लिए शपथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लता पांडे और साथियों के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: शैल संगीत कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं लता पांडे और साथियों के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: लता पांडे और साथियों के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ शैल संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
6: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
7: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
7: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
9: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
7: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
10: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार,

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड प्वाइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार देहरादून। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। आज के अंक के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रुति शर्मा। श्रोताओं, धूप की कितनी भी कड़ी हो छांव बनकर साथ रहते हैं। वो माता पिता ही हैं जो मजबूत सजर से खड़े रहते हैं, हमारी हर एक जिद को हंसकर पूरा करते हैं। खुद फटे कपड़ों में रहकर हमें शहजादा कहते हैं। जड़ हैं वो हमारे संस्कारों की, तना है हमारी हिम्मत का। उनके साये में ही मिलता असली सुख इस जन्नत का। मांगे बिना जो सब कुछ देते, वो खुदा का रूप होते हैं सचमुच माता पिता, हमारी जिंदगी के सबसे मजबूत वृक्ष होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज है पेरेंट्स डे, माता पिता के सम्मान का दिन। वैसे तो हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता का रोज ही सम्मान करें, वो उसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, पर आज कुछ विशेष करते हैं और अपने माता पिता को, जो एक मजबूत और घने वृक्ष की तरह होते हैं, जो धूप आंधी और हर तूफान को झेलते हैं ताकि अपने बच्चों को ठंडी और सुरक्षित छांव दे सकें। मजबूत पेड़ को बनकर वो हर आंधी को हमसे बचा लेते हैं। माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, नैतिकता और हिम्मत की जड़ें देते हैं और उन्हें हर जिंदगी के थपेड़ों से बचा कर रहते हैं। इस बार संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ की थीम है विश्व माता पिता दिवस पर टुगेदर फॉर पेरेंट्स, यानी इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए केवल माता पिता अकेले जिम्मेदार नहीं, बल्कि पूरा समाज, समुदाय और सरकारों को भी आगे आकर माता पिता को सही संसाधन, मानसिक सहयोग और नीतियां प्रदान करनी चाहिए। विश्व माता पिता दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल 1 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है आभार व्यक्त करना अपने माता पिता के प्रति, उनके निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सम्मानित करने का ये दिन है।

शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर दिन परिवार के मूल्यों और माता पिता के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि माता पिता हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं। इसलिए हम सभी श्रोताओं की ओर से और समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से हर माता पिता को सादर प्रणाम और आज के दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप ही हैं जो हमें चलना, बोलना और जीवन जीना सिखाते हैं। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आप सबको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

श्रोताओं, अब एक नजर आज के समाचार पत्रों पर। मौसम खुलते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार सुबह 9:30 पर एहतियातन रोकी गई थी केदारनाथ यात्रा। उमड़ा आस्था का सैलाब, 17.51 लाख से अधिक लोगों ने किए चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन। देश दुनिया के पर्यटक आज से विश्व धरोहर फूलों की घाटी का कर सकेंगे दीदार। घांघरिया के पास स्थित घाटी का प्रवेश द्वार सुबह 8 बजे खोला जाएगा। शुरुआत में घाटी की सैर के दौरान पर्यटकों को लंगी नाले में हिमखंड के साथ 20 से अधिक प्रजातियों के रंग बिरंगे फूलों का होगा दीदार। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर रविवार को एशियाफाइड वर्ल्ड स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। होलकर एजुकेशनल ट्रस्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर उत्सव समिति एवं ADFI वर्ल्ड स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। चार धाम सुरक्षित संस्कार अभियान के तहत सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर तीर्थ यात्रियों और आमजन को जागरूक किया गया। इस मौके पर बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग वितरित किए गए, वहीं मोटरयान अधिनियम और दून को हरित बनाने का भी संकल्प लिया गया। वर्षों बाद मौसम रहा मेहरबान, मई में ठंड का एहसास, 9 डिग्री गिरा पारा। बर्फबारी में हुई मई की शुरुआत आखिरी दिन तक जारी रही। कुछ एक दिनों को छोड़ दें तो पूरा महीना बारिश और आंधी तूफान के चलते ठंडा ठंडा रहा। इतना ही नहीं, इस बेमौसम बारिश को और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी के बीच सुहावने मौसम का एहसास करा दिया। ये थी अखबार की सुर्खियां। अब एक नजर आज के इतिहास पर। आज के दिन 1 जून 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। 1 जून 1880 को इस दिन पहली सार्वजनिक टेलीफोन सेवा की शुरुआत की गई थी। 1 जून 1922 को आज ही के दिन रॉयल उस्टर पुलिस की आधिकारिक तौर पर स्थापना की गई। 1 जून 1930 को भारत की पहली लग्जरी ट्रेन डेक्कन क्वीन बॉम्बे वीटी से पुणे के बीच चली। आज के दिन एक भारतीय अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया, नरगिस दत्त का भी जन्म हुआ था। उनकी पहली फिल्म थी तलाश हैक, महज 6 साल की उम्र में एक बच्चे के रूप में बनाई गई थी। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अभिनय किया था। बाद में 1942 में उन्होंने फिल्म तमन्ना में एक अभिनेत्री के रूप में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उसके बाद हुमायूं, बरसात, आंधी आदि में भी दिखाई दी। उन्होंने रात, अंदाज, जान पहचान, आवारा अंबर, अनहोनी, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, परदेसी, मदर इंडिया, लाजवंती, काला बाजार, यादें और रात और दिन जैसी कई फिल्मों में काम किया। 1958 में पद्मश्री की उपाधि पाने वाली वे पहली अभिनेत्री थी। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। कार्यक्रम में आगे भी बातचीत होती रहेगी। अभी आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आज है विश्व दुग्ध दिवस। हर वर्ष 1 जून को ये मनाया जाता है। ये दिवस हमें दूध के पोषण, महत्व और डेयरी क्षेत्र के योगदान की याद दिलाता है, क्योंकि दूध केवल एक पेय नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, शक्ति और संतुलित पोषण का आधार है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक ये हमारे शरीर को आवश्यक कैल्शियम, प्रोटीन और अनेक पोषक तत्व प्रदान करता है। किसानों की मेहनत, पशुपालकों का समर्पण और डेयरी उद्योग की निरंतर सेवा हमारे घरों तक दूध पहुँचाती है। जीवन की सेहत भरी राह में दूध एक ऐसा साथी है जो हर उम्र में पोषण और ऊर्जा का संदेश देता है। विश्व दुग्ध दिवस हमें स्वस्थ जीवन और किसानों के अथक परिश्रम के प्रति सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज की नींव है संतुलित पोषण। श्रोताओं, इसी पर एक फिल्म बनी थी, मंथन। ये केवल फिल्म नहीं थी बल्कि भारत की श्वेत क्रांति आंदोलन की सशक्त कहानी थी। यह उस संघर्ष, विश्वास और सामूहिक शक्ति का चित्रण थी जिसमें ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई। श्याम बेनेगल की इस फिल्म ने कहानी दूध उत्पादक किसानों के सहकारी आंदोलन और उनके सामाजिक प्रभावों को दर्शाती है और इसके कलाकारों के अभिनय को इस फिल्म को यादगार बना दिया। इस मंथन फिल्म में हम समाज के साधारण लोग एकजुट होकर अगर अपने अधिकारों और विकास के लिए आगे बढ़ते रहे ना, तो इस परिवर्तन की नई धारा को जन्म दे सकते हैं, इस फिल्म ने हमें बताया। ये फिल्म ग्रामीण भारत की शक्ति, आत्मविश्वास और सहकारिता की भावना का जीवंत दस्तावेज है। दूध की हर बूंद किसान की मेहनत और सपनों की चमक छिपी है। आइए इसी पर आपको सुनवाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत सा गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जाता है। 1 जून को दुनिया के कई देशों में बच्चों के अधिकारों, कल्याण और उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बच्चों के बुनियादी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में समाज को जागरूक करना, बाल श्रम, दुर्व्यवहार और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने का संकल्प लेना और बच्चों के लिए खुशहाल सुरक्षित वातावरण तैयार करना इस अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के अनुसार इस वर्ष मुख्य रूप से फॉर एवरी चिल्ड्रन एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार के नारे के तहत काम किया जा रहा है। इसके साथ ही 2026 में विशेष रूप से निम्न चुनौतियों को पूर्ण किया जाएगा, जिसमें डिजिटल सुरक्षा है, AI और सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चों को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। पर्यावरण संकट से निपटने के लिए बाल कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया जाएगा। बच्चों और किशोरों में बढ़ते तनाव और अवसाद, डिप्रेशन को दूर करना भी इसका मुख्य कारण रहेगा। भारत में बाल अधिकारों के बहुत से कानून हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट। बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन अपराधों और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए ये एक बेहद सख्त कानून है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार है। बाल श्रम अधिनियम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का व्यवसायिक या खतरनाक काम करवाना कानूनी अपराध होगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम, भारत में बाल विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने और बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। बच्चे हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं, उनके हाथ में कलम अच्छी लगती है, काम नहीं।

श्रोताओं, आज का नमस्कार देहरादून कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करने की अपनी होस्ट और दोस्त श्रुति शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार देहरादून।

अभी श्रोता सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। पेश है सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं आवाज की दुनिया की रानी सुमन कल्याणपुर जी को। कल रात्रि उनका निधन हो गया था, इसी पे आज का सदाबहार फिल्मी गीत आप सबके लिए, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में एक अद्भुत मिठास, कोमलता और भावनाओं की गहराई थी। उनकी गायकी ने 50, 60 और 70 के दशक के संगीत प्रेमियों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। उन्होंने अनेक यादगार एकल और युगल गीत गाए, जिसमें मोहब्बत थी, विरह था, प्रकृति थी और जीवन के रंग झलकते थे। आइए आज के कार्यक्रम को उन्हीं के नाम समर्पित करते हैं और आपको सुनवाते हैं उनकी आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की युगल गायकी में सुरों का ऐसा संतुलन दिखाई देता है जहां एक स्वर दूसरे पर हावी नहीं होता बल्कि दोनों मिलकर एक सुंदर संगीत संसार रचते रहे हैं। रफी साहब की गहराई और सुमन जी की मिठास ने अनगिनत गीतों को सदाबहार बना दिया। पुराने गीतों की महफिल जब भी सजती है, रफी और सुमन कल्याणपुर जी की युगल गीत किसी सुहानी हवा के झोंके की तरह मन को छू जाते हैं। उनकी आवाजों का ये संगम आज भी हम सबके दिलों में एक ताजगी भरा एहसास पैदा करता है। आइए आपको सुनवाते हैं शगुन फिल्म का गीत इन ही दोनों की आवाज में।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी जहां सादगी से भरी हुई थी, वहीं मुकेश थे गंभीर आवाज के धनी। उनकी दर्द भरी आवाज के साथ अगर सुमन कल्याणपुर जी की आवाज मिल जाती थी तो गीत अमर हो जाता था। इसी जोड़ी का एक अमर गीत है, मेरा प्यार भी तू ये बहार भी तू, साथी फिल्म का है। मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाजें जब एक साथ गूंजती थी तो ऐसा लगता था मानो संवेदनाओं का कोई मधुर संवाद चल रहा हो। एक ओर मुकेश जी की भावपूर्ण सादगी तो दूसरी ओर सुमन जी की सुरमई कोमलता, यही उनकी युगल गायकी की सबसे बड़ी पहचान बनी। तो क्यों ना आपको भी इसी फिल्म का ये प्यारा सा गीत सुनाया जाए। तो लीजिए आप सबके लिए कार्यक्रम का ये साथी फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी ने।

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, संगीत के स्वर्णिम दौर की यही खूबसूरती थी कि हर गायक अपनी अलग अलग पहचान रखता था। सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार की आवाजों का मेल उसी विविधता और समृद्धि का सुंदर उदाहरण है, जिसे सुनकर आज भी मन सुरों के सुनहरे दौर में खो जाता है। वैसे तो उन्होंने बहुत से ज्यादा गीत नहीं गाए हैं साथ में, पर फिर भी जो भी गाए वो हमारे दिलों में घर कर गए। किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज में सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध युगल गीत था तुम चाहे हमको पसंद न करो। फिल्म थी बदलते रिश्ते और इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे अनजान के।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत सुमन कल्याणपुर जी की याद में। श्रोताओं, मन्ना डे के साथ भी सुमन कल्याणपुर जी ने कई गीत गाए। मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी हमें उस दौर की याद दिलाती है जब गीत केवल मनोरंजन नहीं थे बल्कि संगीत साधना का माध्यम हुआ करते थे। मन्ना डे जी की शास्त्रीय ऊंचाइयों और सुमन जी की मधुर सरलता से मिलकर कई गीतों को कालजयी बना दिया। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि दोनों गायक गीत की आत्मा को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करते थे। न कोई दिखावा, न कोई अनावश्यक अलंकरण, सिर्फ सुरों और सच्चाई और भावों की गरिमा। ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर जी की जुगलबंदी में गाया गीत, जिस सबसे ज्यादा या लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में ये गिना जाता है। फिल्म थी जिंदगी और ख्वाब, इसका संगीत दिया था दत्ताराम वाटकर ने और खूबसूरत बोल थे कवि प्रदीप के।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में वो कोमल एहसास था जो सीधे दिल तक पहुंच जाता था। उनके गीतों में सादगी भी थी, सुरों की गरिमा भी और भावनाओं की अनूठी मिठास भी। यही कारण है कि उनके गाए सदाबहार गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं। जब भी पुराने गीतों की महफिल सजती है, सुमन कल्याणपुर जी की मधुर आवाज किसी सुगंधित झोंके की तरह वातावरण को सुरमय बना देती है। उनके गीत केवल संगीत नहीं बल्कि सुनहरे दौर की मीठी मीठी यादें थे। ऐसा ही एक गीत नूर महल फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं आवाज सुमन कल्याणपुर की।

इस भावपूर्ण गीत के बाद ये कहना अधूरा होगा कि वे केवल गंभीर या विरह गीतों की ही गायिका रहीं। उन्होंने कई चंचल गीत भी गाए, मस्ती भरे गीत थे वो, और जो काफी खूबसूरत बन पड़े। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, जिसमें उनकी आवाज की चपलता साफ झलकती है। युगल गीतों में उन्होंने रोमांस, शरारत और उत्साह के भावों को बड़ी सहजता से व्यक्त कर दिया, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी की आवाज की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी बहुमुखी प्रकृति, जहां एक ओर वे न तुम जानो न हम जैसे भावपूर्ण गीतों में मन की गहराइयों को छू लेती थी, वहीं आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जैसे चंचल गीतों में उनकी आवाज मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। आइए आपको भी लिए चलते हैं उनकी चंचल चपल आवाज के गीत की ओर।

श्रोताओं, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर जी ने मिलकर अनेक ऐसे गीत गाए जो आज भी श्रोताओं के दिलों में उसकी ताजगी के साथ बसे हुए हैं। उनकी युगल गायकी में प्रेम की नजाकत भी थी और शरारत, मिठास भी और भावनाओं की गहराई भी। रफी साहब के सुरों की ऊंचाइयों को सुमन जी की मधुरता ने जिस खूबसूरती से सहारा दिया, वो हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य विरासत है। दोनों कलाकारों ने मिलकर ऐसे गीत रचे जो केवल सुने ही नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। ऐसा ही एक गीत अप्रैल फूल फिल्म का है, जिसमें आपका साथ दिया है मोहम्मद रफी ने।

जी हाँ श्रोताओ, सुमन कल्याणपुर जी की आवाज हमेशा हमारे दिलों में यूं ही गूंजती रहेगी। कुछ आवाजें शरीर से नहीं आत्मा से जन्म लेती हैं, वे समय की सीमाओं से परे जाकर पीढ़ियों के दिलों में बस जाती हैं। सुमन कल्याणपुर जी की मधुर आवाज भी ऐसी ही एक अमर धरोहर है। आज हम उन्हें स्मरण करते हैं तो उनके गाए गीत केवल धुने नहीं लगते बल्कि जीवन की अनगिनत यादों के साथी बनकर हमारे सामने आ खड़े होते हैं। उनकी आवाज में प्रेम था, संवेदना थी और भारतीय संगीत की गरिमा थी। सुमन कल्याणपुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि समस्त आकाशवाणी परिवार और हमारे श्रोताओं की ओर से। ईश्वर उनकी पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे और उनकी अमर गीत आने वाली पीढ़ियों को भी संगीत की मिठास और संवेदनाओं की सुंदरता का एहसास कराते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको सुनवाते हैं दिल एक मंदिर फिल्म का ये बेहद ही भावपूर्ण गीत।

0: श्रोताओं, सुरों की ये सरिता आज भी बहती है और कल भी बहती रहेगी। गीतों की यह खूबसूरत आवाज की महक हमेशा बनी रहेगी। शरीर भले ही दूर चला जाए, लेकिन उसकी गूंज सदैव दिलों में बसती रहेगी। इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीत अब यहीं पर संपन्न होते हैं। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9:45 होने को हैं। अब श्रोता सुने सेहत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर योगेश्वर कृष्णन से भेंटवार्ता। आपसे बातचीत कर रहे हैं विकास चमोली। विषय है दांतों की उचित देखभाल।
1: कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश्वरी कृष्णन। और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किस तरह से हमने दांतों की देखभाल रखनी है ताकि लंबे समय तक हमारे दांत स्वस्थ रहें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
2: सभी को नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि ओरल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बताएं कि किस तरह जो हमारी दैनिक रोजमर्रा का जीवन है उसमें ये ओरल हाइजीन, दांतों की देखभाल करना कितना जरूरी हो जाता है।
2: ओरल हाइजीन हमारा बेसिक स्टेप है। ओरल हाइजीन मतलब दांतों की स्वच्छता, साफ सफाई रखना दांतों की। अब दांत, अगर हम ओरल हाइजीन की बात करें तो ये पूरी ओरल कैविटी इसमें कंसिडर होगी, सिर्फ दांत ही नहीं। ओरल कैविटी कहाँ से शुरू होती है? आपके लिप्स से लेकर आपके गाल, अंदर के होंठों का हिस्सा, आपकी जीभ, ये सब इसी में आता है। ओरल हाइजीन की जो हम बेसिक स्टेप्स बोलते हैं, तो उसमें क्या है, 2 बार अच्छी तरीके से ब्रश करना सुबह और रात को सोने से पहले
1: जी।
2: और 2 बार 2 मिनट लगा के ब्रश करने की हम लोग सभी को हिदायत देते हैं। और उसका भी एक टेक्निक होता है, ऐसा नहीं कि हमने 2 मिनट लगा दिए। कई लोग बोलते हैं 5 मिनट लगा के हम लोग ब्रश करते हैं, उससे क्या होगा, आपके दांत घिस जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है जिसको अगर आप फॉलो करके अपने दांत अच्छे से साफ करें, अंदर बाहर, ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, पीछे के दांतों के लिए अलग तरीके से आपको ब्रश को पकड़ना पड़ता है, आगे के लिए आपको ब्रश को सीधा रख के थोड़ा सा वाइब्रेटरी मोशन देना पड़ता है, और उसी हिसाब से दांत आपके साफ होते हैं
1: जी।
2: उसके साथ साथ बोला जाता है, उसके बाद आपको जीभ को भी ब्रश करना बहुत जरूरी है। अगर जीभ साफ नहीं करेंगे तो पेट में भी कीटाणु जाएंगे, मुंह में आपकी बदबू का कारण बनती है ये चीज।
1: यानी कि ब्रश की टेक्निक, किस टेक्निक के साथ आप ब्रश कर रहे हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, जैसे पेस्ट की बात कही जाती है, या कुछ लोग हम देखते हैं कि पाउडर भी रहता है, उससे भी ब्रश करते हैं, थोड़ा बताएं इसके बारे में, क्या बेहतर रहने वाला है?
2: पाउडर बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि आप पाउडर सोचिए, पाउडर में क्या होता है, एब्रेसिव सब्सटेंस ज्यादा होता है, मतलब दांत को घिसने की क्षमता पाउडर में ज्यादा रहती है। और दांत अगर घिस गया तो आप सोचिए, दांत की ना सतह होती है, सबसे ऊपर का लेयर होता है जिसको हम इनामेल कहते हैं, उसके अंदर होता है डेंटिन, उसके अंदर होती है दांत की नस जिसको हम लोग पल्प कहते हैं। तो अगर ऊपर का आपका लेयर घिस गया इनामेल, तो वो दोबारा नहीं बनेगा, और डेंटिन एक्सपोज हो गया मतलब वो बाहर आ गया, तो क्या होता है, दांत में ठंडा गर्म लगने की परेशानी डेवलप हो जाती है, और कई सारी इसी से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दांतों की। तो वो भी आपको देखकर इस्तेमाल करना है। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि क्या रोज पेस्ट लगाना जरूरी है, हम सिर्फ ब्रश से कर लें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल पेस्ट रोज लगाना बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेस्ट में दांतों को साफ करने के लिए मटेरियल डाला जाता है। आप ये मानिए, जैसे बर्तन होते हैं, तो क्या हम उसको रोज पानी से 2 दिन तो वो साफ रहेंगे? नहीं रहेंगे, उसमें कीटाणु रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ साथ आपके पेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट होता है जो दांतों को मजबूती देता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए प्रॉपर टूथपेस्ट लगा के ब्रश पे हमको इस्तेमाल करना चाहिए
1: जी। जैसे कई बार हम देखते हैं कि लोग 2 टाइम ब्रश करने की बात करते हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि लोग एक ही बार ब्रश कर पाते हैं, तो कितना जरूरी है ये 2 वक्त ब्रश करना?
2: देखिए, बहुत जरूरी होता है। पहली बात तो ये, टूथपेस्ट पे भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वो आपको 12 घंटे प्रोटेक्शन दे सकता है ना। उसके बाद क्या होगा, दूसरी चीज, आप दिन भर में कितनी बारी खाना खा लेते हैं
1: जी?
2: खाना खाने के बाद भी हम लोग बोलते हैं कि जब आप खाना खाएं, एक बारी कुल्ला कर ले मुंह का, तो कुछ अगर चिपका हुआ है तो वो कुल्ले के साथ निकल जाएगा। बाकी ब्रश किस लिए जरूरी है, कि दांतों के बीच में कुछ फंस रहा है, ऊपर नीचे कहीं और कुछ फंसा रह गया, तो उसको हमें क्लीन करना जरूरी है। क्योंकि कुछ भी चीज अगर आपके दांत पे चिपक रही है, क्योंकि हम कितना खाना खाते हैं, वो ज्यादातर चिपकने वाली ही सब्सटेंस होते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट वेस्ट है वो दांतों पे चिपकेगा, और जहां दांतों पे चिपका वहां से दांतों का गलना शुरू होता है, जिसको दांतों की सड़न कहते हैं, और जो लोग कहते हैं कि कैविटी हो गई, दांत में कीड़ा लगी, इसी चीज की वजह।

0: से लगता है, तो बहुत जरूरी है। और रात को क्या होगा, अगर आप रात को ब्रश नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो कहूंगी रात को ब्रश करना ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि रात को नहीं करा तो मुंह में थूक नहीं बन रहा, कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही, जीभ नहीं चल रही, तो खाना वहीं का वहीं रहेगा और जल्दी सड़न शुरू होगी दांतों में।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे हम समस्याओं की बात करें, कई सारी दांतों की समस्याएं आजकल देखी जाती हैं और लोग चिंतित भी रहते हैं दांतों को लेकर। थोड़ा बताएं किन लोगों में ज्यादा दांतों की समस्या देखी गई है? जैसे आपने बताया एक तो डेली आपने दांतों की सफाई करनी है, दूसरा जैसे हम देखते हैं ना आजकल तंबाकू का सेवन भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं।
0: तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं वो तो आप मुंह देखते ही पहचान जाएंगे लोगों का, है ना, दांत भूरे दिखाई देंगे, दांतों पे दाग धब्बे नजर आते हैं। तंबाकू के सेवन की वजह से सिर्फ दांत ही नहीं खराब होते, शरीर भी धीरे धीरे खराब हो सकता है आपका। तो कई हम अगर लक्षण की बात करें तो मुंह में दाग धब्बे पड़ना दांतों का बताते हैं लोग कि बिल्कुल हमारे दांत गंदे हो रहे हैं। कई लोग तो इसीलिए आते हैं कि दांत साफ कर दो, तंबाकू खाने की आदत है, लाल हो रहे हैं दांत तो इसको साफ कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है। पर सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से आपको बाद में जाके मसूड़ी की समस्या हो सकती है, हड्डी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम सब खाने के लिए मना ही करेंगे। तंबाकू वाले मरीजों में क्या क्या देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें तो, कोई भी सफेद दाग धब्बे मुंह में पड़ जाना ये एक साइन हो सकता है, मतलब ये आपको चौकस रहने की बहुत जरूरत है। कोई ऐसा घाव हो मुंह में, कोई भी अल्सर हो, घाव हो जो भर ना रहा हो काफी समय से, ये एक साइन है। कई लोग बोलते हैं कि जीभ का ये हिस्सा सुन पड़ रहा है तो वो भी एक साइन हो सकता है। होंठ का कोई हिस्सा सुन पड़ना, कोई आवाज में एकदम से बदलाव आ जाना मरीज के, मुंह का कम खुलना, ये कई लोग जो गुटखा और सुपारी खाते हैं ये उनमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसको हम बोलते हैं OSMF। ये एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है मुंह धीरे धीरे कम खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसका लेवल होता है, ग्रेडिंग होती है उसकी, उसमें फिर अलग इलाज कराया जाता है। और सफेद दाग धब्बे अगर हम मुंह में देखते हैं तो ये सब प्री कैंसरस लेजन्स माने जाते हैं, मतलब कैंसर की पहली जो होती हैं ये वो डिजीजेस हैं। अगर हम इसको छोड़ के रखेंगे तो ये कैंसर जरूर बन जाएंगी आगे जाके। तो इन सबको अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स को पहले से पहचान लें, डॉक्टर के पास समय से चले जाएं और ये आदत को हम छोड़ें तो काफी जल्दी मदद मिल सकती है। वरना अगर एक बार कैंसर बन गया तो उसका इलाज तो सभी को पता है कि कितना दुखदायी हो जाता है मरीज।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि तंबाकू से दांतों पे तो बुरा असर पड़ता ही है, लेकिन अगर हम बात करें कैंसर को लेकर तो क्या तंबाकू कैंसर का कारण बन सकता है? क्या सभी तंबाकू खाने वाले लोगों को कैंसर हो जाता है?
0: ये हम फिक्स नहीं कह सकते, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंडेंट होता है। पर तंबाकू में हम सभी को पता है कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग होता ही है। आप किसी भी तंबाकू के पैकेट पे डब्बे पे देखेंगे तो आपको बाहर नजर आएगा, वो बना के रखते हैं मुख का कैंसर, गले का कैंसर, उसमें सब दिखाया जाता है फेफड़े का कैंसर, बट लोग फिर भी खरीदते हैं, फिर भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैंसर होने की संभावना हर स्मोकर, हर जो भी तंबाकू इस्तेमाल करता है उसमें होती ही होती है।
1: कितने समय के बाद हमें डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए रेगुलर चेकअप की अगर हम बात करें?
0: रेगुलर चेकअप हर किसी को हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। तो अगर कोई छोटी सी भी चीज है, मान लीजिए कैविटी भी है, अगर आपने दिखा ली समय से, बस उसकी जनरल एक फिलिंग होनी है, फिलिंग आप करा लेंगे तो आपका दांत बच जाएगा। अगर आप वही कैविटी छोड़ के रखते हैं, क्योंकि दांत में ना कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो अपने आप रिवर्स हो जाएगी और वापस ठीक हो जाएगी, आपको इलाज ही कराना पड़ता है। छोटी सी फिलिंग से जो आपका आज काम चल जा रहा है, अगर आप उसको छोड़ के रख रहे हैं, वो अगले दिन आरसीटी की नौबत पे आएगा। आरसीटी भी आपने नहीं कराई, दांत की जड़ खराब हो जाएगी, आपका दांत निकल जाएगा। और बेसिक 6 महीने तक आपको हर 6 महीने में, मतलब एक बारी डॉक्टर के पास जाकर, ओरल प्रोफाइल एक्सेस बोलते हैं, स्केलिंग प्रोसीजर होता है, मतलब दांतों की अल्ट्रासोनिक सफाई करी जाती है, वो भी हर किसी को कराना बहुत जरूरी होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे छोटे बच्चों के साथ अक्सर हमने देखा है जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं ये तो दूध के दांत हैं, कई सारी लापरवाही उनके लिए वो कर लेते हैं। थोड़ा बताएं कि जो दूध के दांत हैं उनकी भी देखभाल करना कितना जरूरी है?
0: बहुत बहुत जरूरी होती है। कई तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के नहीं होते, उनके सारे मुंह के दांत खराब हो चुके होते हैं, जितने आए होते हैं वो सारे काले पड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं बताऊंगी इसमें, अगर आप देखते हैं ना बच्चों के आगे के दांत, आप अक्सर देखेंगे कि काले हो रखे हैं बच्चे के, छोटे बच्चे के, तो इसको हम लोग बोलते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज। ये क्या होता है, जो लोग दूध की बॉटल लगा के बच्चे को सुला देते हैं उनमें ये अक्सर देखा जाता है। क्योंकि दूध क्या होता है, नीचे के तो चलो थूक बनता है, जीभ होती है, दांत साफ कर देती है, ऊपर वाले दांतों पे वो जमा रह जाता है रात भर, तो क्या होता है उसकी वजह से कैविटी लग जाती है, दांत बच्चे का खराब हो जाता है। दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं लापरवाही, बच्चे का जब से हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए 6 महीने में उसका पहला दांत आया, तो आपको तभी से उसको ब्रश कराना शुरू करना है। छोटा उंगली पे पहनने वाला माँ ब्रश लेंगी, उससे उसकी सफाई करनी है। अच्छा। बल्कि उससे भी पहले जब बच्चा दूध पी रहा

0: है माँ का, उसके नहीं है कोई भी दांत नहीं है, तो गम पैड्स होते हैं ना ऊपर नीचे का जो जबड़ा है, उसको आपको वॉश क्लॉथ लेके, कोई भी साफ टॉवल लेके जो स्टेरिलाइज्ड हो आपके घर में, उसको गुनगुने पानी में डाल के अच्छे से उसकी मसूड़ी की मालिश करके सफाई करिए दूध पिलाने के बाद, क्योंकि मुंह में जो भी चीज रुक रही है वो कीटाणु बाद में पैदा करेगी। तो ये एक नॉर्मल चीज है। दूसरा, मैं हमेशा ये देखती हूँ पेशेंट्स में भी, लोग कहते हैं तो दूध का दांत है अपने आप टूट जाएगा बच्चे का, और उसमें भी लापरवाही करते हैं, इलाज नहीं कराते बच्चे का। तो क्या हो सकता है, देखिए दांत एक उम्र के बाद ही निकलते हैं, और जो पक्के आने हैं वो भी अपने एज के साथ ही आते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई दांत खराब मुंह में छोड़ रखा है, उसके नीचे नया दांत बन रहा है जिसको हम टूथब्रश कहते हैं, परमानेंट दांत आने वाला है, तो क्या होता है इसका इन्फेक्शन नीचे ट्रेवल करेगा, आने वाले दांत को भी खराब कर सकता है। दूसरी चीज, अगर ये मुंह में पड़ा रह गया, नीचे वाला दांत अपने आप ही बाहर नहीं आएगा। तीसरी चीज, इसमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई भी दर्द हुआ, पस पड़ने लग गया, तो ये भी एक समस्या है, आपको बच्चे का प्रॉपर इलाज कराना है। बच्चे के दांतों की भी आरसीटी होती है, बच्चे के दांतों की भी फिलिंग होती है, आरसीटी को हम लोग पल्पेक्टमी पल्पोटमी बोलते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर है, बहुत जरूरी है बच्चों के दांतों का रखरखाव करना, उसके साथ साथ अगर कुछ ऐसा हो गया है तो उसका इलाज कराना जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, क्या एक उम्र के बाद दांतों में ज्यादा समस्याएं देखी जाती हैं?
0: डिपेंड करता है, ये सब आपके रखरखाव के ऊपर है। जो लोग अपने दांतों का बहुत ध्यान रखते हैं, साफ सफाई अच्छे से रखते हैं, डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाते हैं, इसके साथ साथ जैसे हमने बात करी थी 2 बार ब्रश करने की, उसके बाद अगर आप फ्लॉसिंग की हैबिट डालते हैं, फ्लॉस क्या होता है, एक धागे की तरह होता है दांतों के बीच की सफाई करने के लिए, क्योंकि ब्रश हमारे दो दांतों के बीच में नहीं जाएगा, तो उसके लिए अगर आप वो भी एक समय करना शुरू करते हैं वो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने की भी आदत बना लेते हैं 1-2 बार दिन में, कभी सुबह कभी रात को अगर आप कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है आपके मसूड़ों की हेल्थ के लिए। तो ये सब जितना आप रखरखाव करें उतना बेहतर है। एक उम्र के बाद दांत जरूर है कि हिलेंगे, निकलेंगे, टूटेंगे, तो वो एक अलग समस्या है, पर ऐसा नहीं कि हर किसी को उम्र के हिसाब से दांतों की तकलीफ होनी शुरू होती है।
1: क्या खान पान का भी असर देखा जाता है दांतों?
0: बिल्कुल बिल्कुल, खान पान का असर देखा जाता है। दांत आप मान लीजिए आपकी हड्डी के बराबर ही लीजिए, कैल्शियम होता है उसमें भी, आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स आएंगे, उतने आपके दांत मजबूत रहते हैं। उसके साथ साथ बोला जाता है जो आपकी हरी सब्जियां, फल फ्रूट जो सीजनल होता है वो आप जितना खाएंगे, सिट्रस जितना खाएंगे, नींबू और ये सारी चीजें जो आपकी हो गई, संतरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये गम हेल्थ में काम करता है, मतलब मसूड़ों के लिए अच्छा रहता है हमारे। इसके साथ साथ जो आपकी बाकी सब्जियां वगैरह है, मान लीजिए खीरा है, खीरा

0: जो आपकी हरी सब्जियां, फल फ्रूट जो सीजनल होता है वो आप जितना खाएंगे, सिट्रस जितना खाएंगे, नींबू और ये सारी चीजें जो आपकी हो गई, संतरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये गम हेल्थ में काम करता है, मतलब मसूड़ों के लिए अच्छा रहता है हमारे।
1: जी
0: इसके साथ साथ जो आपकी बाकी सब्जियां वगैरह है, मान लीजिए खीरा है, खीरा

0: पर आपने अगर मुंह में कोई भी ऐसा छोड़ के रखा है, मान लीजिए ना एक बॉम्ब का ही काम कर रहा है, रुका हुआ है बस मुंह में,
1: जी
0: किसी भी दिन ब्लास्ट हो सकता है एक तरीके से, तो अगर इन्फेक्शन नीचे ट्रैवल करेगा दांत के, दांत की जड़ होती है

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
2: कार्यक्रम का ये गीत रॉकी रानी की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और प्रीतम का संगीत। न चांद की चाहत न सितारों की फरमाइश, न चांद की चाहत न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश।

जरा हटके जरा बच के, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और सचिन जिगर का संगीत। तुम्हारा नाम लबों पर हो, ख्याल दिल में हो, हर पल तुम्हारा एहसास हो, फिर और क्या चाहिए। जिंदगी ने जो सबसे खूबसूरत तोहफा दिया वो तुम हो मेरे साथ, तो फिर और क्या चाहिए।

श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का ये गीत तेरे इश्क में फिल्म से एआर रहमान और फहीम अब्दुल्ला की आवाज में, इशाद कामिल के बोल हैं और एआर रहमान का संगीत। कभी तुम्हारी याद आती है तो कभी ख्वाब आते हैं, कभी तुम्हारी याद आती है तो कभी ख्वाब आते हैं, हमें सताने के तुम्हें तरीके बेहिसाब आते हैं।

कार्यक्रम का समापन गीत तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से, जिसे आवाज दिया सचिन जिगर, राघव और वरुण जैन ने, इंद्रनील के बोल और सचिन जिगर का संगीत।

0: तेरी बातों में ऐसा जो उलझा जिया फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब श्रोता सुने उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर जाकर उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह सम्मान श्री कोश्यारी के दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, राष्ट्र सेवा और सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित योगदान का राष्ट्र स्तर पर किया गया सम्मान है। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर प्रदेश के विकास और राष्ट्र निर्माण की विभिन्न जिम्मेदारी के निर्वहन में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि श्री कोश्यारी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं वे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण सदैव समाज को प्रेरित करता रहेगा। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के देवलगढ़ स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर के समीप सड़क से गुफा तक पहुंच मार्ग व सौंदर्यीकरण कार्य और गौरा देवी मंदिर समूह परिसर में प्रतिधारक दीवार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन कार्यों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने श्रीकोट क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन पशु चिकित्सालय भवन के लिए चयनित भूमि का भी स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को भवन निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधाओं के विकास से क्षेत्र के पशुपालकों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से लौटते समय लापता हुए पर्यटक की तलाश कल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। पर्यटन की खोज के लिए SDRF, NDRF, फायर सर्विस, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक अजय साह ने बताया कि कठिन भूभाग और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को

0: देखते हुए खोज अभियान में ड्रोन कैमरों की भी सहायता ली जा रही है।
1: जब 29 तारीख को जब ये पिंडारी से वापस लौट रहे थे मलियादौड़ पे, जब ये पहुंचे तो इन्होंने अपने गाइड से कहा कि मैं फोटोग्राफी करके आता हूँ। जब ये वापस नहीं आया तो ये गाइड थे, इन्होंने वापस उस स्थान पर देखा तो वहां नहीं मिले। उन्होंने फिर खाती में आके फॉरेस्ट को बताया मिसिंग के बारे में। इसके क्रम में हमारे द्वारा पुलिस की टीम है, SDRF, NDRF और फायर की टीम का सर्च अभियान चल रहा है। ड्रोन की टीम भी इसमें हमारी कार्रवाई कर रही है, अभी तलाश जारी है।
0: केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रभारी निरीक्षक नीलाभ खाली की अध्यक्षता में सोनप्रयाग में स्थानीय हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, शटल सेवा संचालन, बाजार क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। प्रभारी निरीक्षक ने आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित समन्वय और स्थानीय स्तर पर जनसहयोग सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण रोकने और आपातकालीन वाहनों के लिए मार्ग हमेशा खुला रखने के निर्देश भी दिए गए। चमोली स्थित विश्व धरोहर व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। क्षेत्रीय रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि सुबह से ही पर्यटकों का पंजीकरण शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि अभी तक 65 से अधिक पर्यटक फूलों की घाटी की सैर के लिए रवाना हो चुके हैं। घाटी में 300 से अधिक प्रजातियों के पुष्प व दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक इस अनोखी प्राकृतिक धरोहर के दीदार के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल इस घाटी के खुलने से स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को भी नई ऊर्जा मिली है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण के लिए फूलों को तोड़ने व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचने की अपील की है।

0: आगे बढ़ाते हुए पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी देश की सीमाओं की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:35 हुए हैं। अब श्रोता सुने लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं शशि जोशी और रुचिका रानी के गाए रोहिलखंडी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं शशि जोशी और रुचिका रानी के गाए रोहिल खंडी लोकगीत।

0: कुकर में आईएसआई मार्क क्यों देखना?
1: अगर ISI marked प्रेशर कुकर नहीं लोगे तो शायद आपके कुकर की भी सीटी बज जाए। ध्यान रखिए कि प्रेशर कुकर खरीदते वक्त आप ISI mark जरूर चेक करें। Always use ISI marked प्रेशर कुकर। Be aware, be safe।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के अंतर्गत शशि जोशी और रुचिका रानी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, 11 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम वर्ष फरमाइश। प्रोग्राम की सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। श्रोताओं, उनका जाना संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने अपनी आवाज में नए गीत गाए हैं और श्रोताओं का मनोरंजन किया है। आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उनकी आवाज में एक गीत और उनका साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम राजकुमार।

फिल्म राजकुमार के इस गीत को सुनना चाहा था टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा ने। साथ ही फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख सगीर, शेख वजीर, सोहित शेख और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी गाँव जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम वंदना, बिंदु गोलू, कुसुम्बाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार टैक्सी ने। आयुषोत्तम बढ़ती आप सभी की फरमाइश के अगले गीत की ओर मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजे हैं जिन्होंने सुनना चाहे अपनी फरमाइश का ये गीत। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, मेंडी सूरल, साइना निवान शर्मा ने। और ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं मोताला से विजय सूरल, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं गांव लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी रेणु, रिया, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने। आयुषोत्तम सुनते आप सभी की फरमाइश का ये अगला गीत आवाज़ ही मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम बेटी बेटी।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तरिया, धाकट भूला, परवीन रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, रेल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज और इसी गीत को सुनना चाहा है। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, किशोर नगर अमरावती के हीरामन शिंदे, शीला देवी और सिद्धार्थ गोडा ने, जिला मुरादाबाद गांव दुलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, साथ भी नरगिस खातून। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से पेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश, रूबी भारती, एकता दिव्या भारती और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश हमें लिख भेजी है, गांव ध्यांगला जिला कुरुक्षेत्र से मांगीराम सैनी, यशवी सैनी, नेविस दीपल सैनी, देवांश और यामी सैनी और साथ में इनकी कनिका शर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, दांडी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाटे, संदीप और अमूल्य बाटी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मेली भेजी थी विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार काले और डॉक्टर सुधा वज्रसेन, गांव जगुड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमीत चुक और परवीन युगम और विनेद ने। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव ईशान और कार्तिक सैनी ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने वाइल्ड फिल्म बंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष ने। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, गांव ककराली पंचकुला से वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य अंजलि नेहा और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये फरमाइश हमें लिख भेजी है, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना आशीष राजा चैतन्य मेगा मस्कीन चंडीगढ़ से राल खुराना रचिता और केशुरी दान खुराना। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वाई द्रमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर मोहम्मद फैजी मोहम्मद जुनीद मोहम्मद जुबेर मोहम्मद मुकरम साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं श्रोता मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार नर्मदा और सुजाता। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। फरमाइश

लिखते हैं जय जिनेन्द्र शोधा संघ परभणी से, रूपेश संघई, महेश प्रगेश, प्रीतेश और साथ में इनका पूरा संघई परिवार। और इसी गीत को सुनना चाहे राहट गांव को पमरावती से हर्ष रामेकर, दिलीप अक्षय, रुद्रा, रुचिका रामेकर, साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसानी, उषा ऋषिकेश, अनिकेत और सागर कटक। साथ ये फरमाइश लिखते हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और साथ में हैं सोना वर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। आप हैं मित्र नगर ब्यूटी शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़ी, रेखा अदिति और वैभव शिंदे। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल सर फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा परवीन, साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आर्य नगर को कबीलाई से उत्तम सिंह जगेल मोर अनिल कुमार अजित कुमार आयुष और साथ में नंदिनी जगेल और इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं गोकुल चौक गंगजला शहर से बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार गुंजेश कुमार या रानी और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये फरमाइश लिखते हैं चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही रोशनी जनागल अंकुर इंदूर साथ में डॉक्टर सुनील जनागल और इसी गीत को सुनना चाहा है। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद प्रकाश बलू निषाद और तरुण यादव ये फरमाइश।

हमारे श्रोता लिखते हैं, बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़ी, अनीता रमेश राव बोधबड़ी, नजफगढ़ जय विहार से फरमाइश लिखते हैं शाहरुख फारूक, शबनम शहनाज और साथ में इनके परिवारजन, महबूबपुरा सनाबत से मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा, साथ में बाबूबाई खत्री। और साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं बिलराम गेट कासगंज से असलम सैफी, जयपुरी शहर सद्दाम सोनी, जहेद और आबाद खान ने ये फरमाइश लिखते हैं गाँव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक। साथ ही ये मैसेज लिखते वाले श्रोता आप हैं गांव महेशवाड़ी मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े वकील वाल्मीक नीना जी, और साथ में हैं स्वप्निल। गांव उमेड़ा निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन आबिद आयशा और साथ में स्नेहा भानु। और इसी गीत को सुनना चाह है आप हैं नूर महल महसौल सीतावड़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहां, फरत रिफत और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश में लिखते हैं निजामाबाद तेलंगाना से नागनाथ गुप्ता और गोदावरी गुप्ता। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है साथी।

0: फिल्म साथी के इसी गीत को सुनना चाहा था ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संजीत बयाल, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली और साथ में इनके परिवारजन ने साथ ही फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी थी। आप जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका, सुशांत नायक ने, फरुखाबाद से आप हैं सुरेश चौरसिया और इनके परिवारजन। श्रोता सुन रहे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी ने, मरहरा दरवाजा इटासी नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवीद, रसीद वारसी, सुहेल हसन और साथ में इनके परिवारजन, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और साथ में नियमित आहूजा, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजम बेगम, मोहम्मद तौशिफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद कलीम अंसारी ने, और ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयक मुनत, चेतन हाटा ने, साथ ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं आप हैं लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने, साथ ही फरमाइश लिखते हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी नाना सिंह, नाना जी लामसी, मीना तेजस, जय लामसी, हर्षिता और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है नाभास जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरक, ज्योति रानी, गुरमीत कौर मनु और साथ में इनके परिवारजन ने, साथ ही ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, साथ में नोखीलाल वर्मा ने, पटेल नगर बलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और साथ में हैं गुड्डू। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिख भेजी है जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति ने, साथ ही फरमाइश लिखते हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार हैप्पी राय, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और साथ में है प्रांजल राय। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश अमेलिक भेजी है गांव नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दूषण प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू ने। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज में गीत, फिल्म का नाम मैं हूं ना।

समय 11:35 और 58 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नीति नोयाबैंक के शर्मा, साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं गुमला झारखंड से एसएम जावेद शगोता अंजुम और साथ में नजमुल हुदा, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू ने। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहान सूरीहान। साथ ही फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं लुधियाना से विनोद पुरी, बीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बी की पुरी, कैलाश पुरी और साथ में इनके परिवारजन। अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुल्ला सलमा सदर हम और साथ ही मोहम्मद आलम हाशमी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवानकर, श्रीमती सरिता गवानकर, पिंसर एकांश गवानकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवानकर, सिद्धांत और साथ में इनके परिवारजन। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित और संजय शर्मा ने और साथ में इनकी प्रियंका शर्मा, और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी, डॉक्टर अफजल मलिक और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। आप हैं गांव जखड़ गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल, देहरादून चक्राता रूड़ी गांव मोहल्ला से सुनील चावला, मीना साक्षी, दिनेश चोपड़ा, तनुनानु, राधिका रानी और साथ में इनके परिवारजन। और साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदिनी ने, हनीषा, छन्नूलाल श्रीवास और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं रेलवे रोड गंज डिडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबील हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म का नाम है देवता।

कार्यक्रम वर्ष फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और साथ में मधु नायक, सिहारा बिजनौर से ही आप हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। साथ ही फरमाइश श्रोता लिखते हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। साथ ही फरमाइश लिखते हैं आप हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबी राही महराज जहां, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश शर्मा और करुणा वर्मा, गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा से बालकृष्ण शर्मा, परवीन मुनीश और राहुल शर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है आपने, फरमाइश हमें लिख भेजी है आप हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव, फरमाइश लिखते हैं बगेरा दुर्ग से। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है, जिन्होंने फरमाइश लिखी है, आपने सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखा है लेकिन आपने मैसेज कहाँ लिखा है। लिखते हैं ये मैसेज जी, बिल्कुल आपने कोई अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन आपने फरमाइश लिखी है। कोई नहीं, अगली बार जब आप हमें मैसेज करते हैं व्हाट्सएप फरमाइश में तो अपना पूरा नाम ज़रूर लिखें और साथ में जगह का नाम भी लिखें जहां से आप हमें फरमाइश प्रेषित कर रहे हैं। और ये मैसेज लिखते हैं धुनरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और साथ में आयन बाबू। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से भाई रफत साहिब, सईद भाई, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी। और इसी गीत को सुनना चाहे छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश शर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फा डावर, अब्दुल हक, जियाउलक, मोहम्मद उमर डावर और साथ में राजेंद्र कटारी। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में गीत, फिल्म का नाम दिल ही तो है।

श्रोताओं, यह है आप सभी की अनुरोध पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। फरमाइश लिखते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। करनाल से मैसेज हमें लिख भेजा है गुरविंदर सिंह पांडे, दिजीत कौर, बीबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांडे और जी एस रामगढ़िया ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना, हरविंदर सिंह, बानी चावला, लोकेश, पायल जोशी, बेबी विदेश जोशी, शिकल साध्वी कुमारी, अंकिता जोशी। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है आपने। फरमाइश श्रोता लिखते हैं परिमहल कासगंसी, आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा खान और साथ में इनके परिवारजन। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बीबीसीआर यादव। जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता, उमनाथ और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश शर्मा, पूनम ज्योति और शिवांशी वर्मा। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आप हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बनियारो, शौर्य और साथ में दिनेश। ये मैसेज हमें लिख भेजा है जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी रीतिक और साथ में बलबीर सिंह ने। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, लाडोगोल मल्होत्रा, इनकी पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोई डुग्गू और साथ में आप हैं भाविक सिक्का। और साथ ही मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है बॉर्डर टाउन करनाल से सुधी नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश कुमार और साथ में नियति कुमारी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावर से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये फरमाइश लिखते हैं बोराव के नगर श्री रामपुर से मनोज जेठवा और हर्षा जेठवा। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है ममता।

आइए श्रोता, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश किस अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजे हैं। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार धु, संतोषी निमी पम्मी, सिया हर्षिता और निशांत ध्रु ने साथ ये फरमाइश हमें लिख भेजी है। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण तरुण और प्रतीक चौहान ने, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं। जिला खरगोन सनावसी मास्टर अशोक और मार्चन अनुजायशी रमेश चंद्र वर्मा और साथ में इनके परिवारजन, और ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं। तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायणा विजय अभिनय और साथ में है साई किरण, और ये मैसेज श्रोता लिखते हैं। रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र साथ इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय मोहबिया, कविता विशाल, विवेक सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलूनी और साथ में है इनके परिवारजन। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदेव, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता आरजू और साथ में इनके परिवारजन। इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं। लारकुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत कौशिकी, दीपाली युवान और

कुमार के राजा ने। फरमाइश श्रोता लिखते हैं, आप हैं जिन्होंने मैसेज हमें लिख भेजा है। आप हैं गंगा सिंह रावत, रामपुर रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड से, और उसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं श्रोता भटिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जुड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंद्र वरिंद्र, कुलदीप सिंह, एकम दमन और अभिजीत। और साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं ताजपुर मोरवा, समस्तीपुर बिहार से, कारी राम कारी मीना कारी, पुंजराज आरती आकर्षण और साथ में हैं जय श्री। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता। और इसी गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है करोला मुरादाबाद से, आप हैं अयुब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, सिंदौली मीरगंज बरेली से, जी शानवार से और साथ में इनके परिवारजन, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल दीपिका गव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक। और इसे गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है गिरफ्तार।

0: इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश मेलिक भेजी थी भाटा पर छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और चिना हरमिंदर चावला बानी चावला लोकेश पायल जोशी और साथ में इनकी परिवारजन ने कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी नईम डॉक्टर आमिर अंसारी ने साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं गंज डिंडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमरान अनाज नवाज शेख दानिश शेख और इनके परिवारजन दंतरेंगे के हिम भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीत और साथ में रुद्री वर्मा ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज कुरबाल गीती का और साथ में है भानु प्रकाश बागरी मोहला रटलाई झालावाड़ से मनभावन शोभा और इनके परिवारजन साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी और इनके परिवारजन साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आपने मैसेज हमें लिख भेजा है श्री रामपुर से डी अशोक कुमार और इनके परिवारजन साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा था गांव कुमार एड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शायना से नक्सा और इनके परिवारजन श्रोताओं इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश पर संपन्न हुआ हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 100.5 मेगाहर्ट्ज पर इस समय 12 बजने को अब आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: एयरलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के देवलगढ़ स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर के समीप सड़क से गुफा तक पहुंच मार्ग व सौंदर्यकरण कार्य का किया लोकार्पण। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के दीदार के लिए खुला। अभी तक 65 से अधिक पर्यटक फूलों की घाटी की सैर के लिए हुए रवाना। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जागेश्वर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पनुवा नौला में बिखरे पड़े कूड़े पर नाराजगी जाहिर करते हुए कूड़े के समुचित प्रबंधन के निर्देश दिए। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ 133 नए अधिकारी आईटीबीपी में शामिल हुए। राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा के लिए शपथ। नवनियुक्त अधिकारियों ने कहा कि वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश सेवा के लिए तैयार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रभारी निरीक्षक नीलाभ खाली की अध्यक्षता में सोनप्रयाग में स्थानीय हितधारकों के साथ की गई बैठक। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के 3 दिवसीय आयोजन में आज और कल 5, 10 और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन प्रतियोगिताएं की जाएंगी आयोजित। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मानसून से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के दिए गए निर्देश। जिलाधिकारी ने सड़कों पर संचालित प्राथमिकता वाली जनहित परियोजनाओं के कार्य 7 जून तक पूरा करने के दिए निर्देश। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात खेले गए आईपीएल के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं। डीजे सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए आयुषी चौहान के गाए भजन।

0: कुकर में आईएसआई मार्क क्यों देखना?
1: अगर ISI मार्क प्रेशर कुकर नहीं लोगे तो शायद आपके कुकर की भी सीटी बज जाए। ध्यान रखिए कि प्रेशर कुकर खरीदते वक्त आप ISI मार्क जरूर चेक करें। ऑलवेज यूज ISI मार्क प्रेशर कुकर। बी अवेयर, बी सेफ।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आयुषी चौहान के गाए भजन। हम आपको याद दिला दें, सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आप सुन सकते हैं मुकेश की आवाज में गीत। शाम 4:02 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 12:30 हो रहे हैं। अब मैंने सुनेंगी कार्यक्रम घर गृहस्थी।

नमस्कार बहनों, FM 100.5 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम घर गृहस्थी। और आज कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी बहन सुरुचि वर्मा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगी और अपना और अपने परिवार का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रही होंगी। बहनों, हम महिलाएं सुबह से शाम तक घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन दिन भर के कामों में कुछ समय बीच का ऐसा भी निकल आता है जब आप अपने लिए कुछ कर सकती है। यदि इस समय का सही उपयोग किया जाए तो ये ना केवल आपके व्यक्तित्व में विकास में मदद करता है बल्कि आत्मविश्वास और खुशी में भी बढ़ोतरी करता है। बहनों, खाली समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है और खाली समय का उपयोग नई चीजें सीखने में भी किया जा सकता है। आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी केयर, कंप्यूटर, डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन मार्केटिंग जैसी कई उपयोगी बातें आप घर बैठे सीख सकती हैं। कई महिलाएं इसे अपने शौक के साथ ही रोजगार में भी बदल रही है। कोई घर पर अचार, पापड़ और मसाले बनाकर बेच रही है तो कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है। कुछ महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार करके अच्छी आय भी अर्जित कर रही है। तो इस तरह से वो खाली समय में कुछ ना कुछ सीख रही है। और खाली समय में आप पुस्तकें भी पढ़ सकती है बहनों। पुस्तकें पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। अच्छी किताबें हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और सोचने समझने की क्षमता विकसित करती है। यदि किताबें उपलब्ध ना हो तो रेडियो कार्यक्रम, शैक्षिक वीडियो या प्रेरणादायक लेख भी आप सुने और पढ़ सकती हैं। खाली समय में आप बहनों पोषण वाटिका या किचन गार्डन भी तैयार कर सकती है। घर के आंगन, छत या गमलों में हरी सब्जियां, धनिया, पुदीना, टमाटर और मिर्च जैसी फसलें उगाकर परिवार को ताजी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कर सकती हैं। तो इस तरह से आप खाली समय का सदुपयोग कर सकती है। चलिए, अभी और भी बातें करेंगे कार्यक्रम में आपसे, पर अभी थोड़ा मनोरंजन भी करते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: प्यास लगी हो तो बस पानी चाहिए, कैसा भी हो, पैक्ड, अनसेफ, कुछ नहीं देखते, बस पानी चाहिए। बट
3: इट्स डेंजरस, मे बी इट कॉजेज हेल्थ इश्यूज, सो अब जब भी पानी पियो तो पहले चेक करें कि उस पे ISI मार्क है या नहीं। ऑलवेज ड्रिंक ISI मार्क्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बी अवेयर एंड बी सेफ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है बहनों। आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर गृहस्थी। तो बहनों, हम बात कर रहे थे कि खाली समय का सदुपयोग आप कैसे कर सकती हैं, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती हैं। जैसे खाली समय में प्रतिदिन 20 से 30 मिनट योग

0: प्राणायाम या हल्की कसरत आप कर सकती है। इससे शरीर स्वस्थ होगा और मानसिक तनाव भी कम होगा। और बहनों, एक और महत्वपूर्ण बात, खाली समय में स्वयं सहायता समूह या महिला समूह से जुड़ना भी एक लाभदायक कदम हो सकता है। इससे नई जानकारियां आपको मिलती है, अनुभवों का आदान प्रदान होता है और आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी मिलते हैं। याद रखिए, खाली समय केवल समय बिताने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर होता है। हर महिला में असीम क्षमताएं होती है, जरूरत है उन्हें पहचानने की और सही दिशा में उपयोग करने की। तो आज ही संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय अपने विकास, अपने स्वास्थ्य और अपने सपनों के लिए आप जरूर निकालेंगी। और अब बहनों, कार्यक्रम में समय हो रहा है एक वार्ता सुनने का, जिसका विषय है छुट्टियों में बच्चों का व्यक्तित्व विकास। वार्ताकार है श्रीमती पूनम राणा। तो आइए बहनों, सुनते हैं ये वार्ता।
1: बच्चों का व्यक्तित्व कोई एक दिन में नहीं बनता, वो धीरे धीरे घर, स्कूल और समाज से मिलने वाले अनुभवों से मिलता है। इन अनुभवों में सबसे गहरा असर डालने वाली चीज है सकारात्मक उत्साहवर्धन, यानी बच्चों की कोशिशों को पहचानना, उनकी मेहनत की तारीफ करना और गलती करने पर भी उसे गिरने ना देना। बच्चों के व्यक्तित्व में सबसे गहरा असर उनके माता पिता का पड़ता है। माता पिता ही बच्चे के पहले शिक्षक, पहले दोस्त और सबसे बड़े आदर्श होते हैं। बच्चे दुनिया को सबसे पहले माता पिता की नज़र से ही देखते हैं। बच्चे भाषण से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, मेहनत करना, ये सभी बातें बच्चे माता पिता को रोज करते हुए देखते हैं, तो बच्चे भी उसे ही अपनाते हैं। इस तरह इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में माता पिता की भूमिका बहुत अहम होती है। माता पिता ही बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। माता पिता का प्यार, बच्चे को गले लगाना और हम तुम्हारे साथ हैं कहना बच्चों को भावनात्मक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस बच्चे को घर में यह भरोसा मिलता है, वो बाहर जाकर निडर और आत्मविश्वासी बनता है। ये भावनात्मक ताकत आगे चलकर बच्चों को तनाव की स्थिति में कमजोर नहीं होने देती और रिश्तों को संभालने में बहुत काम आती है। बच्चों की बातों को धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। जब वे अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाते हैं तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास बेहतर होता है। गलती करना सीखने का हिस्सा है। अगर बच्चा डर के मारे कोशिश ही नहीं करेगा कि कहीं गलती हो गई तो डांट पड़ेगी, तो वे रुक जाएंगे। जब बच्चा कोई सवाल पूछे और माता पिता डांटने की बजाय उसकी शंका को दूर करने के लिए जवाब दे, तो उसकी जिज्ञासा जिंदा रहती है। कई बार बच्चे डांट के डर से माता पिता से झूठ बोलने से भी नहीं कतराते। गलतियां करने के बाद भी बच्चों को नए तरीके ढूंढने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए। उत्साहवर्धन ये कहता है कि बच्चों को सकारात्मक शब्दों से प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जैसे कोशिश अच्छी थी, तुम ये कर सकते हो। इन शब्दों को सुनकर बच्चों के मन में सीखने की जिज्ञासा बनी रहती है। तारीफ और मार्गदर्शन बच्चे को नई चीजें सीखने से नहीं डराते। विज्ञान के इतिहास में लगभग सभी महान वैज्ञानिक अपनी असीम जिज्ञासा के कारण ही महान खोजकर्ता बने हैं। इसलिए बच्चों की जिज्ञासा को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। माता पिता का काम सिर्फ लाड करना ही नहीं है, सही समय पर उठना, होमवर्क करना, अपनी चीजें समेटना, घर के छोटे मोटे कार्य में मदद करना, जैसे जिम्मेदारियां बच्चों को देकर अनुशासित करना चाहिए। अनुशासित व्यक्तित्व वाले बच्चे कठिन परिस्थिति में भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। यदि वे अपना कार्य सही तरह से करें तो उन्हें शाबाशी देना भूलना नहीं चाहिए। बच्चों के व्यक्तित्व में कमी माता पिता से अधिक कोई नहीं जानता है। यदि बच्चे के व्यक्तित्व में कोई कमी दिखे, जैसे अधिक शर्मीलापन, जिद, गुस्सा या आत्मविश्वास की कमी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा खराब है। इसका मतलब है कि उसे सही मार्गदर्शन और धैर्य की आवश्यकता है। हर कमी के पीछे कोई वजह होती है। यदि बच्चा अधिक शर्मीला है तो हो सकता है कि उसे नई जगह या स्थिति से सामंजस्य बनाने में डर लगता हो। यदि वह जिद करता है तो शायद उसे किसी चीज की आवश्यकता हो।

0: या अपनी बात मनवाना चाहता हो, डांटने से पहले माता पिता को यह समझना चाहिए कि बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। कारण समझे बिना सुधार नहीं होता। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ नियमित रूप से बातचीत करनी चाहिए, उनकी जिद का कारण जानना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अन्य बच्चों के साथ तुलना होने पर बच्चों में हीन भावना घर कर जाती है। इस कारण वे गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हर बच्चा स्वयं में ही अनोखा होता है। किसी दूसरे बच्चे से तुलना करने की बजाय बच्चे के व्यक्तिगत गुणों की तारीफ करनी चाहिए। बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखकर भी उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। बच्चों को खेल खेल में, साथ में शाम को टहलाकर प्यार से सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। उन्हें रुचि के अनुसार खेल, गीत, संगीत, कला, पेंटिंग आदि कक्षाओं में दाखिला दिलाया जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं। बच्चे जितना बाहरी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उतना ही वे लोगों से बात करने में सहज होंगे। लोगों के साथ निपुणता से बात करना भी व्यक्तित्व में निखार लाता है। आजकल बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए कई निजी कक्षाएं भी संचालित हो रही हैं, जिसमें बच्चों को सही तरीके से बातचीत करने का अभ्यास कराया जाता है। यहाँ बच्चों को अपनी बात रखने, कहानी सुनाने और सवाल पूछने का मौका मिलता है। इन कक्षाओं में रोल प्ले, टीम गेम्स में भागीदारी करवाई जाती है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इनसे बच्चा दूसरों से मिलना, सहयोग करना और नेतृत्व करना सीखता है। वर्तमान में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। इन कक्षाओं में बच्चों का दाखिला कराकर माता पिता बच्चों के व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान माता पिता को अपने बच्चों को ऐसी रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए। बच्चों में मोबाइल का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर बच्चे मोबाइल स्क्रीन में ही चिपके रहते हैं। इस कारण उनकी शारीरिक गतिविधि भी कम हो जाती है। साथ ही स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण बच्चों की आंखें तो कमजोर होती ही हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सैल और एकाकी भी होते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से उनके व्यक्तित्व विकास के लिए हानिकारक है। आए दिन अखबार व टीवी में यह खबर आती रहती है कि ऑनलाइन गेम्स खेलते समय बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बच्चों को प्रेम पूर्वक मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में बताना चाहिए। माता पिता को स्वयं भी मोबाइल का सीमित उपयोग करना चाहिए। माता पिता ही नहीं बल्कि घर के अन्य सदस्यों द्वारा भी बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है। परिवार के अन्य सदस्य घर में जिस तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं, उसे देखकर भी बच्चे सीखते हैं। इससे बच्चों के व्यक्तित्व में जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। बच्चों को बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए। बुजुर्गों के अनुभवों से सीख पाकर वे भी भविष्य में होने वाली गतिविधियों को समझकर सही तरह से निर्णय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिश्तेदारों से समय समय पर मेल मिलाप करना भी बच्चों के व्यक्तित्व को परिपक्व करता है। पास पड़ोसियों के साथ बातचीत करना व मदद करना भी एक अच्छी सीख होती है। इससे बच्चों के व्यक्तित्व में संगठित होकर रहने की भावना जागृत होती है। इस तरह की छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान में रखा जाए तो बच्चों के व्यक्तित्व में निसंदेह सकारात्मक विकास होता है। बड़ों द्वारा बच्चों को कभी कभी अनाथ आश्रम या गांव में ले जाकर गरीब बच्चों की स्थिति भी दिखानी चाहिए। इससे उनके मन में गरीब व कमजोर बच्चों के लिए सम्मान की भावना जागृत होगी। गांव में रहने वाले दूर दराज के बच्चों की मेहनत देखकर बच्चों में स्वावलंबी होने की भावना बढ़ेगी। उन्हें गरीब बच्चों की स्थिति देखकर यह सीख देनी चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी वे डटकर खड़े रह सकते हैं। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटे छोटे निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए। इससे उनमें जिम्मेदारी व नेतृत्व का विकास होता है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में माता पिता के प्रेम के साथ अनुशासन, तारीफ के साथ सुधार और भरोसे के साथ आजादी मिले तो निसंदेह वह सफल व अच्छा इंसान ही बनता है। किशोरावस्था में बच्चों में शारीरिक व मानसिक दोनों बदलाव होते हैं। यह वह दौर होता है जब बच्चा दुनिया को नए तरीके से देख रहा होता है। इसलिए इस समय माता पिता को बच्चों का जासूस नहीं मार्गदर्शक बनना चाहिए। माता पिता को बच्चों के नजरिए से सभी चीजें हैंडल करनी चाहिए। यदि बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाई करने या कोई अन्य काम करने के लिए कहेंगे तो वह उससे और दूर जाएगा। किशोरावस्था में हार्मोनल असंतुलन के कारण शरीर में हो रहे बदलाव को समझना चाहिए और बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर इन बदलावों के बारे में उन्हें बताना चाहिए। बच्चों के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना, उन्हें बार बार ना टोकना। ऐसा करने पर बच्चों का माता पिता पर विश्वास बनता है। इसके विपरीत यदि ऐसा नहीं किया तो बच्चे माता पिता से दूरी बनाने लग जाते हैं, बाहरी व्यक्तियों की ज्यादा सुनने लगते हैं। किशोरावस्था में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा मदिरा सेवन व धूम्रपान भी होता है। जिस घर में बड़े मदिरा सेवन व धूम्रपान करते हैं उस घर के किशोर बच्चे भी इसका सेवन करना अपना स्टेटस समझते हैं। इसलिए बच्चों के भविष्य की नींव रखनी है तो घर के बड़ों को स्वयं के आचरण पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। किशोरावस्था की दहलीज में आने के बाद बच्चों को समय समय पर इसके खतरे के बारे में समझाना चाहिए। माता पिता का प्रेम बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से निसंदेह बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है और वह सफल इंसान बनता है।
1: बहनों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था छुट्टियों में बच्चों का व्यक्तित्व विकास। वार्ताकार थी श्रीमती पूनम राणा। उम्मीद है आपने वार्ता को ध्यान से सुना होगा और इस जानकारी का लाभ भी आप जरूर लेंगे। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये सुंदर सा लोकगीत।

बहनों, पिछले दिनों कुछ दिन से भीषण गर्मी और लू ने लोगों को काफी परेशान किया। हालांकि कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिससे मौसम जो है थोड़ा सुहावना जरूर हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दो दिन की बारिश का मतलब ये नहीं कि लू का खतरा पूरी तरह से टल गया है। जी हाँ, बारिश के बाद उमस बढ़ जाती है और जब फिर से तेज धूप निकलती है तो शरीर पर गर्मी का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो सकता है। इसलिए इस मौसम में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और बहनों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लू केवल सूखी गर्म हवाओं से नहीं बल्कि अत्यधिक गर्मी और शरीर में पानी की कमी के कारण भी लग सकती है। इसलिए बारिश होने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब पानी कम पीने की जरूरत है, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखना आज भी उतना ही जरूरी है जितना तेज गर्मी के दिनों में था। घर से बाहर निकलते समय हमेशा पानी की बॉटल जो है साथ रखें। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और ORS जैसे पेय पदार्थों का सेवन आप करते रहें। और किसान भाई बहनों के लिए ये समय और भी सावधानी का है। बारिश के बाद खेतों में काम बढ़ जाता है, लेकिन दोपहर के समय लगातार धूप में काम करने से बचें। बीच बीच में आराम करें और पर्याप्त पानी आप पीते रहें। और अगर किसी को अचानक चक्कर आ जाए, सरदर्द या अत्यधिक कमजोरी हो और शरीर का तापमान बढ़ जाए या उल्टी आने लगे, तो इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ये लू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को तुरंत आप ठंडी और हवादार जगह पर ले जाएं, पानी पिलाएं और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। बहनों, मौसम चाहे गर्म हो, बारिश वाला हो या उमस भरा, स्वास्थ्य की सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी हमें और हमारे परिवार को कई परेशानियों से बचा सकती है। चलिए, अब इन्हीं सारी बातों के साथ जो है समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। पर आप हमें पत्र लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको कैसी लगती है, ये सब आप हमें जरूर बताइएगा। तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम घर गृहस्थी अनुभाग कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन है 2480001। अब अपनी बहन सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए। बहनों, नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम घर गृहस्थी FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ

0: अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रूपये से लेकर 53 रूपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एक बजकर 5 मिनट हुए हैं। नीचे सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आवास सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने तेज की तैयारियां। निगम की टीम लगातार शहर में साफ सफाई को बेहतर बनाने में जुटी और हरिद्वार जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू करने की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आवास व राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: भीमताल झील के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 25 करोड़ 67 लाख रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके तहत झील के आसपास स्थित प्रमुख पार्कों का पुनर्विकास, दीनदयाल पार्क के समीप बोटिंग डॉक का विकास, झील किनारे कॉबिल स्टोन पैदल मार्ग, उद्यानों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग व्यवस्था में सुधार सहित अन्य कार्य प्रस्तावित हैं। सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी कार्यों को मानकों के अनुरूप शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नौकुचियाताल झील के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 21 करोड़ रुपए की योजना पर किए जा रहे कार्यों को भी निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने भवाली में लकड़ी टॉल क्षेत्र में मल्टी लेवल कार पार्किंग और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य, बेसमेंट में पार्किंग और भूतल व प्रथम तल पर लगभग 40 दुकानों के प्रस्तावित निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य कार्यों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
3: प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। खराब मौसम को देखते हुए धाम क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन रजवान ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए केदारनाथ पैदल मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। साथ ही जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 647 जवान तैनात हैं, जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सहायता में जुटे हुए हैं।
5: आपदा प्रबंधन का और जो यात्रियों के प्रति जो प्लान है तो वो हमारे जगह जगह पर रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं और जो चेतावनी तंत्र है हमारे जो कि कंट्रोल रूम से लगातार उनकी माउंटिंग भी की जा रही है और यहीं से मौसम का जो फोरकास्ट वगैरह है वो भी यहां से ही हम लोग अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग उनको सचेत कर रहे हैं और कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं। वहां पर सर आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस है और होमगार्ड के जवान हैं, पीआरडी के जवान हैं और आपदा मित्र हैं, डीडीआरएफ है और वाईएमएफ है और एमटीएफ है, म्यूल टास्क फोर्स भी जानवरों के लिए जो काम कर रही है। टोटल 647 लोग जो अभी यात्रा मार्ग पे हैं वो कार्यरत।
3: टिहरी जिले में धनौल्टी की उप जिलाधिकारी नीलू चावला ने जिले की सीमा के अंतर्गत 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ ही अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, मार्ग अवरोध और कार्यस्थल पर अनाधिकृत प्रवेश जैसी गतिविधियों की आशंका है। इसे देखते हुए शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत परियोजना के समस्त कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग और हथियार, ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही परियोजना स्थल, कार्यालय, आवासीय परिसर व निर्माण क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों को अपने घरों में आने जाने व कृषि कार्यों के लिए शांतिपूर्ण आवाजाही की अनुमति दी गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
3: स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की टीम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई है।

0: उन्होंने कहा कि शहर के संवेदनशील कचरा स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही कूड़ा उठाने वाले वाहनों की समय समय पर निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गीले और सूखे कूड़े के अलग अलग निस्तारण और सेग्रीगेशन को लेकर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर सके।
1: उसको लेके हमारी तैयारी है, हमारी टीमें मुस्तैद हैं और हमारे जहाँ जहाँ पे GVP पॉइंट्स हैं उनको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कूड़े जो उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे पहुँचे वो उसके लिए कार्य हो रहा है और लगातार जो है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो, इसके लिए भी कार्य लगातार किया जा रहा है।
0: हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आगामी कांवड़ मेले और अर्धकुंभ से पहले जिले भर में यह विशेष अभियान चलेगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले में विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि पर हुए अतिक्रमणों की सूची तैयार की जा रही है। कब्जाधारियों को पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम समाज, तालाब, नहर, नदी और अन्य सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। साथ ही जहां से कब्जा हटाया जाएगा वहां दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही भी तय होगी।
2: मुख्यतः जो PWD है, NH है, सिंचाई विभाग है, ग्राम पंचायत की जो जमीन है या अन्य विभाग जो भी है, शिक्षा विभाग हो या कोई और भी विभाग हो, सभी से लिस्ट हमने मंगाई है कि जहां जहां पर अतिक्रमण चिन्हित है 15 दिन का नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। उसके बाद जैसे कि अन्य जगह भी है, भले ही वो हमारे रेलवे की लैंड हो या कुंभ मेले में UP सिंचाई या उत्तराखंड सिंचाई की जमीन हो, वहां पर भी कुछ निर्माण हमने देखे हैं जो कि लंबे समय से हो गए हैं। कुछ निर्माण परमानेंट नेचर के हैं, कुछ टेम्परेरी नेचर के हैं। सभी को अपने अपने स्तर से अधिकारी देखेंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गति देंगे। अतिक्रमण जहां से भी हटाया जाएगा वहां पे जो एक अधिकारी है, भले वो हमारे राजस्व विभाग का लेखपाल हो या कोई SDO या JE हो सिंचाई विभाग का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के SDO हो, सभी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जो भी अधिकारी के क्षेत्र में या कर्मचारी के क्षेत्र में अतिक्रमण है और उसके क्षेत्र में हटा दिया गया है, पुनः अगर अतिक्रमण होता है तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आवास सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी, शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने तेज की तैयारियां, निगम की टीम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी। और हरिद्वार जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये स्वर था लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम था आरती। शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत रोशन का था। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत। हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में बोल हैं जावेद अख्तर की, आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम मशाल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आइए सुनते हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों को फिल्म का नाम द बर्निंग ट्रेन। शब्द है साहिल उद्यानवी की और संगीत आर डी बर्मन का है।

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष

0: ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं,
1: जी
0: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में।
1: जी
0: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
0: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना,
1: जी
0: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है,
1: बिल्कुल
0: सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
1: जी
0: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
1: जी
0: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड
1: जी
0: डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक
1: जी
0: है,
1: जी
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूं, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
1: जी
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहां पर मुझे क्या करना है? यहां मुझे समता मूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो,
1: जी
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती हैं।
1: जी
0: समता मूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं,
1: जी
0: तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
1: जी
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
1: जी
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी,
1: जी
0: शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
1: जी
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दें। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि
1: जी
0: एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा

0: के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
1: बिल्कुल।
0: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
1: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
0: जी,
1: है। ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
0: जी,
1: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
0: जी,
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
0: जी,
1: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं।
0: जी,
1: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
0: जी,
1: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
0: जी,
1: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है। सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
0: जी,
1: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
0: जी,
1: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
0: जी,
1: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है, तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
0: जी,
1: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
0: जी,
1: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
0: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
0: जी,
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते हैं।
0: जी,
1: जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
0: जी,
1: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
0: जी,
1: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
0: जी,
1: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
0: जी।
1: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
0: जी,
1: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
0: जी
1: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
0: जी
1: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
0: जी,
1: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
0: जी
1: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
0: बिल्कुल।
1: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
0: जी,
1: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है।
0: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
1: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है, ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
0: जी,
1: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
0: जी,
1: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
0: जी,
1: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
0: जी,
1: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो।
0: जी,
1: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए।
0: जी,
1: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
0: जी,
1: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
0: जी जी,
1: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
0: बिल्कुल।
1: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं।
0: जी,
1: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
0: जी,
1: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
0: जी,
1: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
0: जी,
1: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
0: जी।
1: तो ये भी एक हमारी पहल है
0: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
1: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी। और एक और सरल उपाय है
0: जी,
1: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है। गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईटी एनसीईआरटी, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
0: जी।
1: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
0: जी।
1: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
0: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
1: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
0: जी,
1: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
0: जी।
1: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
0: जी,
1: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
0: जी।
1: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
0: जी।
1: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
1: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
0: जी।
1: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
0: जी।
1: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
0: जी।
1: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
0: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश

0: करना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सौ दशमलव पांच यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में उसके बाद हिंदी में होंगे, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया समाचार के लिए प्रतीक्षा करें।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Lying hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. Tensions flare up again in West Asia as US strikes radar and drone control sites in Iran. And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals including 10 gold in Hong Kong. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Lying held bilateral talks in New Delhi today. The talks aimed to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, came up for discussion during their talks. Our correspondent has the details.
3: The president of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprihavar relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the president of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the Comprehensive Economic Partnership Agreement immediately gives Indian exporters 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines, covering 99.38% of exports. This marks a dramatic improvement over the pre-CEPA system that allowed only 15.3% of India's exports to enter Oman at zero duty. The minister said goods from India that currently face a 5% import duty in Oman will become more competitive. Mr. Goyal added that the agreement will significantly benefit the country's students, artisans, women, farmers, fishermen, and micro, small, and medium enterprises by opening new markets, boosting exports, attracting investments, and accelerating job creation. The second India-Australia Defence Ministers' dialogue is underway in New Delhi. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles are co-chairing the dialogue. During the dialogue, both ministers will review the progress in bilateral defence cooperation and identify new avenues for collaboration. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, promote stability and security in the Indo-Pacific region, and identify new areas of collaboration in defence and security. In his opening remarks, Mr. Singh said the defence ties between India and Australia have strengthened significantly.
4: In the coming years, we work with a renewed momentum, effectively contributing to growth of bilateral defense relations. Excellency, today is the 5th anniversary of elevation of our relations to comprehensive strategic partnership. I appreciate the significant strides made in our bilateral relationship across a wide range of sectors, from political exchanges to defense partnerships.
2: Mr. Mall said Australia and India are doing a lot of work in the maritime domain. He said both nations have never been more strategically aligned. Gross goods and services tax, GST, collections rose 3.2% to over 1,94,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of collection from imports. The gross GST collection in May last year was 1,88,000 crore rupees. Gross central GST collection from domestic transactions last month stood at 37,397 crore rupees. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The West Bengal cabinet headed by Chief Minister Shubhendu Adhikari was expanded today with the induction of 35 new ministers, taking the strength of the Council of Ministers to 41. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to 35 BJP MLAs at a swearing-in ceremony held at Lok Bhavan in Kolkata. We have a report.
5: 13 cabinet ministers got birth in today's expansion. The members who sworn in today as the cabinet ministers include Shapan Dasgupta, Arjun Singh, Tapos Rai, Shankar Ghosh and others. The cabinet expansion is being seen as a significant step in strengthening the state government's administrative structure following the formation of the new government. The new ministers are representing different regions of the state and a mix of experienced legislators and first-time ministers. The allocation of portfolios among the newly inducted ministers is likely to be announced later. Sandipan Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme completed 6 years today. PM Swanidhi has enabled millions of street vendors to access easy credit and build sustainable livelihoods over the last 6 years. Since its launch in 2020, more than 1 crore 12 lakh loans have already been disbursed. Hailing the scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said PM Swanidhi has transformed the lives of countless street vendors by ensuring access to collateral-free credit, financial inclusion and new opportunities for growth. More from our correspondent.
6: Under the scheme, collateral-free loans of 15,000, 25,000 and 50,000 rupees are provided in three progressive tranches with interest subsidy and credit guarantee support. The initiative has benefited over 75 lakh beneficiaries across cities and towns. Loans worth over 17,800 crore rupees have been provided under the scheme. Over 55 lakh beneficiaries have been onboarded digitally under the scheme. Together, they have carried out over 841 crore digital transactions worth nearly 8.96 lakh crore rupees. Beneficiaries under PM Swanidhi have also received nearly 800 crore rupees through digital cashback incentives and interest subsidies. The scheme has been extended until March 2030. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: Notification was issued today for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to poll on the 18th of this month. Notification was also issued today for Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha. The polling will be held on the 18th of this month. Counting of votes will take place on the same day. 5 new judges have been appointed to the Supreme Court, taking the apex court's working strength to 37, including the Chief Justice of India. The centre had last month promulgated an ordinance amending the law to raise the Supreme Court's sanctioned strength to 37 judges from 33, excluding the Chief Justice of India. The prices of 19-kilogram commercial LPG cylinder used by hotels, restaurants and other businesses has been hiked across the country. However, there has been no change in the rates of domestic cooking gas used by households. The price of commercial LPG cylinder has been hiked by 42 rupees in Delhi and it will now cost 3,113 rupees 50 paise. In Mumbai, it has been hiked by 43 rupees 50 paise and will now cost 3,067 rupees 50 paise. The latest increase in commercial LPG prices came in the backdrop of rising global energy costs triggered by escalation of tensions in West Asia. Tensions have flared up once again in West Asia after the United States carried out strikes on Iranian radar and drone-controlled sites. The strikes targeted facilities in Gorok and Kashmir Island. The military action was conducted in response to shooting down of an American MQ-1 Predator drone by Tehran operating over international waters over the weekend. Meanwhile, Kuwait today said its air defences were confronting hostile missile and drone attacks approaching the country. No group has claimed responsibility for the attacks on Kuwait. The recent attacks reflect the fragility of a ceasefire in the Iran war. Our West Asia correspondent has the details.
7: Against this backdrop of military exchanges, diplomatic channels remain cautiously open. United States President Donald Trump said he is close to reaching a very good deal with Iran, even though American media reports suggest he is pushing for significantly tougher terms than previously discussed. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi confirmed that the exchanges of messages between Tehran and Washington is ongoing, but was careful to note that nothing can be considered final until a deal is formally concluded. Elsewhere, Israel's expanding ground invasion of Lebanon has drawn sharp international criticism. France has formally requested an emergency meeting of United Nations Security Council to address the situation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
2: Malaysia today began enforcing rules barring millions of children younger than 16 from owning social media accounts, joining a global effort to tighten online safety protections for young users. Other countries including Australia, Brazil and Indonesia have also announced age-based restrictions for children's access to social media. In Myanmar, the death toll from a powerful explosion in Kangtup village of Namkham township has risen to 55. More than 70 people were injured in the blast, which occurred yesterday following the accidental detonation of materials allegedly stored for mining purposes. The result of the Joint Entrance Examination JEE Advanced 2026 has been declared for admission to the premier Indian Institutes of Technology IITs and other top institutions. Announcing the results, IIT Roorkee said, out of a total of 1,79,694 candidates who appeared for the exam on the 17th of last month, 56,880 candidates have qualified, including 10,107 females. Shubham Kumar from the IIT Delhi zone secured the first rank. On to sports, in the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships, India delivered a historic campaign, finishing second in the standings with 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze in Hong Kong. The runner-up finish marked India's best ever performance at the Continental Track and Field Championships outside home soil. A total of 48 Indian athletes, 30 men and 18 women competed in the tournament, held from the 28th to the 31st of last month. The championships are serving as a qualifying event for the World Under-20 Athletics Championships scheduled to be held at Oregon in the United States in August. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent of Asian Under-20 Athletics Championships on winning 19 medals. In a social media post, Mr. Modi said this outstanding performance reflects the determination and excellence of India's young athletes. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Tripura, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and West Madhya Pradesh today. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Lying hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
8: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये से अधिक हुआ पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइंग के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे
3: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली
8: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे
9: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता अर्जुन सिंह तापस राय शंकर घोष और अन्य शामिल है काशफिन नाहर आकाशवाणी समाचार कलकत्ता
8: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट झारखंड में 2 और मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं 18 जून को मतदान होगा मतगणना भी उसी दिन होगी ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
10: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
11: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
12: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
11: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
8: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
13: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणी मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
8: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रूपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रूपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रूपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रूपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
14: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
8: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
15: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
8: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, देश के वीर जांबाज देश की चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, प्रांत से हो, पर देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं और मातृभूमि की सेवा करते हैं। ऐसे ही थे नायब सूबेदार येरप्पा एसएस, जिनकी बचपन से इच्छा थी कि वे सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की सेवा करें। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

सैनिक साथियों, नायब सूबेदार येरप्पा का जन्म 1 जून यानी कि आज ही के दिन वर्ष 1960 में कर्नाटक के कुर्ग जिले के सोमरपेट तालुका में हुआ था। बचपन से ही नायब सूबेदार येरप्पा सेना में भर्ती होना चाहते थे, क्योंकि सैन्य जीवन इन्हें बहुत अच्छा लगता था। और स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सूबेदार येरप्पा 12 जून 1989 को 19 वर्ष की आयु में सेना में शामिल हो गए और मद्रास रेजिमेंट की 12 मद्रास बटालियन में भर्ती हो गए। यह बटालियन अपने साहसी सैनिकों और विभिन्न युद्ध अभियानों के लिए एक पैदल सेना रेजिमेंट है। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, इस प्रकार वर्ष 2000 तक नबी सूबेदार येरप्पा ने लगभग 20 वर्षों की सेवा पूरी की थी। साथ ही इन्होंने कई ऐसे ऑपरेशनल क्षेत्रों में भी सेवा की है जिनका इन्हें लंबा अनुभव था। इस दौरान इन्होंने असम, गुजरात, लखनऊ, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, कलकत्ता, सिक्किम और श्रीलंका जैसे विभिन्न स्थानों पर सेवाएं दी हैं। वर्ष 1984 से लेकर 1985 के बीच उन्होंने कई ऑपरेशन सेवाएं दी हैं, जिनमें मुख्य रही हैं ऑपरेशन सेवेज जो कि सिक्किम में चला, 1987 में श्रीलंका का ऑपरेशन पवन और दिसंबर 1988 में ऑपरेशन रक्षक शामिल हैं। नायब सूबेदार येरप्पा इन सेवाओं के दौरान इन्होंने अनेक पदक भी प्राप्त किए हैं, जिनमें मुख्य हैं सैन्य सेवा पदक, उच्च ऊंचाई पदक, नववर्ष दीर्घ सेवा पदक, विशेष सेवा पदक और सामान्य सेवा पदक आदि। सैनिक साथियों, ये पदक नहीं बल्कि घोंसला होते हैं जो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

सैनिक साथियों, वर्ष 2000 में असम में ऑपरेशन राइनो चल रहा था और येरप्पा की यूनिट असम में तैनात थी। वर्ष 2000 में नायब सूबेदार येरप्पा को ट्रेन सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था, क्योंकि ट्रेन का मार्ग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरता था और ऐसे में कामाख्या से खलीम लखीमपुर रेलवे स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन में ये कर्तव्य निभा रहे थे। ऐसे में अचानक से ट्रेन से गिरकर पड़े और देश के लिए शहीद हो गए। नायब सूबेदार येरप्पा ने कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सैनिक साथियों, इनका नाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में भी अंकित है। आज इनकी जयंती के अवसर पर इनके त्याग, साहस और समर्पण को हम सलाम करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

सैनिक साथी, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: ये था फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सैनिकों के लिए 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग, वन विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के शेरबाग रोड स्थित पार्क में अमर शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित कर उनके राष्ट्र निर्माण व देश सेवा में दिए गए योगदान को नमन किया। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। खराब मौसम को देखते हुए धाम क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोला गया। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। हरिद्वार के सप्तऋषि चौकी के पास राजस्थान के तीर्थयात्रियों की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मौत, 25 अन्य घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने तैयारियां तेज की। निगम की टीमें लगातार शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं। शहर के संवेदनशील कचरा स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि पर हुए अतिक्रमणों की सूची तैयार की जा रही है। चंपावत जिले के जरूरतमंद और पात्र नागरिकों को त्वरित राहत व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में चंपावत जिला सभागार में

0: मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 68 लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 पर्वतीय जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। राज्य के पर्वतीय और मैदानी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

जरा हटके जरा बचके, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाजें थी वरुण जैन, अल्तमश फरीदी और साथियों की। आइए आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है अतरंगी रे। गीत है इरशाद कामिल का और संगीत ए आर रहमान का है।

गाने नहीं तराने का ये अगला गीत शंकर एहसान लोय के संगीत निर्देशन में, आवाज है जावेद बशीर की और शब्द है प्रसून जोशी की। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

समीर के शब्दों को संगीत दिया था प्रीतम ने। ये आवाजें थी श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की। फिल्म का नाम था भूलभुलैया। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है बॉम्बे। गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

0: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस दे
0: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: समय 3:38 और 42 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे गानी नई तरारी आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है कलंक।

ये स्वर थे लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों की फिल्म का नाम था कच्ची धागी। श्रोता सुन रहे गाने नई तरह ने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत पलक मुच्छल की आवाज में, फिल्म का नाम है खामोशियां।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: गाने लेते रहने का ये अंतिम गीत आवासी अलका याग्निक और उदित नारायण की फिल्म का नाम है तेरे नाम। गीत समीर का और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: अभी आप सुन रहे थे गाने नए तेराने। हम आपको याद दिला दें, शाम 4:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक कलाकार। आज की कलाकार होंगी अभिनेत्री नरगिस। FM 100.5 MHz पर हवा आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग, वन विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 मई से शुरू हुई यात्रा के मात्र 1 महीने में जारी इनर लाइन परमिट्स की संख्या 27,911 पहुंची। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोला गया। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला मुख्यालय स्थित निर्माणाधीन विज्ञान संग्रहालय का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र पूरा कर विद्यार्थियों और आमजन के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 65 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 32 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों को कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। चंपावत जिले के जरूरतमंद और पात्र नागरिकों को त्वरित राहत व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में चंपावत जिला सभागार में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 68 लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से बागेश्वर में 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 25 युवाओं और महिलाओं को बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन की तकनीक सिखाई जा रही है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 पर्वतीय जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। राज्य के पर्वतीय और मैदानी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरे कृष्ण शाह का सितार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग शुद्ध सारंग और मांड। तबले पर आपका साथ दिया है साबिर हुसैन खान ने। तो आइए सुनते हैं हरे कृष्ण शाह का सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हरि कृष्ण शाह का सितार वादन। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक कलाकार।

कार्यक्रम में कलाकार में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, फिल्म उद्योग में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपनी क्षमता से बॉलीवुड में नाम कमाया है और प्रशंसकों के दिल में जगह बनाई है। ऐसी ही एक अदाकारा है जिनके अभिनय की मिसाल दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इनके जीवन से जुड़ी बातों पर, साथ ही सुनवाएंगे इन पर फिल्माए गए फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार आज के कलाकार हैं अभिनेत्री नरगिस। श्रोताओं, अभिनेत्री नरगिस का वास्तविक नाम था फातिमा रशीद और इनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। नरगिस की माता जतिनबाई इलाहाबाद की रहने वाली एक शास्त्रीय गायिका थी, साथ ही निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री थी और इनके पिता उत्तमचंद मोहनदास एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। लेकिन नरगिस फिल्मों में अपनी माता के सहयोग से आई और अभिनय तो जैसे इन्हें विरासत में ही मिला था। मात्र 6 वर्ष की छोटी सी आयु में नरगिस ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की और वर्ष 1935 में इन्होंने फिल्म तलाश हक नाम की फिल्म में काम किया और इस फिल्म के बाद इन्हें बेबी नरगिस के नाम से पहचान मिली। औषधों इस फिल्म की सफलता के बाद इनके पास फिल्मों की लाइन लगी और फिल्मों के लिए इन्हें आमंत्रण मिलने लगे।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार आज की कलाकार अभिनेत्री नरगिस। श्रोता 1940 से 50 के दशक में नरगिस ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल है बरसात, अंदाज, आवारा, दीदा, शे 420, चोरी चोरी आदि प्रमुख फिल्में रही हैं। और यूं तो नरगिस ने बहुत सारी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है, पर वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस की जीवन में एक नया बदलाव लाई और ये फिल्म उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया और मदर इंडिया फिल्म के लिए नरगिस को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनेत्री नरगिस ने ज्यादातर फिल्में अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ की है, लेकिन राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी लगभग 16 से अधिक फिल्मों में रही है और इस जोड़ी को बहुत ही पसंद किया गया। 1940 से 1960 के दशक में इस जोड़ी को सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक माना गया है। सुनवाते हैं इनके फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म का नाम श्री 420।

श्वेता अभिनेत्री नरगिस ने अब फिल्मों में अभिनय के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व को भी बखूबी निभाया है। अपने पति अभिनेता सुनील दत्त के साथ इन्होंने आर्ट्स कल्चरल ग्रुप नाम से एक संस्था का गठन किया है जो भारतीय सैनिकों के लिए मनोरंजन के लिए शो किया करता है। साथ ही इन्होंने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भी कार्य किया है और बाद में समाज सेवा के कार्यों से ये जुड़ी रही। सुन पाते हैं कार्यक्रम में इनके द्वारा अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम का ही अगला गीत।

0: Akashwadi at 90.
1: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार आज की कलाकार अभिनेत्री नरगिस। श्रोतम, फिल्मों में अभिनय के लिए नरगिस ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वर्ष 1957 में फिल्म मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 1958 में फिल्म मदर इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा पुरस्कार दिया गया। 1958 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1968 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इन्हें दिया गया। साथ ही अपने फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा कई सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। सुन बातें हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में ये अगला गीत।

श्रोता अभिनेत्री नरगिस द्वारा अभिनीत अंतिम फिल्म थी सन 1968 की रात और दिन, और अभिनेत्री नरगिस ने अभिनय से काल में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, साथ ही लंबे समय तक लोगों के लिए अपने मनोरंजन से जुड़ी रही और लोगों के दिलों में राज बनाई। और इन फिल्मों के लोकप्रिय होने के बाद श्रोताओं, एक समय के बाद कैंसर की बीमारी के चलते नरगिस दस 3 मई 1981 को दुनिया छोड़ चली और अपने पीछे छोड़ गई अभिनय और अभिनय से जुड़ी यादें जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में यह अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। ये कार्यक्रम अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित था। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउं लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
4: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले जानकारी दे रहे हैं आज के शेष कार्यक्रमों की, तो श्रोताओं आपको बता दें कि आज रात 8:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम गरीब कल्याण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। आज शाम 7:00 किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा इस माह किसान साथी क्या करें, विषय पर डॉक्टर योगेंद्र पाल से विकास चमोली की बातचीत। रात 8:00 सुनिएगा हिंदी वार्ता, वार्ता का विषय होगा वंदे मातरम आजादी के आंदोलन की आत्मा, और वार्ताकार होंगे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मुंगई। रात 10:00 आप सुनेंगे कवि गोष्ठी, जिसमें प्रतिभागी कवि होंगे श्री ब्रजेंद्र हर्ष, श्रीमती मीरा भारद्वाज और श्री पी के सिंह। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे अब से थोड़ी देर में, यानी 5:10 पर, और शाम 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम गाम जगत प्रसारित होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 10:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की, और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल मंगलवार का दिन है, 2 जून। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह चिंतन और भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के साथ होगी 6:05 पर। सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कंचन के गाए गढ़वाली लोकगीत। सुबह 10:02 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10:35 पर हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए अवधि लोकगीत। कल दोपहर 12:30 पर महिला जगत के कार्यक्रम में सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम।

कल शाम 4:30 पर कार्यक्रम एक कलाकार में बात होगी अभिनेता निर्माता निर्देशक राज कपूर की, और कल रात 9:15 पर स्पॉटलाइट का कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल रात 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा। ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, आपको एक बार पुनः बता दें कि आज रात 8:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम गरीब कल्याण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड नमस्कार हमारे सभी दोस्तों को। कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिविज बहुगुणा।
1: और दोस्तों मैं हूं आपके साथ ही अंशिका। और कार्यक्रम युववाणी लेकर एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के बीच कुछ नए विषयों और बेहतरीन गीतों के साथ। तो दोस्तों सफर हो चुका है इन्फोटेनमेंट का शुरू, और इस इन्फोटेनमेंट यानी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के सफर को आगे बढ़ाते हैं और एंटरटेनमेंट को सबसे आगे रखते हुए आपको सुनाते हैं अपनी पहले फिल्म का गाना हंसी तो फसी से, जिसे गाया है सनम पुरी और शिप्रा गोयल ने।

0: प्यास लगी हो तो बस पानी चाहिए, कैसा भी हो, पैक्ड, अनसेफ, कुछ नहीं देखते, बस पानी चाहिए। बट
1: इट्स डेंजरस, मे बी इट कॉजेज हेल्थ इश्यूज, सो अब जब भी पानी पियो तो पहले चेक करें कि उस पे ISI मार्क है या नहीं। ऑलवेज ड्रिंक ISI मार्क्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बी अवेयर एंड बी सेफ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल सही। और दिव्यज, मुझे लगता है कि हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो ऐसा टॉपिक है जिससे हर इंसान रिलेट कर सकता है।
2: सही कहा।
3: क्योंकि आज दोस्तों डे हम मना रहे हैं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स।
2: बिल्कुल।
3: और पेरेंट्स हमारे जीवन की नींव है। पेरेंट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे।
2: बिल्कुल,
3: है ना। और इसीलिए आज के दिन को पेरेंट्स को डेडिकेट करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन की जो पहली पाठशाला होती है, पहला सहारा होता है, और सबसे बड़े जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं। और इसी अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 1 जून को, यानी आज के दिन, वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है।
2: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा

0: ने वर्ष 2012 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी ताकि दुनिया भर में माता पिता द्वारा बच्चों के पालन पोषण और उनके विकास में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान दिया जा सके।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन की वो शक्ति है हमारे माता पिता, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्रेम करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमको संस्कार देते हैं। आज के समय में हम जो कुछ भी बन पाए हैं हमारे पेरेंट्स की वजह से बन पाए हैं। तो आज के दिन हमको अपने पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका धन्यवाद कि आप थे तभी हम आए हैं, और वो हमारे सुख दुख के साथी होते हैं और हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो माता पिता की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे लाइफ के जो शुरुआत के जो साल होते हैं, जब हम बोलना सीख रहे होते हैं, चलना सीख रहे होते हैं, हम सही गलत का अंतर नहीं समझ पाते, ऐसे में हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमको सही राह दिखाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अंशिका। दोस्तों, आज के समय में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है, माता पिता की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, तो वो ना केवल बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पाठ पढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आज का जो दिन है, अभिभावक दिवस जो है, ये हमें अवसर देता है, हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने माता पिता के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम व्यक्त करें, उनके लिए हमारा जो प्यार है हम उसको दिखाएं, उनके लिए एफर्ट्स करें, उनके उन्होंने हमारे लिए जो त्याग किए हैं, संघर्ष किया है, इतना समर्पण किया है, उस सभी चीज़ों को याद करें, उनको महत्वपूर्ण महसूस करें कि वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
0: दोस्तों, ये दिन केवल सम्मान व्यक्त करने का अवसर नहीं है बल्कि हमें परिवार के महत्व को समझने की भी प्रेरणा देता है। दोस्तों, एक मजबूत परिवार ही एक मजबूत समाज और राष्ट्र की नींव होते हैं।
1: और दोस्तों, कई बार हम अपनी इतनी व्यस्त दिनचर्या में अपने माता पिता के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। हमारी दिन भर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि हम उन कामों में अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में आज का दिन हमको याद दिलाता है कि उनके साथ हम चाहे थोड़ा सा भी समय बिताएं ना, वो भी उनके लिए पर्याप्त होगा क्योंकि हम उनके बच्चे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अंशिका। दोस्तों, माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है, वे हमारी सफलता पर सबसे अधिक खुश होते हैं और हमारी असफलताओं में सबसे पहले हमारा हौसला बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति में भी माता पिता को अत्यंत सम्मान दिया गया है दोस्तों, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो देवतुल्य हैं, वो देवताओं के समान हैं।
0: और दोस्तों, इसीलिए हमें केवल किसी एक विशेष दिन पर ही नहीं बल्कि हर दिन अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनके प्रति अपना प्रेम और आदर व्यक्त करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, इस वैश्विक अभिभावक दिवस पर, ग्लोबल पेरेंट्स डे पर, हम सभी ये संकल्प लें कि अपने माता पिता के प्रति हम सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता की भावना को सदैव बनाए रखेंगे
0: और साथ ही दोस्तों उनके अनुभवों से सीखेंगे, उनका आदर करेंगे और उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे। और इसी बीच दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू

0: की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुँची 6 करोड़ के पार।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आज विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। नई नई तकनीकें न केवल हमारे काम को आसान बना रही हैं, बल्कि दुनिया को देखने और समझने का हमारा तरीका भी बदल रही हैं।
3: बिल्कुल। और दोस्तों, इन्हीं आधुनिक तकनीकों में से एक है ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे संक्षेप में AR कहा जाता है। ये तकनीक वास्तविक दुनिया में डिजिटल जानकारी और आभासी वस्तुओं को जोड़कर एक नया अनुभव प्रदान करती है।
2: दोस्तों, ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर द्वारा बनाई गई तस्वीरें, वीडियो, ध्वनि या फिर अन्य डिजिटल तत्व वास्तविक दुनिया के दृश्य पर जोड़े जाते हैं। इससे उपयोगकर्ता को वास्तविक और डिजिटल दुनिया का मिश्रित अनुभव भी प्राप्त होता है।
3: चलिए दोस्तों, इसे एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं। तो आप अपने मोबाइल कैमरे से किसी जगह या किसी चीज को देखते हैं और उसे स्क्रीन पर किसी अतिरिक्त डिजिटल जानकारी दिखाई देने लगे, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी का उदाहरण है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने अंशिका। दोस्तों, ये तकनीक स्मार्टफोन, टैबलेट, विशेष चश्मों और अन्य डिजिटल उपकरणों की सहायता से कार्य करती है। कैमरा वास्तविक दुनिया की तस्वीर लेता है और सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डिजिटल सामग्री जोड़ देता है।
3: और दोस्तों, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी यानी VR में अंतर समझना भी जरूरी है। वर्चुअल रियलिटी उपयोगकर्ता को एक पूरी तरह आभासी दुनिया में लेकर चली जाती है, जबकि जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है वो वास्तविक दुनिया को बनाए रखती है और उसमें डिजिटल तत्व जोड़ती है।
2: दोस्तों, आज शिक्षा के क्षेत्र में ऑगमेंटेड रियलिटी का व्यापक उपयोग हो रहा है। विद्यार्थी विज्ञान, इतिहास और भूगोल जैसे विषयों को त्रिआयामी अर्थात 3D मॉडल के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं।
3: और दोस्तों, चिकित्सा क्षेत्र में भी ये तकनीक डॉक्टरों को जटिल प्रक्रियाओं को समझने और प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। सर्जरी की तैयारी करनी हो और चिकित्सा शिक्षा में इसका उपयोग बढ़ रहा है।
2: और दोस्तों, खरीदारी के क्षेत्र में भी ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग किया जा रहा है। कई कंपनियां ग्राहकों को ये सुविधा देती है कि वे किसी फर्नीचर या वस्तु को खरीदने से पहले अपने घर में उसका आभासी स्वरूप देखकर निर्णय ले सकते हैं।
3: और इतना ही नहीं दोस्तों, मनोरंजन और गेमिंग की दुनिया में भी ऑगमेंटेड रियलिटी ने नई संभावनाएं खोली हैं। मोबाइल गेम्स और इंटरैक्टिव अनुभवों में इसका लगातार उपयोग बढ़ रहा है।
2: और इसके अलावा दोस्तों, पर्यटन, वास्तुकला, रक्षा, उद्योग और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी ऑगमेंटेड रियलिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: बिल्कुल। और दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये तकनीक अधिक उन्नत होगी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन जाएगी।
2: दोस्तों, ऑगमेंटेड रियलिटी केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि वास्तविक और डिजिटल दुनिया के बीच एक नया सेतु है जो सीखने, समझने और कार्य करने के तरीकों को बदल रही है। और ये तकनीक हमें ये दिखाती है दोस्तों कि विज्ञान और नवाचार किस प्रकार हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक, रोचक और प्रभावी बना सकते हैं।
3: चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से ये गाना सुखविंदर सिंह की आवाज में।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप बने हुए हैं मेरे यानी अंशिका
1: और दिविज के साथ
0: कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्लानिंग तो कर ही रहे होंगे घूमने जाने का। क्यों दिविज, तुमने कुछ किया है?
1: ऐसा कुछ खास तो नहीं
0: अभी तक। नहीं, कोई बात नहीं, कर लेना। बस दोस्तों, आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी जा रहे ना, खाने पीने का विशेष ध्यान रखेगा, क्योंकि खाना पीना ही एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले हमारी हेल्थ को ट्रिगर करती है। क्यों देवेश?
1: बिल्कुल सही कहा आपने अंशिका।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे तत्व की जो हमारे रोजमर्रा के खान पान में चुपचाप शामिल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रांस फैट की। अब जरा सोचिए, हम बाजार से चिप्स, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, इतनी सारी चीजें लेते हैं, और ये सभी क्या है? तले हुए खाद्य पदार्थ। तो अक्सर हम उनके स्वाद और कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन हेल्थ पर देते ही नहीं है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है दोस्तों कि इन चीजों में मौजूद कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे दिल और शरीर के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं?
1: दोस्तों, ट्रांस फैट उन्हीं खतरनाक तत्वों में से एक है जिसको ट्रांस फैट कहा जाता है। आइए आपको बता दें दोस्तों, ट्रांसफैट क्या है। ट्रांसफैट एक प्रकार की वसा यानी फैट है जिसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उनका स्वाद और बनावट बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अक्सर प्रोसेस्ड फूड और बार बार गर्म किए गए तेल में पाया जाता है।
0: यानी अगर किसी दुकान पर एक ही तेल में बार बार पकौड़े, समोसे या अन्य चीजें तली जा रही है ना दोस्तों, तो उसमें ट्रांस फैट बनने की संभावना बढ़ जाती है। और दिव्य, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाती हूँ। क्या आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार

0: स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है।
1: और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ट्रांस फैट का ज्यादा क्वांटिटी में सेवन करना ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रांस फैट कहाँ कहाँ छिपा हो सकता है? हम जो पैकेट वाले चिप्स खाते हैं, बिस्कुट और कुकीज में, केक और पेस्ट्री में, डोनट्स में, नमकीन स्नैक्स में, फ्रोजन फूड और फास्ट फूड में, और बार बार गर्म किए गए तेल में बने खाद्य पदार्थ में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट होता है दोस्तों।
1: बिल्कुल, इसीलिए दोस्तों सिर्फ स्वाद देखकर कोई चीज खरीदना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा बचाव भी जरूरी है। और अब बात आती है कि बचाव कैसे करें, ट्रांस फैट से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों सबसे आसान उपाय अपनाना है कि अपने स्वास्थ्य को हम बेहतर सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। अब जैसे पैकेट वाले जो खाद्य पदार्थ हम खरीदते हैं, सबसे पहले उनका लेबल पढ़े, इंग्रेडिएंट्स में पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हो तो ऐसे उत्पादों से बचने की कोशिश करें, जितना हो सके घर का ताजा भोजन खाएं।
0: दोस्तों, फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज को अपने मील का हिस्सा जरूर बनाएं। बाहर का तला हुआ भोजन लिमिटेड ही रखें। खाना बनाने के लिए तेल की क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखें और एक ही तेल को बार बार गर्म ना करें।
1: बिल्कुल, और दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सुविधा को प्रायोरिटी देते हैं, पैकेट खोलो और खा लो, लेकिन हेल्थ, दोस्तों हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए बाद में टाला जा सके। हमारे छोटे छोटे डिसीजन ही हमारे फ्यूचर की हेल्थ को तय करते हैं। अगर आज हम जागरूक रहेंगे तो कल हमारा दिल और हमारा शरीर दोनों हमें थैंक यू करेंगे।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप भी किसी स्नैक या पैकेट वाले खाद्य पदार्थ को खरीदने जाएं तो केवल उसका स्वाद ही नहीं, उसकी गुणवत्ता और पोषण संबंधी जानकारी भी जरूर देखें। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ शरीर की नींव स्वस्थ भोजन से ही रखी जाती है और ट्रांस फैट से दूरी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और दोस्तों, सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से जिसे आवाज दी है सोनू निगम ने।

तो दोस्तों आज का कार्यक्रम युववाणी यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमें चिट्ठी भेजने का पता नोट कर लीजिए दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रसपना पुल, और हमारा पिन कोड है 2480001। दोस्तों डिजिटल इंडिया की डिजिटल चिट्ठी यानी जीमेल के

0: द्वारा भी आप हमें अपने विचार भेज सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है youthddn@gmail.com।
1: और हमसे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ने के लिए दोस्तों नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 7088000731। दोस्तों आपके पत्रों का और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी अंशिका को
0: और मुझे यानी दिविज को दीजिए इजाजत।

100.5 MHz पर अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुन द्वारा सभी भाईबंधों ते विनय ध्यान छोड़ बटे की नमस्कार से बसों
1: और दगड़ मां शांति बिंजुल तरफ बटे भी सादर से बसों।
0: अब तो ठीक छ ना कि गर्म नहीं छ बिंडे
1: बरखा
0: खुश छ ना आप?
1: बिल्कुल हमें खुश के छा अपार जंगल पर अच्छा खोल भी खुश छिन।
0: हाँ सच मा डाल बूटी भी क्या नवे धुए दिखेने छिन ना अपार दूर अगर हम देहरादून बटे ऐच मसूरी छोड़ देखदा तो जग जग तक जंगल छना हमारा जो ब्याल बटकी और पहली बटकी धुआं रोली मा दिखेना नहीं छा अब साफ दिखेना छन। यानी कुल मिला के 2-3 दिन तक जो ये बरखा हुए बहुत छोटा छोटी चाहे कदका भी हुआ लेकिन बहुत सुंदर रहा है और गर्मी से कम राहत मिली।
1: बिल्कुल और जो बणो पण आग भी लगी छे वा भी बुझ गया ये सबसे बढ़िया बात है ना।
0: अब ज्यादातर आप देखना छे ना हमारा जो पर्यटक छे ना वो गर्मियों की छुट्टी जन स्कूलों का हुई ना और दौड़ दौड़ी के उत्तराखंड छोड़ यानी हर मन की चांद की प्रकृति का पास पहुंच जाओ और ठंडा इलाकों में पहुंच जाओ
1: जी।
0: तो एक ठंडू इलाका भार पौड़ी नजीक भी चाह खिरसू है तो भाई इधर ठंड की वक्त 12 मास ठंड रहे।
1: हाँ, आप जी अच्छा हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो हम भी अपना भाईबंधों तक खिरसू ले जाऊंगा और वहां का जो पर्यटक क्षेत्र जो वो एक भ्रमण करूंगा एक बातचीत का माध्यम से वक हम मिला श्री संपत सिंह रावत से तो उंग दगड़ हमारे मुखा भेंट घड़ेक में ही हम कार्यक्रम में शामिल कला लेकिन आज एक ना बल्कि कई दिवस छन तो सोमवारा दिन पहल दिन और पहली तारीख भी
1: तारीख
0: है ना
1: जी।
0: तो हम बात करला कि साहब जो दिवस छ वो अभिभावक दिवस का रूप में आज पूरी दुनिया मनानी छ
1: तो हम पहली गुरु की बात कर लूला।
0: हाँ बिल्कुल
1: पहली तारीख माँ पहली गुरु की बात कर ला
0: जी जी
1: कि लेकिन आज खास दिवस छ विश्व अभिभावक दिवस और अभिभावकों की भूमिका हर कै का जीवन में एक ईश्वर तुल्य हो जो का संघर्ष से मेहनत से त्याग से हमारो भविष्य निर्धारित हुन।
0: और ये अभिभावक माँ बहुत लोग शामिल हो जाते ना चाहे वो बुए बाप छन वो भी अभिभावक छन चाहे वो गुरुजी छन वो भी हमारा जो अध्यापक छन वो भी और इतना ही ना कते दाइन हुन कि
1: बड़ बहन।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं मामा भी हुए जन्दिन है ना फूफू और इन बोले जब
1: मौसी काकी बोडी चाची
0: बिल्कुल
1: सब हमारे अभिभावक छे।
0: हाँ तो अभी देखा कि एक शब्द मा पूरु परिवार कुटुंब रिश्ता नाता सब जुड़ा छन तो कतुन बड़ो शब्द छ नहीं और ये के जिम्मेदारी छ कि आज हम कह का अभिभावक छुआ ब्याल तक हमारे अभिभावक कोई और छे है ना और यु क्रम चलनो छे और ये दुनिया को दस्तूर छे चबी पूरी दुनिया मनानी छे बात थे कि हाँ साहब अभिभावक दिवस भी होनो छे और उन अभिभावकों तय हम आज जे भी सफलता का शिखर पर छुआ या जखमा भी छुआ हम उन बोला जुग राज रहे कि आप हम तो बाट बताए चाहे आप हमारा गुरु जी रहे चाहे बुए बाब रहे उनका ही प्रताप से आज आप जख छन वो खमा होता है धन्यवाद दिन भी
1: बिल्कुल हम तो कृतज्ञ हों चाहे हम ऋण

0: पिछवा अपना अभिभावकों को, चाहे हमारे बुए हुए, बाबा हुए, काका बुआडा हुए, दादा हुए, नन्ना हुए, मैं मामा हुआ, फूफो हुआ, फूफा हुआ, सबों का हम ऋणी छवा। और हमारे समाज का आस पास भी जद का दान दीवाना होनी, हमसे बड़ा होनी, वो सब हम तय संस्कारित कर देना। और माँ जो होंगी वह हम तय लोकाचार की शिक्षा दीन, शिष्टाचार की शिक्षा दीन। दर सबसे पहले तो हम तो हिटोन सिखांद, बोलन सिखांद, खान सिखांद, आंको एक कनकेरा नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य हम तो सिखांद। तो सबसे बड़ी पहली गुरु हमारी माँ मनी जान।
1: बिल्कुल ठीक बोलिए। तो आज एक दा फिर से ये दिवस का मौका पर सभी जो अभिभावक छन, अंग्रेजी में गार्जियन बोल देना पड़ा है
0: जी,
1: सभ्यों तय बहुत बहुत बधाई। और आप भी कह का अभिभावक बन सकते हैं। कन्मा पता कि बहुत सारा लोग जो अनाथ बच्चा छन
0: जी,
1: उनका बुआ बन जन, उनक देख रेख कर देन, उनकी पढ़े लिखे दियो बारात सब वही देख देन, वो भी कई ठोल अभिभावक से कम नहीं छना।
0: बिल्कुल, बहुत सारा सामाजिक संगठन छे न, आध्यात्मिक संगठन छे न, और जो कि यो बच्चों तक गोद ले देन। और बहुत से इन बिचन जो ब्यो ही नहीं करता वो बोल दिन हम उतर ही गोद ले लूला।
1: बहुत सुंदर
0: के समाज में दुर्गति नहीं वेल मन की।
1: तो इन चिन्ह के जो मानवता का खातिर कुछ भी काम करो च बिना अभिभावक का भी, वो भी सच मा बधाई को पात्र च। और सभी को हमारे तरफ बड़ो बड़ो सलूट च। अब कार्यक्रम था आगे बढ़ाना और उषा कोटनाला का स्वर में एक गढ़वाली लोकगीत सुनता, फिर मिलता आपसे।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में
2: लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: उषा कोटना लगा स्वर मापन सुन यो सुंदर से गीत और गीतक बाद अपन रविवार भी सुन।
4: और अब हम आपते जरिस से होर ठंडी तरफ ले जाना छो, जिनके हमन कार्यक्रम शुरुआत में ही बोले छो कि या हमार प्रकृति या हमारी इन बोले जा गाड गदेरा हमारी डांडी कांठी धैला का एक बलाना छन पर्यटकों था कि आवा आवा। अब आजकल छुट्टी पड़ा छन तो सब लोग दौड़ना छन, जितना भी हिल स्टेशन बोल दिन पल जो करना है ना, चाहे मसूरी को जाम लगी हो पर ना जान छाइंच है ना, चाहे आप हर चक्राता का छोड़ जान तो वक भीड़ यानी चौ छोड़। आजकल भीड़ हम था दिखेने चे, लेकिन यह भीड़ तलाश करनी चे शांति सुकून और ठंडक। तो आप तभी हम एक बातचीत का माध्यम से खिरसू ले जाना जो कि एक सुंदर पर्यटक स्थल च और वक पर्यटन की अपार संभावनाएं अभी भी बची छन। ये विषय पर हम वक खिरसू में हमारा एक सामाजिक कार्यकर्ता छन श्री संपत सिंह रावत जी ऊंग दगड़ हमन बातचीत कर आप भी सुना।
5: श्रोता भाई बंधु नमस्कार, मैं छो विनय ध्यानी और आज पहुंचो छो मैं पौड़ी जनपद को पर्यटक क्षेत्र खिरसू, जखमा के पिछला कई सालों बटे की जो पर्यटन की गतिविधि छन वो बहुत तेजी से ऐथर बढ़ना छन और हो भी के लेना। एक इन सुंदर वातावरण जख पर्यावरण बिल्कुल इन उच कि जखमा कभी कखी भी प्रदूषण नहीं छ, और यख का जो लोग छन स्थानीय लोग छन वो पर्यटन गतिविधियों से जुड़ी की बहुत कुछ

0: काम करना छन। इन्हीं पर्यटन का क्षेत्र में एक व्यवसायी ये बता हमारे दगड़ छन। नमस्कार, आप अपनों क्या छे?
1: मेरा नाम साहब संपत सिंह रावत, ग्राम ग्वाड, पोस्ट ऑफिस किरसो, जिला पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला छा।
0: ग्वाड़ का रहने वाला छन संपत जी, और आज से कई साल पहले मैं ग्वाड़ भी पहुंची हूँ और ग्वाड़ की स्थल रिकॉर्डिंग भी हमारे करी छ। वक्त स्कूल का नंबर तो नहीं आ सक, लेकिन गहड़ की स्थल रिकॉर्डिंग हमन करी। लेकिन आज हम किरसो तब बहुत तेजी से विकसित हूँ देखना छो। रावत जी, क्या चीन खास किरसो में जो कि लोग यक पहुंचना छे?
1: साहब किरसो किरसो एक पर्यटन नगरी का नौ से बहुत पहले बटी प्रसिद्ध छा। जबर की एक एक गांव भी लगी छो, किरसो बोर्डिंग लगी छा नीरपनी का डांडा। तो हम बहुत छोटे छोटे छा, तो पहले बटी देश और दुनिया का नक्शा हमारा किरसो पर्यटन की दृष्टि से बहुत आग्नि बढ़नो छा। लेकिन कुछ इन कोई धाम नहीं है किरसो में, जन बद्रीनाथ केदारनाथ, यदि इन कोई धाम होंदो तो किरसो आज विश्व का पटल पर दिखाई जाऊंगा।
0: अच्छा, ठीक बोना छे ना आप कि यू एक मुख्य मार्ग से अलग हटियो पर्यटक केंद्र छे, है ना? तो ये तो सोंग बनाने का खातिर जन के पर्यटन विभाग को भी बोलन छे कि हम एक सर्किट बनोला कि जखमा पौड़ी भी कंडोलिया था शामिल कर ला, वो एक बात किरसो और लेंसडोन तक पहुंचाना छे। वह योजना अगर सफल हो जान तो क्या वो इसे फायदा मिल?
1: साहब जरूर मिलो लो। और ये किरसो जो चाहे कि हमारे उन किरसो में बहुत वन विभाग की बहुत भूमिका, और हमारे देखण से दृष्टिकोण से किरसो में एक जय हिसाब से पर्यटक होंगे ना, तो एक सुंदर सा चिड़ियाघर बनाया जाओ तो ये एक आकर्षक का केंद्र बन सकता।
0: यानी अभी बहुत कुछ करे जान बाकी छे, वो माँ चाहे वो वन विभाग हो या पर्यटन विभाग हो, बहुत कुछ कर सकत। अच्छा जन, हम बात करना चाहो आपसे, आप पर्यटन व्यवसाय से जुड़ गए ना, क्या सोचे कि आप शुरुआत करना छे जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं छिन पर्यटन थे विकसित करने का खातिर, उनको लाभ आप लेना छिन, या कन में सोचिए अपन की चलो मैं अब एक होम स्टे खोलन?
1: साहब बात इन चाहे कि हमारा पहाड़ वहाँ जो चाहे नौकरी चाकरी तो बहुत कम छे ना, तो हम क्यों ना अपने बच्चों दाई अपने व्यवसाय की ओर आकर्षित करूँ और वो खुद का बिजनेस में या इन होम स्टे चलोनो घर चूल्हा खानो देनो, तो पर्यटक तब यहाँ में खुश रहा है।
0: बिल्कुल ठीक बना छन कि अपना घर में रह के हम अपने स्वरोजगार के लिए नहीं करना। अच्छा एक बात और संपत सिंह रावत जी, जब हम पर्यटन की बात करते हैं ना तो वो एक दगड़ बहुत कुछ समस्याएं और चिंताएं भी जुड़ जाने कि साहब लोग जो पर्यटक आते हैं वो तमाम यख सुंदर रमणीक और प्राकृतिक माहौल थे गंदू कर देते हैं, चाहे कूड़ा कचरा हो, चाहे बोतल हुई, चाहे कुछ भी हुआ। ये का सापेक्ष अगर हम बात कर ला ग्रामीण पर्यटन की और इको टूरिज्म हम बना छुआ कि भाई पर्यावरण तो छड़े ना और सुंदर आप प्रकृति को आनंद ले, तो इको और जो ग्रामीण पर्यटन छो वे तो आप कन देखना छे यखमा किरसो का आसपास।
1: ये तो बहुत शांत और जो यख मेरे दृष्टिकोण से देखना मचा है वो तो बहुत शांत माहौल छा, हरिया भरिया जंगल छ न, लेकिन भैर बटी कुछ टूरिस्ट असामाजिक तत्व भी आन न, और वो कह की कोई शराब की बोतल या कोई कूड़ा कचरा शुद्ध फेंके के चल जाते। मेरे उन लोग से निवेदन जाए कि जब भी वो कह की बैठ टूरिज्म मजो न, तो अपना कूड़ा कचरा अपने थैली में डालो न, अपनी गाड़ी में रखो न, और जग मऊ थे कोई डस्टबिन मिलो तो वो डस्टबिन में डालो। ये हमारी

0: भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से कि हमारे खीर सुमजो के एक चिड़ियाघर बने जो जहाँ से कि पर्यटक और थोड़ा सा एक नौ भी हो जाओ और जो है कि पर्यटक आकर्षक भी बोला।
1: तो जब हम इको टूरिज्म की बात करना चाहूँगा कि पारिस्थितिकी पर आधारित पर्यटन, एक बटे की कखी कुछ इन जगह से जख में हम हिमालय का दर्शन कर सका।
0: जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल खिरसु बटी भी पूरा हिमालय का चौखंबा का दर्शन कर सकता और खिरसु से आगनी 3 किलोमीटर पया पानी एक छोटे से जगह है वो मैं 2-4 परिवार ने आप तई वो बटी पूरा चौखंबा नजर आ जलो जबकि भोले शंकर नाथ जी को त्रिशूल भी नजर आ जान।
1: क्या बात, तो सुंदर रमणीक जगह चे देखा खिरसु और पर्यटकों था भी जो सुविधा मिलने चंदन उनकी स्थिति के बारे में क्या बोला आपकी समुचित सुविधा छे ची अख तमाम होटल होम स्टे हम तो दिखेना चाहिए, ये का अलावा भी कुछ और विकसित करे जाने की जरूरत है रावत जी?
0: जी बिल्कुल भाई साहब, हम जानना चाहें कि पर्यटक यदि तो हमारे खिरसु में तो मतलब जो जो कि न्यूनतम से न्यूनतम उदय रेट में उदय सुविधा दिए जो यहाँ से हमारा पर्यटक और बढ़ जाला।
1: जो स्थानीय ग्रामीण जनता च वो एक सोचण क्या है कि लेकिन मठ मठ कह कि सभी लोग इन प्रतिस्पर्धा में हम तो दिखेना चाहें कि एक छोड़ बट लंबी लाइन लगी चाहे होम स्टे की पूरा खिरसु का आसपास और श्रीनगर मार्ग पर, तो ये से प्रतियोगिता बढ़ने चाहिए या लोग झुकना चाहिए कि न भाई ग्रामीण पर्यटन थे बढ़ावा दें।
0: एक पर्यटक देखो अतिथि देवो भव, मतलब जो पर्यटक हमारे ये क्षेत्र में आलो तो हम तो एक मेहमान टाइप को बन जाता है, हम तो वह कभी कस्टमर नहीं समझना चाहिए और जब वो लोग था हमारी बोली भाषा हमारे व्यवहार अच्छा लग लो तो आज 20 पर्यटक आला तो बहुत कम से कम हजारों माला।
1: बहुत सुंदर बात बोले अलग कि जब ग्रामीण पर्यटन के हम बात करना चाहूँ तो सबसे पहले जो हमारा संस्कार छन वो हम पर्यटकों का समण में रखा। अब आखिर में आपसे ही बुना छुआ कि जो जवान दगड़िया ये क्षेत्र में आन चाणा छन, आप अपन अनुभव का आधार पर क्या बोलला कि जो सरकारी योजनाओं को लाभ ले के या अपन पूंजी लगा के लें या चटचटाकों तो फायदा हो ये खातिर ये बहुत सारे लोग पैथर भी चल जाते ना 2 दिन कार और एक बार चल जाते, क्या करना चाहिए उन जवान दगड़ियों?
0: देखो हमारे बोनो उद्देश्य ये रहा कि जब भी कोई भाई बहन हमारे ये होम स्टे में जो कोई जरूरी नहीं चाहिए कि हमारे बहुत ज़्यादा पैसा लोग वह सकत कि हम जो चाहिए थोड़ा हटनुमो भी बना और थोड़ा सरकार भी हमते जो जो कि सुविधा देनी चाहे तो हम सरकार में भी थोड़ा सा 5-7 लाख रुपए तो ये देखो आजकल नॉर्मल लगी जाना अगर 2 कमरा भी बनौते और कोई जरूरी नहीं चाहिए कि तुम 10 कमरे से शुरू करना, 2 कमरे से शुरू करा और मेहनत यहाँ में बहुत ज़्यादा होना और ये वो आदिम कामयाब है जो ये माँ ज़्यादा मेहनत कर सकता।
1: बिल्कुल ठीक बोना चन, बिना मेहनत तो रावत जी कुछ नहीं होंदू और हर क्षेत्र में चाहे वो पर्यटन होम स्टे हुआ कखी भी मेहनत और लगन बहुत जरूरी है और बोले जान कि के बीज थे थोड़ा अंकुरण में भी बगचण तो थोड़ा धैर्य भी रखण। रावत जी बहुत सुंदर आपन ग्रामीण पर्यटन का बाबत और होम स्टे का बाबत और खिरसु का आसपास की महत्वपूर्ण जानकारी हम दे ये का वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रोता भाई बंधु हम बात करना चाहे श्री संपत सिंह रावत का दगड़ी पर्यटन स्थल खिरसु का बाबत कनलाग
2: बहुत सुंदर छी बत छे और ये देहरादून में भी ठंड होने बैठ गया भी ठंड हो रेडियो पुट बह गए और हमारे सुंदरों तक भी पहुंच गए।
1: आप ही देखा ना कि जक जक बांज बुरास्क और देवदार का डाला बूटा छन या कुलें का भी अगर सगत तो पुराना डाला छन तो वक छाव बिच ठंडक बिच पानी का स्रोत भी छन तो वैसे एक पूर्व माहौल और फिर ऊंचाई भी
2: जी।
1: अगर आप देखा समुद्र तल से जन की पौड़ी की बात करें तो पौड़ी और यू खिरसु ज्यादा इन नीच के इना होना चाहिए बिल्कुल बराबर की ऊंचाई पर तो यहाँ खातिर ही वो सुंदर वक ठंडक रहे और पर्यटकों को खूब तांता लग्यू रहे। लेकिन रावत जी जन की बताना चाहे कि अगर शासन प्रशासन की तरफ बटे की वक और पर्यटक सुविधाओं को विस्तार करे जा तो बहुत सुंदर हो सकते, क्योंकि एक तो ना चार धाम यात्रा से अलग चाहिए पर्यटक
2: हाँ, वो
1: लाइन ही अलग हुई गया लेकिन आण तो वही बाटो सच है खैर ते आयी लेकिन ज्यो आप खेर सु पहुंचला त्यू आप सुंदर लागल। हाँ ये बात है कि बाटा घाटा जरेस संगड़ा छ कि पहाड़ी रास्ता छ उखमा हमारा जो पर्यटक छ और खास कर भैर बटी का आने वाला पर्यटक वो जरा तजबीज से गाड़ी चले न तर भारे या कुछ इन्नी हो जा कि ठटा मठा हुआ या आप आनंद लेना खुण आया छ और मुंड पर हाथ धरिक जाना छ।
2: बिल्कुल
1: तो हम एक दा फिर आप सभी की सुखद और मंगल यात्रा की कामना कर द। अब कार्यक्रम में क्या कर ला
2: एथर सुन ला कुमाऊनी जोड़ा लोकगीत जते स्वर देना छन भुवन चंद्र।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: हाँ ये रिंग अच्छी है बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
7: अरे यस सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
6: डिजाइन नया है वो तो ठीक है लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा।
8: बनिए एक जागरूक ग्राहक आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: भुवन चंद्र कस्वर्मा अपन सुनियो कुमाऊनी जोड़ा गीत और अगने पिछने सुने ना अपन रंदर रह बार जो कि हम कुण भी और आप कुण भी बहुत जरूरी होंगे।
3: और एक रह बार हमार छोड़ टिक भी चाह आप कुण कि अगर आप कार्यक्रम सुनना चिन तो भरे आप अपना बात विचार हम तक लेखिक जरूर भेजा। आप चिट्ठी पत्रियों के सार लगिया रहनु हम सदे ने तो शांति जी, जी बताओ जरा पता
2: तो सुन दो हमारो ईमेल को पता च चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com
3: बोले रेन के साहब सचेक मतन वो एक दूध पियो चरे है ना तो दूध की जो जीवन में एक बहुत बड़ी महत्ता है और आज ई महत्ता देखी कि विश्व दुग्ध दिवस मनाए जानो छे
2: और एक पंगत अपन बोल दे कि प्याचे पर वो एक दूध तो एजा है ना तो ये चुनौती मां कत का भाव छिपिया छे।
3: बिल्कुल साहब, यानी कुल मिलाकर दूध ता का दिन भाई
2: बिल्कुल सारा शरीर को पोषण कर दे
3: जी।
2: और इतका जोशीलो हो जाना आदमी ये शब्द सुन के कि बस सारा ताकत लगा दिन।
3: तो आप सभी थे जो भी गोर बछोर पलना छे जो का लेंदा छे घर बनाना छे दही बनाना छे उन तो लोग पशुपालन छोड़ा फिर भी हम बना छो तो दुनिया में ई बात पर अब जोर दिए जानू चाहिए भाई कि दुग्ध विकास बहुत जरूरी है। कई संगठन, कई संघ और कई मंत्रालय चलना चाहिए।
2: बिल्कुल, दूध में किले की इन पोषक तत्व छे ना जो कि अपने आप में संपूर्ण भोजन माने जान दूध
3: जी।
2: और जब माने जन्मे विलीन दू तो वे शुरुआती दूध से हूं।
3: बिल्कुल, तो दूध की महत्ता पर आज पूरी दुनिया चर्चा करने चाहिए किले की आज विश्व दुग्ध दिवस छे। तो ये दिवस की भी आप सभी तक शुभकामना और अब कार्यक्रम में आप थले जाना जोनसार का छोड़ सुनदा राहुल वर्मा का स्वर मा ये जोनसारे गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: आपन सुनो राहुल वर्मा का सुरमा यो जौन सारे लोकगीत और गीत से पहल छे रंत रेबार
1: रेबारो कड़े तो ठीक ठाक ही छे है ना
0: जी।
1: लेकिन हम भी बोना छुआ भाई कि आकाशवाणी एक इन मंच छे जखमा की लोक प्रसारण से लेके व्यावसायिक प्रसारण तक करे जनन। तो अगर आप भी कखी कोई अपन विज्ञापन उत्पादन को प्रचार प्रसार करण चंदन तो जो एक निर्धारित शुल्क जो हुए था देखिए आप भी अपना रेबार ये कार्यक्रम का माध्यम से पटा सकते हैं यानी व्यवसायिकता के हिसाब से हम कौन भी बोले जानू चुके साहब खूब कह रहा है ना कि लगे अगर आप कुछ कम मिला तभी तो खेला तो हम आप अपने ये बना चुके कि अगर आप कोई संस्थान आप कोई उत्पादन आप अपन कई भी संगठन को प्रचार प्रसार करना चाहते तो वे का बाबत आप हमारा जो यक मार्केटिंग डिविजन जो जो हम बोल रहे है ना तो वह कहा कि आप जो हमारे प्रसारण विज्ञापन प्रसारण सेवा छे वे का लोगों से मिल सकते हैं और पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल और आप जो रविवार छन गढ़वल में तब हम भी बोल सकता यक बटे पटोला ना तब
1: जे भी भाषा में आप जाना छन गढ़वल ये कुमाऊनी जौन सारी हिंदी के मा भी आप अपन जो उत्पादन छ उत्पाद छ वे को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अब ये बता दे कि आपन का किन जानो यखिरेण हमरदगढ़ कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे लेकिन ये बस सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान के जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है, और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है।

0: लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। किसानों को आधुनिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। एक महीने में 27,911 इनर लाइन परमिट जारी। और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले की नीति घाटी में गत 31 मई से 2 जून तक आयोजित हो रहे नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के अंतर्गत विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को आज सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत यह आयोजन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह अल्ट्रा रन युवाओं के अदम्य साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। इस दौरान श्री धामी ने क्षेत्र में पर्यटन विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस आयोजन में देश के 27 राज्यों से आए 1,200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्यों में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है, जिससे योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को उनका अधिकार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं में जोड़ने का कार्य किया गया है।
2: हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, बल्कि प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से आज चयन होता है। इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है। और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है।
1: किसानों को आधुनिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज से प्रदेश में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जिले में सहसपुर के ढाकी गांव से एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और आत्मा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट किसानों को 25,000 की धनराशि के चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाकर किसानों को संतुलित खाद उपयोग और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे।
3: आज 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हमने आज यहां से की है। और हमने लोगों से अपील की है कि लोग ने रासायनिक खाद का प्रयोग करके अपने जमीन की उर्वरक शक्ति को कम कर लिया है और कई कैंसर जैसे रोग उससे हो रहे हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती को करना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमारी सरकार पूरी मदद कर रही है। बीज हम दे रहे हैं, खाद हम दे रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है ये शुरुआत आज यहाँ से आगाज हमने आज यहाँ से किया है ये पूरे 30 तारीख तक चलेगा और किसान इसका लाभ देगा।
1: कृषि मंत्री ने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक के उपयोग, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी संरक्षण के प्रति जागरूक होने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 मई से शुरू हुई यात्रा के मात्र 1 महीने में जारी इनलाइन परमिट्स की संख्या 27,911 पहुंच गई है, जो यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था और आकर्षण को दर्शाता है। यह यात्रा क्षेत्रीय पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को नई गति प्रदान कर रही है, जिससे सीमांत क्षेत्र के विकास को भी बल मिल रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से आवश्यक दस्तावेजों को अपने पास रखने, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी यात्रा संपन्न करने की अपील की है। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस अवसर पर पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों ने पर्यटकों से कहा है कि वे फूलों को तोड़ने, कूड़ा फैलाने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचें। फूलों की घाटी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में स्थित है, ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट, स्थानीय मौसम की स्थिति और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहे। वहीं वन विभाग के अनुसार वर्तमान में फूलों की घाटी में 300 से अधिक प्रजातियों के पुष्प और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से बागेश्वर में 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 25 युवाओं और महिलाओं को बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन की तकनीक सिखाई जा रही है। मास्टर ट्रेनर ममता मेहरा ने बताया कि मशरूम उत्पादन कम जगह, कम लागत और सीमित संसाधनों में शुरू किया जा सकता है।
5: जैसे कि मशरूम तो हमारे 1400 प्रकार के हैं, 1400 प्रकार में हमने बेसिक बेसिक जो मशरूम इनको प्रैक्टिकल अभी 2 प्रकार का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, बाकी का थ्योरी के माध्यम से करवा रहे हैं। और ये एक छोटे से बंद कमरे में अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। जैसे अन्य जो हम खेती करते हैं उनके मुकाबले हमारा जो मशरूम है ये कम जगह में और अधिक मुनाफा और कम लागत में आसानी से कर सकते हैं जिसको हम।
1: प्रशिक्षणार्थी नंदन सिंह ने बताया कि मशरूम उत्पादन जैसे स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए विकल्प तैयार कर सकते हैं।
6: इसको हम आगे आगे जाके जो है इसमें काम कर सकते हैं, जिसे अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। तो गांव में और भी कई लोग जो भी रोजगार हैं, तो इसे जो है एक दूसरे को प्रेरणा मिल सकती है। तो इसको हम धीरे धीरे मार्केट में ला सकते हैं और इसके फायदे बहुत हैं। काफी चीजों से ये जो है भरपूर प्रोटीन है इसमें, मतलब दवाइयों के काम में आ सकता है ये, और छोटे बच्चों के प्रोटीन जिनमें जो कैल्शियम की कमी है उसका पूरा इसका फायदा है। तो इसको हम एक अपना रोजगार की तरफ देख सक रहे हैं। तो मतलब अभी तो ये हमारा परीक्षण है, मतलब तो आगे चल के देखते हैं हम इसमें पूरा अपना 100% मतलब काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो साथ में जो अपने युवा साथी हैं गाँव में, तो हर किसी को हम इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे।

0: माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। किसानों को आधुनिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। एक महीने में 27,911 इनर लाइन परमिट जारी। और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों का बाद एक दा फिर स्वागत च आप सभ्य सुनदरों को कार्यक्रम ग्राम जगत में। जैत आप सुनना छन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बिटी और मैं छो आपे दगड़िया शांति बिंजुला। सुनदरों, हर साल 1 जून कुणी विश्व दुग्ध दिवस मनाए जान, जेक उद्देश्य दूध और दूध से बण्या उत्पादों को पोषण का महत्व का बारे में जागरूकता फैलाणु, डेयरी उद्योगों को योगदानों थे और किसानों को सम्मान करूं छ। हमारे जीवन की शुरुआत दूध से ही होन। जब हम जन्म लेना तो सबसे पहले हम दूध ही पीना। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और कदगई जरूरी खनिज तत्व होने जो शरीर की वृद्धि, हड्डी की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास में बहुत भूमिका निभाने। भारत दुनिया को सबसे बड़ो दुग्ध उत्पादक देश माने जान। यख लाखों किसान और पशुपालक डेयरी व्यवसाय से अपनी आर्थिकी तय मजबूत कर दिन। ये दिवस हम तय संदेश दे दू कि दूध सिर्फ पेय पदार्थ नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और ग्रामीण विकास को सशक्त माध्यम छ। ये वास्ता पशुओं, पशुपालकों और किसानों को सम्मान भी हो चेंदू और दूध है अपनो नियमित आहार में शामिल करूं चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहवा। पर वे दूध तलीन से पहले दूध ते दिखन जरूरी ची, वे की जांच जरूरी ची कि दूध स्वच्छ छे बिच, क्योंकि आजकल मिलावटी दूध भी आन बाजार में। तो ये वास्ता जो पाल नहीं सकदन, जो बहरक दूध पीने न, उन थे दूध पीने से पहले भी जांच लेन चाहिए कि ये दूध पेवर छे कि ना। और अब कार्यक्रम तय अग्नि सरकंदो और सुन दो योगंबर पोली और दगड़ियों का स्वर मा यू बद्रीनाथ जी को गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटा गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में दीपक सिंह रावत। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों तय नियुक्ति पत्र प्रदान करी। प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को सुविधाओं और सुरक्षा को व्यापक व्यवस्थाएं करेगी। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाना को विशेष अभियान चले जाणुच और चमोली जिला में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों को खुली। अब समाचार एक छोर बटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में नगर और ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग और वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। यह अवसर पर मुख्यमंत्री ने नव चयनित कार्मिकों से अपेक्षा करी कि वो अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से जन सेवा थे सर्वोच्च प्राथमिकता दियाला। उन्होंने बोली कि प्रदेश सरकार ने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करी भर्ती प्रक्रिया थे पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनायुच, जैसे योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं थे उनका अधिकार मिलना छन। मुख्यमंत्री ने बोली कि पिछला 4.5 वर्षों में लगभग 33,000 युवाओं थे पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़े जानू च।
2: हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, बल्कि प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से आज चयन होता है। इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है।
1: प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी च। शासन प्रशासन की ओर बटे श्रद्धालुओं को सुविधाओं और सुरक्षा को व्यापक व्यवस्थाएं करेगी। खराब मौसम से देखते हुए चार धाम क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जानी च। वकी रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन रजवारा ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिया केदारनाथ पैदल मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करे जानी च। दगड़म जिला आपदा नियंत्रण कक्ष बटे पूरी यात्रा मार्ग की निगरानी करे जानी च। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर पुलिस, SDRF, NDRF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को 647 जवान तैनात छन, जो तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा और सहायता से जुड़िया छन।
3: आपदा प्रबंधन का और जो यात्रियों के प्रति जो प्लान है तो वो हमारे जगह जगह पर रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं और जो चेतावनी तंत्र है हमारे जो कि कंट्रोल रूम से लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और यहीं से मौसम का जो फोरकास्ट वगैरह है वो भी यहां से ही हम लोग अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग उनको सचेत कर रहे हैं और कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं। वहां पर सर ITBP है, NDRF है, SDRF है, पुलिस है और होमगार्ड के जवान हैं, PRD के जवान हैं और आपदा मित्र हैं, DDRF है और YMF है और MTF है, म्यूल टास्क फोर्स भी जानवरों के लिए जो काम कर रही है। टोटल 647 लोग जो अभी यात्रा मार्ग पे हैं वो कार्यरत।
1: प्रदेश में आज दुई अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला की मौत हो गया जबकि 42 अन्य घायल हुई। हरिद्वार के सप्तऋषि के पास आज राजस्थान के यात्रियों को बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मौत हो गया जबकि 37 अन्य घायल हुई। 3 गंभीर घायलों थे एम्स ऋषिकेश खून रेफर करे गया। शेष घायलों को उपचार मिला अस्पताल में करे जाणु च। उन्हें टिहरी जिला में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंडी खाल और चंबा के बीच खेदार मोड़ पर आज चार धाम यात्रियों थे लिजान वाली एक बस सड़क किनारा पलटी गया। हादसे में 5 यात्री घायल हुए जबकि अन्य यात्री सुरक्षित छन।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन्न।

0: हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाना खुण विशेष अभियान चले जालू। जिलाधिकारी मयूस दीक्षितन बताए कि जिला में विभिन्न सरकारी विभागों को भूमि पर हुआ अतिक्रमण को सूची तैयार करे जानी च। कब्जाधारियों थे पहली 15 दिन का नोटिस दिए जानो च। यहां का बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करे जाली। उन साफ कह रही कि सरकारी भूमि थे हर हाल में अतिक्रमण मुक्त करे जालू। दगड़म जख बटे कब्जा हटे जालू वक दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को जवाबदेही भी तय करे जाले।
1: मुख्यतः जो पीडब्ल्यूडी एनएच है, सिंचाई विभाग है, ग्राम पंचायत की जो जमीन है या अन्य विभाग जो भी है, शिक्षा विभाग हो या कोई और भी विभाग हो, सभी से लिस्ट हमने मंगाई है कि जहां जहां पर अतिक्रमण चिन्हित है 15 दिन का नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। उसके बाद जैसे कि अन्य जगह भी है, भले वो हमारे रेलवे की लैंड हो या कुंभ मेले में यूपी सिंचाई या उत्तराखंड सिंचाई की जमीन हो, वहां पर भी कुछ निर्माण हमने देखे हैं जो कि लंबे समय से हो गए हैं। कुछ निर्माण परमानेंट नेचर के हैं, कुछ टेम्परेरी नेचर के हैं। सभी को अपने अपने स्तर से अधिकारी देखेंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गति देंगे। अतिक्रमण जहां से भी हटाया जाएगा वहां पे जो एक अधिकारी है, भले वो हमारे राजस्व विभाग का लेखपाल हो या कोई एसडीओ या जेई हो सिंचाई विभाग का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसडीओ हो, सभी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जो भी अधिकारी के क्षेत्र में या कर्मचारी के क्षेत्र में अतिक्रमण है और उसके क्षेत्र में हटा दिया गया है, पुनः अगर अतिक्रमण होता है तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
0: चमोली जिला में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी थे आज बटे पर्यटकों खुण खुले गया। यह अवसर पर पर्यटकों में भारी उत्साह देखना खुण मिली। वकी वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी के जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील करी। अधिकारियों ने पर्यटकों से बोली कि वो फूलों थे तोड़न, कूड़ा फैलान और पर्यावरण थे नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचा। अधिकारियों के अनुसार फूलों की घाटी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र में स्थित, इनमें मौसम विभाग का अलर्ट, स्थानीय मौसम की स्थिति और सुरक्षा मानकों थे रखते हुए पर्यटकों थे आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे जाना छन, जैसे उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रैली। वक्की वन विभाग के अनुसार वर्तमान में फूलों को घाटी में 300 से अधिक प्रजातियों के पुष्प और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद छन। आगामी दिनों में घाटी और अधिक रंग बिरंगा फूलों से आच्छादित होने के दगड़ यहां की प्राकृतिक सुंदरता अपर चरम पर पहुंच जाली। स्वच्छ सर्वेक्षण ते लेकी देहरादून नगर निगम ने तैयारियां तेज करीन। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की टीम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था थे बेहतर बनाने में जुटी च। उन्होंने बोली कि शहर के संवेदनशील कचरा स्थलों पर विशेष ध्यान दिए जाने च। दगड़म कूड़ा उठाने वाला वाहनों के समय समय पर निगरानी भी करे जानी च। उन्होंने बताया कि गीला और सूखा कूड़ा के अलग अलग निस्तारण और सेग्रीगेशन ते लेकी भी लगातार अभियान चले जाने च, जैसे देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर सक।
2: उसको लेके हमारी तैयारी है, हमारी टीमें मुस्तैद हैं और हमारे जहाँ जहाँ पे जीवीपी पॉइंट्स हैं उनको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कूड़े जो उठाने वाली गाड़ियां प्रॉपर समय पे पहुंचे वो उसके लिए कार्य हो रहा है और लगातार जो है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो, इसके लिए भी कार्य लगातार किया जा रहा है।
0: पौड़ी के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 17 शिकायतें दर्ज करेगी। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों को मौका पर निस्तारण करते हुए शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिन। यह दौरान उन सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से जनता मिलन, सीएम हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता, प्राथमिकता और संतोषजनक ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने को निर्देश दे। आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र प्रदान करीन। प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को सुविधाओं और सुरक्षा खुण व्यापक व्यवस्थाएं करे गिन। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाना खुण विशेष अभियान चले जालू और चमोली जिला में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों खुण खुली। यहां का दगड़म गडलिमा प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त होंदू। नमस्कार।
3: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बजने को है प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, उम्मीद है खेती बाड़ी के काम अच्छी तरह से चल रहे होंगे। साथियों, खेती बाड़ी के अलावा किसानों की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है दुग्ध उत्पादन। आप चाहें तो दो चार गाय भैंस रखकर इसे अपने घर की जरूरत तक सीमित रखें, या फिर ज्यादा जानवर पालकर इसे व्यवसाय का रूप दें, यह हर हाल में फायदेमंद है। नवजात शिशु से लेकर प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्य के लिए दूध कितना आवश्यक है यह आप सभी जानते हैं। दूध और दूध से बनने वाले सभी प्रोडक्ट जैसे कि दही, मट्ठा, मक्खन, घी, पनीर का भी हमारे भोजन की थाली में विशेष स्थान है। बस इसी महत्व को सबको समझाने के लिए आज का दिन यानी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह दिन सिर्फ दूध के फायदे बताने का नहीं है, बल्कि इसके जरिए आम लोगों को यह भी बताया जाता है कि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ यह आपकी आमदनी को भी बढ़ा सकता है। हर साल वर्ल्ड मिल्क डे पर एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान देना है। दुनिया के कई देशों में महिलाएं पशुपालन, दूध उत्पादन, डेयरी प्रबंधन और परिवार के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह थीम कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को पहचान देने का संदेश देती है। साथियों, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन डी और विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा शरीर के विकास, मांसपेशियों की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए आप भी इसे अपने दैनिक आहार का हिस्सा जरूर बनाएं। दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में काम करने वाली सभी महिलाओं और किसानों को इस दिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो साथियों, वर्ल्ड मिल्क डे के बाद अब समय है मनोरंजन का, तो आइए आपको सुनाते हैं एक गीत।

0: किसान साथियों, जैसा कि आज से जून का महीना प्रारंभ हो गया है तो आप लोग असमंजस में होंगे कि इस माह हम खेती में क्या क्या कार्य करें। तो इस बारे में आपको जानकारी देने आए हैं हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर योगेंद्र पाल। और जून के माह में किसान साथी क्या करें, इस विषय पर उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चमोली। तो आइए सुने ये बातचीत।
1: नमस्कार किसान साथियों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र पाल। और डॉक्टर साहब से आज हम बात करने वाले हैं कि जून माह में हमारे किसानों को कौन कौन से मुख्य कृषि कार्य हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तमाम काम हमारे पास खेती किसानी के हैं, खरीफ की फसलों की हमने तैयारी करनी है। तो एक एक करके डॉक्टर साहब सभी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी डॉक्टर साहब। जैसे कि एक जून आज हो गई है और अब जो ये जून का माह है हमारे किसानों के लिए खेती बाड़ी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्योंकि अभी हमारी खेतें खाली हैं, थोड़ा बताएं कि आने वाली फसलों की तैयारी के लिए प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। जैसे खासतौर पर हम मृदा परीक्षण की ही बात करें।
2: किसान भाइयों बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि माह जून जो है किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जून माह में जो खरीफ की फसलों की बुआई की शुरुआत हो जाती है। और इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं और आप जो है आगामी फसलें खरीफ में जो है बोना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा समय है आपको जो खेत की मिट्टी की जांच कराना। चूंकि भारत सरकार जो है आजकल संतुलित पोषक तत्व के आधार पर भी जो है जागरूकता अभियान जो है पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, तो जिसमें यह है कि आपकी मृदा परीक्षण के उपरांत जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होगा और उसमें जो संस्तुत उर्वरक होगी उसी के आधार पे ही आपको जो है आगामी खरीफ अभियान में जो है आपको उर्वरक की उपलब्धता मिलेगी। तो ये वैसे भी बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि जो आप अपनी मिट्टी की जांच कराएंगे उसी के बेस पे ही आपको जो है उर्वरकों की उपलब्धता सरकार द्वारा कराई जाएगी। तो इसलिए जो है आप जो है ये अच्छा समय है, आप मृदा परीक्षण कराइए अपने खेत की मिट्टी की जांच कराने के लिए। निकटवर्ती अपने जनपद के जो है प्रयोगशाला में आप जो है मृदा नमूना दे करके उसकी जांच करा करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी निश्चित तौर पे जिन पोषक तत्वों की मृदा में कमी है इसका हमें पता चलता है और उस हिसाब से हम जो भी पोषक तत्व हैं, खाद उर्वरक है, उसको मृदा में डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम हरी खाद की बात करें, क्योंकि आने वाले खरीफ फसलों के लिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हरी खाद में किन किन फसलों को हम ले सकते हैं और कब हमने इसकी बिजाई करनी है?
2: किसान भाइयों, चूंकि खरीफ में जो है हमें बुआई में भी करने के लिए आपको जो है हरी खाद के रूप में जो है आप जो है ढेंचा, सनई और दलहनी फसलों में मूंग, उड़द, इनकी बुआई करके आप जो है हरी खाद बना सकते।

0: है।
1: जी
0: ये खाद आपकी ऐसी खाद है जो आपकी जमीन की जो है संरचना को भी अच्छा बनाती है और उसका जीवांश पदार्थ को बढ़ाता है, और उसके साथ साथ जो हमारे पोषक तत्व है, नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी हैं उनको भी जमीन के अंदर जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, और जिससे जो है हमारी आगामी फसलें जो हम उसमें बोएंगे उनको जो है बाहर से जो हम उर्वरक डालते हैं उसकी अच्छी खासी बचत हो जाती है, 30 से 35% तक बचत हो जाती है, और जो है हमारी जो जेब का खर्च है वो भी कम हो जाता है।
1: जी, डॉक्टर साहब, आने वाला समय जैसे कि धान का है, खरीफ में मुख्य फसल जो हमारी धान है, हमारे किसान साथी लगाते हैं। अब क्योंकि नर्सरी हमने डालनी है, तो थोड़ा बताएं कि नर्सरी डालते समय किन बातों का हमने ध्यान रखना है और कौन सी प्रजाति अच्छी रहने वाली है हमारे किसानों के लिए।
0: किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि जून माह में जो है धान की नर्सरी डालने का जो उपयुक्त समय होता है, और इस समय जो है आप जो है तीन तरह से आप जो है उसको आप बुआई कर सकते हैं, एक तो नर्सरी डाल करके
1: जी
0: या सीधी बुआई करके, और या जो है जो उपराऊ वाला एरिया है जो पर्वतीय क्षेत्रों में उसमें जो है सीधी बुआई करके जेठी धान की भी आप जो है धान की फसल ले सकते हैं। तो इसमें जो है हमको करना क्या है कि जो हमारे पास शीघ्र पकने वाली प्रजातियां होती हैं जो 95 से लेकर के 125 दिन में तैयार हो जाती है, उसको जो है हम नर्सरी भी डाल सकते हैं, और अगर आप सीधी बुआई कर सकते हैं सीधी बुआई करके भी हो सकते हैं। इसमें से बहुत प्रमुख जातियां हैं जिसमें गोविंद है, पंचशंकर धान एक है, पंचशंकर धान दो है, नरेंद्र 118 है। इनमें से किसी भी प्रजातियों का चयन करके आप जो है इसकी नर्सरी की भी बुआई कर सकते हैं और सीधी आप जो है सीधी बुआई भी कर सकते हैं, जिससे आपको जो है 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो जाती है। तो अगर हम संकर धान एक या दो की बात करें तो इसकी उपज लगभग 65 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर तक मिल जाती है। इसके अलावा जो मध्यम शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं जिसमें पनधान 10 है, पनधान 12 है, पनधान 23 है, पंचशंकर धान 3 है, ये भी 120 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और लगभग इसकी भी उपज 45 से 60 क्विंटल तक होती है। इसकी भी हम जो है बुआई और नर्सरी की दोनों तरह से हम ले सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा कुछ प्रजातियां जो मध्यम अवधि की पकने वाली हैं जिसको हम जो है जून के जो है द्वितीय पखवाड़े में आप बुआई कर सकते हैं, जिसमें पनधान 18 है, पनधान 19 है, पनधान 24 है, पनधान 26 है, PR 113 है, पनधान 28 है। तो इनमें से भी किसी प्रजाति जो आपको अपने क्षेत्र के लिए मिल सकती है संतुलित मात्रा में लेकर के इसको जो है आप नर्सरी डाल सकते हैं।
1: जी
0: ये भी लगभग 130 से 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, और जिसकी उपज जो है 55 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से मिल सकती है।
1: तो
0: तो
1: डॉक्टर
0: इस
1: साहब, ये नर्सरी हमने कब तक डाल देनी है?
0: ये जो है जो हमारी शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं उनकी आप जो है जून के प्रथम सप्ताह में, और जो हमारी मध्यम और देर से पकने वाली प्रजातियां हैं उनको द्वितीय और तृतीय जून के हफ्ते में आप डाल करके उसकी रोपाई फिर कर सकते हैं।
1: जुलाई में हम उसकी रोपाई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे हम मैदानी क्षेत्रों में देख रहे हैं, तो गन्ना भी हमारी खेतों में खड़ा है, और कई सारी अब समस्याओं की बात करें तो धीरे धीरे वो भी गन्ने में आएंगी। थोड़ा बताएं कि गन्ने में कौन कौन से मुख्य कृषि कार्य इन दिनों करने हैं, और अगर कोई कीट का प्रकोप गन्ने में दिखे तो उसको हमने कैसे उपचारित करना है?
0: किसान भाइयों, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है विकास जी ने। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जो लगभग 50% से ज्यादा जमीन के अंदर जो है नकदी फसल जो गन्ना है हमारी वो बुआई होती है, और वो उसमें से जो है हमारी जो बसंतकालीन और शरदकालीन वाली जो फसलें हैं नौलख, उसमें जो है जून के माह में विशेषकर जो है एक कीट लगता है जिसको हम टॉप बोरर या चोटी बेधक के रूप में हम जानते हैं, ये इसी समय इसका प्रकोप होता है, और ये इसका जो है जो लक्षण है वो आपको इस समय नहीं दिखाई देते,
1: जी
0: परंतु जब गन्ने की बढ़वार होती है जुलाई अगस्त में तब उसका जो है आपको प्रकोप दिखाई देता है। उस समय आप कोई भी कीटनाशक इसमें कारगर नहीं होता, तो इसीलिए जून का माह सबसे अच्छा माह है जिसमें आप जो है चोटी बेधक की रोकथाम के लिए विशेषकर जो जो अगेती प्रजातियां हैं उसके लिए आपके पास जो है फटेरा या जो है किसान भाइयों, तो बोरर की रोकथाम के लिए जो हम मैंने बताया अभी फटेरा, इसकी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या फिर कोराजन, कोराजन भी एक लिक्विड मात्र में जो है दवाई होती है, जो 18.5 जो है SC इमल्सन में होती है, इसकी 375 ml पर हेक्टेयर की दर से जो है आप इसको मैं जो जड़ों में जो है इसको आप जो ट्रेंचिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों दवाई जो है बहुत कारगर दवाई है जो हमारे चोटी बेधक के लिए नियंत्रण के लिए है। इसके अलावा इस समय आप जो है जो नत्रजन की लास्ट डोज बची है आपके पास, उसको डाल करके सिंचाई कर दें, और सिंचाई करने के बाद जो है जब उठा जाता है तो आप जो है मिट्टी पलटने चढ़ाने वाले हल से आप इसकी जड़ों पे मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो चूंकि अगले महीने में जो जुलाई में अगस्त में बरसात होती है तो उसमें जो है गिरने से हम बचाव कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे दलहन है तो दलहन का उत्पादन भी हमारे किसान खूब करते हैं, चाहे उत्तराखंड के हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की, राजमा, उड़द, मूंग, इन तरह तरह की फसलों को हम लगाते हैं। थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब कि इसमें पहाड़ में कौन सी प्रजातियां हमारे किसानों को इस समय लगानी है और मैदानी क्षेत्रों में।
0: किसान भाइयों, दलहनी फसलें चूंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं। इस समय जो मैदानी क्षेत्र में जो हमारी उड़द और मूंग की जो फसल है वो अभी लगभग तैयार है,
1: जी
0: अब उस पर कटाई आप कर सकते हैं। परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में जो है जून के लास्ट में आप जो है इसकी उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं, जिसके लिए जो है आपके पास बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जिनको लेकर के आप जो है बुआई कर सकते हैं, जिसमें से आप जो है उड़द की अगर हम बात करें तो पंत यू 19 है, पंत यू 35 है, पंत यू 10 है, जो 75 से 80 दिन की अवधि में तैयार हो जाती है
1: जी
0: और 12 से लेकर के 15 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से आपकी उपज मिल जाती है। इसी प्रकार से मूंग है, तो इसमें पंत मूंग 2, पंत मूंग 4, पंत मूंग 5, पंत मूंग 8, ये प्रमुख प्रजातियां हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुमोदित हैं, जो 65 से 70 दिन में जो है तैयार हो जाती हैं और 8 से 10 क्विंटल तक उपज आपकी बड़े आसानी से प्रति हेक्टेयर की दर से मिल जाती है। तो इनकी भी आप जो है जून के द्वितीय पखवाड़े में आप बुआई कर सकते हैं।
1: जी
0: इसी प्रकार से राजमा है, पर्वतीय क्षेत्रों में राजमा की भी खेती होती है, तो राजमा के लिए जो है VL राजमा 63 एक प्रजाति है जो 120 से 140 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, तो इसकी भी बुआई आपके जून के द्वितीय पखवाड़े में कर सकते हैं, जिसकी उपज जो है 12 से लेकर के 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आसानी से मिल जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम तिलहन की बात करें तो तिलहन का उत्पादन भी हमारे उत्तराखंड में खूब लिया जाता है और किसानों की आय का एक मुख्य साधन भी है। थोड़ा तिलहन को लेकर बताएं कि तिलहन में कौन से कार्य इन दिनों अब हमने करने हैं जून जून माह में।
0: किसान भाइयों, तिलहन में विशेषकर जब मूंगफली है, मूंगफली मैदानी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्र दोनों में लगाई जाती है, तो मैदानी क्षेत्र में जो है हमारे जो है जून के द्वितीय सप्ताह में आप जो है मूंगफली की बुआई शुरू हो जाती है,
1: जी
0: जिसके लिए आप जो है टाइप 64, चंद्रा, कौशल, प्रकाश, अंबर आदि प्रजातियों में से कोई एक प्रजाति लेकर के आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं,
1: जी
0: जिसमें जो है 60 से 70 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर की दर से, और बल्कि जो कौशल प्रजातियां हैं चूंकि ये मोटे दाने की होती है तो इसमें इसका बीज थोड़ा उस अन्य प्रजातियों से ज्यादा लगता है, जो लगभग 90 से 95 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। इस प्रकार से इसकी बुआई कर सकते हैं आप जो है, और बुआई कर करके आप जो है अच्छी फसल ले सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जो है हम जो है मैदानी क्षेत्रों में अरहर, चूंकि दलहनी फसलों में अरहर बहुत मुख्य फसल है, और उसकी भी बुआई जून के जो है द्वितीय सप्ताह में करते हैं, जिसमें से UPS 120 बहुत अच्छी प्रजाति है, पंत अरहर 291 बहुत अच्छी प्रजाति है, इनमें से किसी भी प्रजाति का चयन करके आप बुआई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मोटे अनाज का भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड आजकल देखी जा रही है और पर्वतीय क्षेत्रों में तो इस समय मोटा अनाज लगाया भी जाएगा, चाहे दलहन में देखें या फिर हम अनाज वाली फसलों में, चाहे मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, इनकी बात करें। थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब कि इन मोटे अनाजों की अगर आप खेती कर रहे हैं तो कौन सी प्रजाति अच्छी रहने वाली है और कब तक हमने इनकी बिजाई कर देनी है।
0: किसान भाइयों, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो हम जो है

0: मंडुवा है जिसको हम रागी कहते हैं, कोकून है जिसको कोनियर कंगनी कहते हैं, और इसमें से जो है कुट्टू होता है जिसको उगल बोलते हैं, तो ये रामदाना है, ये कई सारी जो हमारी मोटे अनाज की जो है फसलें हैं
1: जी
0: जिनकी जो है बुआई जो मई लास्ट से शुरू हो जाती है, पर किसान भाई जो है ज्यादातर इसको जब खेत में नमी होती है तो उस समय जो है जून के प्रथम सप्ताह से लेकर द्वितीय तृतीय सप्ताह तक बुआई करते रहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इसमें मंडुआ है, अगर किसी किसान भाई को मंडुआ बोना है तो इसके लिए बहुत अच्छी प्रजातियां हैं हमारे पास, जिसमें जो है अगेती जो प्रजाति है पंत मंडुआ 3 है, VL 204 है, VL 146 है, VL 347 है, VL 352 है, ये इनमें से कोई सी एक प्रजाति लेकर के आप जो इसकी बुआई कर सकते हैं जो कि 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से मध्यम अवधि की जो प्रजातियां हैं जो 105 से 115 दिन तक तैयार होती हैं, वो उसमें PS 176 है, PS 110 है, VL 149 है, VL मंडुआ 315 है, VL मंडुआ 324 है, इनमें से किसी प्रजाति को लेकर के आप जो है बुआई कर सकते हैं। और इसमें एक प्रजाति होती है PRM1, ये दाने के साथ साथ चारे के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है पशु के चारे के लिए भी की भी बहुत समस्या रहती है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक प्रजाति निकाली जो PRM1 के नाम से जानी जाती है, तो इसकी भी बुआई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है कोकुन है जो जिसको कोनिया कंगनी कहते हैं, इसकी भी बुआई कर सकते हैं जो 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। और रामदाना की प्रजातियां भी बहुत अच्छी हैं हमारे पास, जो PRA 1 है, PRA 2 है, PRA 3 है, BL 44 है, अन्नपूर्णा है, जो 130 से 135 दिन में पककर तैयार होती है और लगभग 15 से 20 कुंटल उपज आपको प्रति हेक्टर मिल जाती है।
1: जी
0: ऐसे ही कुट्टू है जिसको हम उगल के नाम से जानते हैं, इसकी भी VL 7 प्रजाति बहुत अच्छी है, PRB1 जो है इसकी भी बहुत अच्छी प्रजाति है, हिमप्रिया है, हिमगिरी है, जो ये चार पांच प्रजातियां हैं, इनमें से किसी जिसका बीज आपको उपलब्ध हो जाए उसकी आप बुआई कर सकते हैं।
1: जी
0: और पूर्व में जो बोई गई हमारी फसलें हैं जो अब मई मंथ में आपने बोई थी, तो उसमें जून के माह में जो है उसमें विलीकरण करके निराई गुड़ाई करके आप जो है उसकी जो है संख्या मेंटेन कर लें, जिससे आपकी जो पॉपुलेशन प्लांट पॉपुलेशन ठीक रह जाए और आपकी पैदावार अच्छी मिल, कोई नुकसान भी ना हो और जो है पौधा जो है अच्छी बढ़वार कर सके।
1: जी तो डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई कि कौन कौन से मुख्य कृषि कार्य हमारे किसानों को जून माह में करने हैं। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: किसान साथियों, जून माह में कृषि में क्या क्या कार्य होने चाहिए, इस पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर योगेंद्र पाल को। तो इस महत्वपूर्ण बातचीत के बाद अब समय है मनोरंजन का, लेकिन उससे पहले आइए सुने ये संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: प्यास लगी हो तो बस पानी चाहिए, कैसा भी हो, पैक्ड, अनसेफ, कुछ नहीं देखते, बस पानी चाहिए। बट
3: इट्स डेंजरस, मे बी इट कॉजेज हेल्थ इश्यूज, सो अब जब भी पानी पियो तो पहले चेक करें कि उस पे ISI मार्क है या नहीं। ऑलवेज ड्रिंक ISI मार्क्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। बी अवेयर एंड बी सेफ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, अब चर्चा करते हैं पशु पोषण प्रबंधन पर। पशु पोषण प्रबंधन का अर्थ पशुओं को उनकी शारीरिक आवश्यकता, स्वास्थ्य और उत्पादन के अनुसार संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। सही पोषण से न केवल पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ती है। पशु के आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण का सही अनुपात होना चाहिए। पशुओं को हमेशा अच्छा हरा चारा और सूखा चारा मिलाकर खिलाना चाहिए। दुधारू पशुओं को प्रतिदिन लगभग 30 किलोग्राम हरा चारा और 10 किलोग्राम सूखा चारा देना चाहिए। पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए दाने के साथ रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण जरूर मिलाएं। पशुओं को पीने के लिए हमेशा ताजा पानी रखें। उन्हें चाटने के लिए नमक का ढेला या आहार में थोड़ा थोड़ा नमक अवश्य दें। प्रसव के 21 दिन पहले और बाद में पशुओं को अतिरिक्त पोषण जैसे कोबाल्ट और उच्च ऊर्जा वाला आहार देना चाहिए। इसके अलावा पशुधन के पोषण में पानी का भी विशेष महत्व है। पानी पशु के शरीर का एक मुख्य घटक तत्व है, इसलिए पशुधन के व्यवसाय के लिए अच्छे पानी की आपूर्ति भी बहुत जरूरी है। साथियों, पशु पोषण प्रबंधन पर इस जानकारी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रतिभा नैथानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उपदगड़ मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादूनम विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी। प्रदेशम चार धाम यात्रा सुचारू रूपल जारी। शासन प्रशासन अकोर बटी श्रद्धालुओं सुविधाओं और सुरक्षाओं लीजी व्यापक व्यवस्थाएं करी जारी। हरिद्वारम सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाणक लीजी विशेष अभियान चलाए जाल। और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों घाटी पर्यटकों के लीजी खुल गए। अब समाचार विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज देहरादूनम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी। यह मौके पर मुख्यमंत्री नव चयनित कार्मिकों हते अपेक्षा करी कि वो अपन कार्यकुशलता, ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के माध्यम जनसेवा के सर्वोच्च प्राथमिकता दियाल। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यम देशक सबु हबे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करबेर भर्ती प्रक्रिया के पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बने है, जेल योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं के उनर अधिकार मिले रहो। मुख्यमंत्री कहो कि पिछड़ 4.5 सालों में लगभग 33,000 जवान नंतिनों के पूर्व पारदर्शिता और मेरिटक आधार पर सरकार सेवाओं हेबे जोड़ना काम करी जे रहो।
2: हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, बल्कि प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से आज चयन होता है। इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है। और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है।
1: प्रदेशम चारधाम यात्रा सुचारू रूपल जारी छू। शासन प्रशासन कोर बटी श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए भल इंतजाम करी जारी। खराब मौसम के देखते हुए धाम क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही। वहीं रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन रजवारल बता कि CCTV कैमरों के जरिए केदारनाथ पैदल मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करी जा रही। यह एक दगड़ जिला आपदा नियंत्रण कक्ष बटी पूरी यात्रा मार्ग की निगरानी ले करी जा रहे। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर पुलिस, SDRF, NDRF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों 647 जवान तैनात छन, जो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सहायता में ले रही।
3: आपदा प्रबंधन का और जो यात्रियों के प्रति जो प्लान है, तो वो हमारे जगह जगह पर रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं और जो चेतावनी तंत्र है हमारे, जो कि कंट्रोल रूम से लगातार उनकी माउंटिंग भी की जा रही है और यहीं से मौसम का जो फोरकास्ट वगैरह है वो भी यहां से ही हम लोग अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग उनको सचेत कर रहे हैं और कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं। वहां पर सर ITBP है, NDRF है, SDRF है, पुलिस है और होमगार्ड के जवान हैं, PRD के जवान हैं और आपदा मित्र हैं, DDRF है और YMF है और MTF है, म्यूल टास्क फोर्स भी जानवरों के लिए जो काम कर रही है। टोटल 647 लोग जो अभी यात्रा मार्ग पे हैं वो कार्यरत।
1: प्रदेश में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों में 1 सैनिक मौत है गई जबकि 42 जनी घायल है गए। हरिद्वारक सप्तऋषि के पास आज राजस्थानक यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त है जानल 1 सैनिक मौत है गई जबकि 37 अन्य घायल है गई। 3 गंभीर घायलों के एम्स ऋषिकेश लीजी रेफर करी जा रहा, बाघ घायलों के इलाज म्योल अस्पताल में करी जा रहा। उथा टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंडी खाल और चंबा बीचम खेतधार मोड़ पर आज चार धाम यात्रियों के लिए जा रही एक बस सड़क किनारे पलट गई। यो हादसे में 5 यात्री घायल है गए जबकि बाघ बची यात्री सुरक्षित छन। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाई जाल। जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल बता कि जिलम विभिन्न सरकारी विभागों की जमीन पर है अतिक्रमणों की सूची तैयार करी जा रहे। कब्जे करने वालों के पली 15 दिनक नोटिस दी जाए, एक बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करी जाए। उन्होंने स्पष्ट करो कि सरकार जमीन के हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराए जाल। एक दगड़ जहां बटी कब्जे हटाए जाल, वहीं दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जवाबदेही ले तैयार करी जाए।
4: मुख्यतः जो पीडब्ल्यूडी है, एनएच है, सिंचाई विभाग है, ग्राम पंचायत की जो जमीन है, या अन्य विभाग जो भी है, शिक्षा विभाग हो या कोई और भी विभाग हो, सभी से लिस्ट हमने मंगाई है कि जहां जहां पर अतिक्रमण चिन्हित है 15 दिन का नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। उसके बाद जैसे कि अन्य जगह भी है, भले वो हमारे रेलवे की लैंड हो या कुंभ मेले में यूपी सिंचाई या उत्तराखंड सिंचाई की जमीन हो, वहां पर भी कुछ निर्माण हमने देखे हैं जो कि लंबे समय से हो गए हैं। कुछ निर्माण परमानेंट नेचर के हैं, कुछ टेम्परेरी नेचर के हैं। सभी को अपने अपने स्तर से अधिकारी देखेंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गति देंगे। अतिक्रमण जहां से भी हटाया जाएगा वहां पे जो एक अधिकारी है, भले वो हमारे राजस्व विभाग का लेखपाल हो या कोई एसडीओ या जेई हो सिंचाई विभाग का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसडीओ हो, सभी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जो भी अधिकारी के क्षेत्र में या कर्मचारी के क्षेत्र में अतिक्रमण है और उसके क्षेत्र में हटा दिया गया है, पुनः अगर अतिक्रमण होता है तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
1: चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों घाटी के आज बटी पर्यटकों के लिए खुल है। यो मौक पर पर्यटकों में बहुत उत्साह देखने लीजिए मिलो। वहीं वन विभागल पर्यटकों हते घाटी की जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने का अपील करी। अधिकारियों पर्यटकों हते कहो कि ऊं फूलों के तोड़न, गद्दर फैलान या पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने वाल काम नहीं करो। अधिकारियों के अनुसार फूलों घाटी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकम छू, यसमें मौसम विभागक अलर्ट, स्थानीय मौसमक स्थिति और सुरक्षा मानकों के ध्यान में धरते हुए पर्यटकों के जरूरी दिशा निर्देश जारी करी जा रही, ताकि उन्हें यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहो। वहीं वन विभाग के अनुसार वर्तमान में फूलों घाटी में 300 हेबे ज्यादा प्रजातियों फूल और दुर्लभ वनस्पति मौजूद छन। आने वाले दिनों में घाटी आए ज्यादा रंग बिरंगी फूलों ढक जाल और यह प्राकृतिक सुंदरता अपन चरम पर पूज जाल। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए देहरादून नगर निगमल तैयारी तेज करहनी। मेयर सौरभ थपलियालल बता कि निगमक टीम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था के भल बनाण में ले रहे। उन्होंने कहा कि शहर संवेदनशील कचरा स्थलों पर खास ध्यान दी जा रो, एक दगड़ गद्दर उठाने वाले वाहनों को बखत बखत पर निगरानी ले करी जा रहे। उन्होंने बताया कि गील और सूखी गद्दर अलग अलग निस्तारण और सेग्रीगेशन के लिए लगातार अभियान चलाई जा रो, ताकि देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में भल प्रदर्शन कर सको।
5: उसको लेके हमारी तैयारी है, हमारी टीमें मुस्तैद हैं और हमारे जहाँ जहाँ पे जीवीपी पॉइंट्स हैं उनको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कूड़े जो उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे पहुँचे और उसके लिए कार्य हो रहा है और लगातार जो है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो, इसके लिए भी कार्य लगातार किया जा रहा है।
1: पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों हेबे संबंधित 17 शिकायत दर्ज करी गई। जिलाधिकारी ज्यादातर शिकायतों को मौके पर निस्तारण करते हुए बागबची मामलों में संबंधित अधिकारियों के बखत पर कार्रवाई करने का निर्देश दी। एक दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के जनता मिलन, सीएम हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों मिलने वाली शिकायतों की गंभीरता, प्राथमिक और संतोषजनक ढंगल निस्तारण करने लिजी निर्देश दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार आय सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील देहरादून विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी। प्रदेशम चार धाम यात्रा सुचारू रूपल जारी। शासन प्रशासन ओर बटी श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं करी जारी। हरिद्वारम सरकार जमीनों पर कब्जे हटाने के लिए विशेष अभियान चलाये जाल और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों घाटी पर्यटकों के लिए खुल गए। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यौ अंक समाप्त हो। नमस्कार।
0: FM 100.5 में

कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी का लिखा हुआ मदन मोहन का संगीत है, फिल्म का नाम है अनपढ़।

और अब सुनिए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में, फिल्म अनीता से।

0: रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी का। ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:50 हुए हैं। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से मैं आशुतोष उनियाल ज्ञान दर्पण के एक और नए अंक में आप सबका स्वागत करता हूं। ज्ञान दर्पण के इस अंक में आज हम बात करेंगे सप्ताह भर की राज्य की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो सामान्य ज्ञान से युक्त और परीक्षा उपयोगी हैं। इस अंक में हम बात करेंगे जनगणना 2027 के संबंध में, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन सेस और नीति एक्सट्रीम मैराथन रन 2026 के बारे में। श्रोताओं, जनगणना 2027 के अंतर्गत राज्य में रविवार को संपन्न हुई भवन गणना के दौरान कुछ आंकड़े सामने आए हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार उत्तराखंड की आबादी में 1.5 दशक में 26% का इजाफा हो गया है। इस अवधि में परिवारों की संख्या 40% जबकि मकान 33% बढ़ चुके हैं। इस गणना में और क्या कुछ सामने आया है उस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पूर्व जनगणना 2027 के विषय में ये जानना भी जरूरी है। श्रोताओं, भारत की जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। भारत की पिछली जनगणना वर्ष 2011 में संपन्न हुई थी। जनगणना 2027 श्रृंखला की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही मकान सूचीकरण कार्य से पूर्व 15 दिनों की स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस चरण में मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं तथा उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। पहले चरण के प्रश्न जनवरी 2026 में अधिसूचित किए जा चुके हैं। और दूसरा चरण जनसंख्या गणना, जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में यह सितंबर 2026 में आयोजित होगा। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, प्रवास, प्रजनन आदि से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। साथ ही साथ इस चरण में जातियों की गणना भी की जाएगी। श्रोताओं, जनगणना 2027 के अंतर्गत जनगणना के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण एवं गणना के अंतर्गत जनगणना निदेशालय उत्तराखंड के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 1,27,00,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कुल परिवारों की संख्या 28,30,000 हो गई है। प्रदेश में मकानों की कुल संख्या 45,00,000 दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मकानों की कुल संख्या लगभग 33,80,000 थी। अब यह संख्या बढ़कर 45,00,000 हो गई है। पिछले 1.5 दशक में राज्य में लगभग 11,02,000 नए मकानों का निर्माण हुआ है। ये आंकड़ा राज्य में तेजी से हुए बुनियादी ढांचे के विकास, नए कॉलोनियों के बसने और रियल एस्टेट सेक्टर में आए उछाल को दर्शाता है। वहीं प्रदेश में हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने हाइड्रोजन पावर नीति को मंजूरी दे दी है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है, उससे पहले आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। श्रोताओं, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस से उत्पादित हाइड्रोजन है। उत्पादन प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन न होने के कारण इसे भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश में प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता हासिल करना है। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, उर्वरक, रिफाइनरी और इस्पात निर्माण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। इसी के अंतर्गत अब प्रदेश के विभिन्न इलाकों में ग्रीन हाइड्रोजन वैली बनाने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग की ओर से इसके लिए कोर वर्किंग ग्रुप गठित किया जा रहा है। इस प्रस्तावित योजना के तहत हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली के साथ ही पिथौरागढ़ समेत तमाम जिलों में हाइड्रोजन वैली को विकसित किया जाएगा। इन क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, अनुसंधान के साथ ही उपयोग के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। वहीं प्रदेश सरकार अब सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों से भी ग्रीन सेस लेने की तैयारी कर रही है। श्रोताओं, ग्रीन सेस या हरित कर प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में घोषित एक पर्यावरण संरक्षण कर है। इसकी घोषणा 2024 में हुई थी, लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू 1 दिसंबर 2025 से किया गया। इसके अंतर्गत दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस को लागू किया गया था, लेकिन अब तक दोपहिया वाहन, केंद्र एवं राज्य सरकार के वाहन, दूसरे राज्यों के सरकारी वाहन, कृषि से जुड़े ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर, कंबाइन हार्वेस्टर, शव वाहन, एम्बुलेंस, सेना के वाहन, विद्युत बैटरी, सोलर, हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन अब प्रदेश सरकार सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों से भी ग्रीन सेस वसूल करने की तैयारी कर रही है। इस पर परिवहन विभाग का मानना है कि सीएनजी और हाइब्रिड वाहन पूर्ण रूप से ईवी की श्रेणी में नहीं आते। अब बात करेंगे नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 की, जिसे कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक स्पोर्ट्स आयोजन कहा जा रहा है। श्रोताओं, नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक एडवेंचर स्पोर्ट्स कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 31 मई 2026 को चमोली जिले की नीति घाटी में हुई और 2 जून 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। यह उत्तराखंड टूरिज्म का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स आयोजन है, जिसमें 900 से अधिक धावक शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई और क्यालू यानी हिम तेंदुआ नामक शुभंकर का अनावरण किया। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट विलेज विजन का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य भारत के सीमांत क्षेत्रों को व्यवस्थित विकास प्रदान करना है। नीति घाटी और हिमालय की दुर्गम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आयोजित ये दौड़ भारत की सीमा सुरक्षा और स्थानीय विकास के बीच संबंध स्थापित करता है। इस कार्यक्रम से स्थानीय उत्पादों, होमस्टे और युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर उत्तराखंड को एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी संतुलन और स्थानीय कार्य को जोड़ता है। श्रोताओं, ज्ञान दर्पण के अंत में आपको बताएंगे करियर को लेकर किस ओर है उत्तराखंड के युवाओं का रुझान। जी हाँ, दून विश्वविद्यालय के एक शोध में यह सामने आया है कि उत्तराखंड में जेंजी के करियर को लेकर किस प्रकार के रुझान हैं। दून यूनिवर्सिटी के शोध में यह सामने आया है कि प्रदेश में युवा पारंपरिक नौकरी की दौड़ से हटकर अब तेजी से स्टार्टअप, बिजनेस और स्वरोजगार की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक करीब 90% परिवारों में युवाओं की पहली पसंद सरकारी या निजी नौकरी हुआ करती थी, जिसके लिए वे वर्षों तक तैयारी करते थे, लेकिन नई पीढ़ी इस ढर्रे को बदल रही है। वर्ष 1995 के बाद जन्मे 30% से अधिक युवा अब नौकरी के इच्छुक नहीं है, बल्कि कम समय में अपना काम शुरू करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल के मुताबिक राज्य में युवाओं का झुकाव तेजी से स्टार्टअप और स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है। वहीं ग्रामीण महिलाएं भी खेती, पशुपालन और स्वयं सहायता समूह के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। श्रोताओं, ज्ञान दर्पण के अंक में इतना ही। आपसे अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने साथी आशुतोष उनियाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी देहरादून है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर रात के 8 बजने को है। अब प्रस्तुत है हिंदी वार्ता। आज की वार्ता का विषय है जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और उत्तराखंड। वार्ताकार हैं प्रदीप मेहता।
1: जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम में दीर्घकालिक बदलाव से है। स्वाभाविक रूप से ऐसा सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकता है, लेकिन मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण रही हैं। मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसी

जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य है। उदाहरण के लिए, ये कार चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या किसी इमारत को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करने से आते हैं। भूमि साफ करने और जंगलों को काटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कृषि, तेल और गैस संचालन मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि और भूमि उपयोग ग्रीनहाउस गैसों का कारण बनने वाले मुख्य स्रोत में से हैं। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऊपरी सुरक्षित सीमा 350 भाग प्रति मिलियन यानी कि 10 लाख में 350 भाग है। 2012 में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा थी 394 ppm, जो सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है। इसके बावजूद जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है और हमारी ऊर्जा जरूरतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मौसम परिवर्तन आम आदमियों के लिए तापमान में वृद्धि, अत्यधिक वर्षा व ग्लेशियर का पिघलना है, परंतु मौसम परिवर्तन इन सबसे कहीं अधिक है और इसके परिणाम और भी गंभीर हैं। जहां एक तरफ पूरा विश्व अभी मौसम परिवर्तन की बात कर रहा है, वहीं मौसम परिवर्तन के परिणाम पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर पर हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक दो दशकों से हिमालय क्षेत्र में बर्फ गिरना कम हो गया है। जिन क्षेत्रों में दो दो तीन तीन फीट तक बर्फ गिरा करती थी, आज वहां नाम मात्र की बर्फ गिरती है, जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, इसके कुछ उदाहरण हैं। साथ ही मौसम परिवर्तन की वजह से क्लाउडबर्स्ट जैसी घटना भी काफी ज्यादा संख्या में बढ़ गई हैं। इन घटनाओं के कारण हर साल हजारों लोग मर जाते हैं या अपनी आजीविका खो देते हैं, जिसका असर सतत विकास लक्ष्यों पर भी पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का असर बर्फबारी पर भी पड़ता है। जिस मौसम में हमको बर्फ चाहिए होती है, उस मौसम में बर्फ उतनी नहीं गिर रही है, जिसके परिणाम बहुत ही घातक होते हैं, खासतौर पर जल स्रोतों पर। वहीं वर्षा का अनियमित होना भी मौसम परिवर्तन के परिणाम स्वरूप है। पिछले कुछ वर्ष से हम देख रहे हैं कि जिस समय वर्षा चाहिए होती है, खासतौर पर कृषि फसलों की बुआई या रुपाई के समय, उस समय वर्षा नहीं हो रही है। और जिस समय वर्षा नहीं चाहिए होती है, यानी कि कृषि फसलों की जिस समय कटाई का समय होता है, नवंबर दिसंबर का महीना हो या मई और जून का महीना, उस समय अत्यधिक वर्षा का होना और जिसकी वजह से हमारे सतत विकास लक्ष्य, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है और वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इससे कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। बर्फ का कम होना भी एक चिंता का विषय है। मैं रामगढ़ का उदाहरण देना चाहूंगा। रामगढ़, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उद्यान के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले सेब की खेती शुरू की थी, जहां एक समय पूरे रामगढ़ में सेब के बगीचे हुआ करते थे, आज वहां सेब के बगीचे नाम मात्र रह गए हैं, जिसकी वजह है ठंड का कम होना और बर्फ का कम गिरना। वैज्ञानिकों का कहना है कि सेब की खेती के लिए कम से कम 800 घंटे तापमान 0 डिग्री से नीचे होना चाहिए, परंतु पिछले 2-3 दशकों में पर्वतीय क्षेत्र का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और सेब को जिस तापमान की जरूरत थी, वह तापमान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उत्पादन में कमी और सेब के बगीचे विलुप्त होते जा रहे हैं, जो एक उच्च आर्थिक फसल होने के कारण किसानों की आय पर प्रभाव डाल रही है। इसी तरह मौसम परिवर्तन का असर अन्य फसलों में भी पड़ रहा है। धीरे धीरे हमारी पारंपरिक फसलें कम होती जा रही हैं, क्योंकि जो तापमान, जो वर्षा उनको चाहिए होती है, उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। मौसम परिवर्तन का प्रभाव जल स्रोतों में भी देखने को आया है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर गांव अपने पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन बर्फ का कम गिरना, वर्षा के कम होने से या अनियमित होने से जल स्रोतों में पानी या तो कम हो गया है या वह विलुप्त हो गया है, जिसके कारण से लोगों का पलायन देखने को भी मिलता है। इसका परिणाम हमारी बड़ी नदियों में भी पड़ रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के कई स्रोत जो इन नदियों से जुड़ते हैं, उनमें पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिसका प्रभाव निचले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।

0: या आने वाले समय में दिखेगा। यहां से निकलने वाली नदियां उत्तरी पूर्व के कई प्रदेशों को सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध कराती है। आने वाले समय में यदि यह नदियां सूख गई तो कई प्रदेश पानी के मोहताज हो जाएंगे और इसका असर पूरे भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आपदाओं में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। यदि पिछले वर्ष की ही बात करें तो पूरे हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा की वजह से बाढ़ का प्रकोप रहा, जिसकी वजह से न केवल कई जाने गई बल्कि अत्यधिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। मौसम परिवर्तन की वजह से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं की वजह से न केवल जैव विविधता पर प्रभाव पड़ा है बल्कि वातावरण में प्रदूषण, कार्बन का उत्सर्जन तथा जल स्रोतों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिवर्ष अरबों रुपए की पारिस्थितिकी सेवाओं का नुकसान पर्वतीय क्षेत्रों को हो रहा है। इसकी वजह से कई सतत विकास, जैसे सतत विकास 6 स्वच्छ पेयजल, सतत विकास 13 क्लाइमेट एक्शन व सतत विकास 15 जमीन के ऊपर जीवन आदि प्रभावित हो रहे हैं। मौसम परिवर्तन का असर स्वास्थ्य पर भी गंभीर रूप से देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मलेरिया व डेंगू कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही हैं। मौसम परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि महिला आधारित है और मौसम परिवर्तन की वजह से महिलाओं को कृषि में और ज्यादा श्रम करना पड़ रहा है। वहीं यदि पानी की बात करें तो कहा जाता है कि पर्वतीय महिलाओं का आधा जीवन सिर्फ पहाड़ में पानी लाने में निकल जाता है और जैसे जैसे मौसम परिवर्तन की वजह से पानी के स्रोत घटते जा रहे हैं, महिलाओं को पानी के लिए और लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। यही हाल पशुओं के चारा लाने के लिए व घर के ईंधन लाने के लिए भी है। आज मौसम परिवर्तन की वजह से कई पर्वतीय क्षेत्र और खास तौर पर हमारे पर्यटक स्थल, चाहे वो मसूरी और नैनीताल, अल्मोड़ा, इन तमाम जगहों पर आपको अब पंखे और यहां तक कि एयर कंडीशनर भी देखने को मिल जाएंगे। अभी भी समय है कि हम लोग इस मौसम परिवर्तन को कम कर सकते हैं। कृषि में हम उन प्रजातियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मौसम परिवर्तन के हिसाब से अनुकूल हों। साथ ही हमको कृषि में जैव विविधता लानी होगी, जिससे यदि एक फसल मौसम परिवर्तन की वजह से खराब हो जाती है तो दूसरी फसल से कृषकों को कुछ आय हो सके। यदि कृषक सिर्फ एक फसल, चाहे वो सेब हो या कीवी की फसल है, उसको उगाते हैं और यदि उसके फूल आने के समय में या फल बनने के समय में ओलावृष्टि हो जाती है तो पूरी फसल साल भर की खत्म हो जाती है, तो ऐसे में किसानों को बहुत नुकसान होता है। वहीं अगर किसान अपनी कृषि को विभाजित करें और अलग अलग फसलों को उगाएं तो मौसम परिवर्तन की वजह से होने वाले प्रभाव कम हो जाते हैं। पानी के लिए हमारे परंपरागत तरीके, चाल खाल, उनको बचाना होगा और नए खाल चाल को बनाना होगा, जिससे जो भी बर्फ या वर्षा हो रही है उसको हम रोक सकें और अपने स्रोतों को पुनर्जीवित कर सकें, जिससे हमारी कृषि बेहतर होगी व पेयजल की समस्या भी कम होगी। साथ ही यदि जंगलों में नमी रहती है तो आग लगने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। शहरों में रहने वाले नागरिक भी मौसम परिवर्तन को कम करने में योगदान दे सकते हैं। हम किस तरीके से अपना रहन सहन बदल सकते हैं, उससे कितना कार्बन उत्सर्जन होता है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हम पानी का दुरुपयोग ना करें और पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल करें। मौसम परिवर्तन एक देश या क्षेत्र की लड़ाई नहीं बल्कि एक पूरे विश्व की लड़ाई है, जिसे इस मानव प्रजाति ने अभी सुलझाना है, वरना हमारे आने वाली पीढ़ियां शायद इस सुंदर पृथ्वी का आनंद नहीं उठा सकेंगी। मैं अंत में बराक ओबामा का कथन दोहराना चाहूंगा, वी आर द फर्स्ट जेनरेशन टू फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जेनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। अर्थात हम वो पहली पीढ़ी हैं जिसने मौसम परिवर्तन के परिणामों को देखा है और सहन किया है, और हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जो इसके लिए कुछ कर सकती हैं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता जिसका विषय था जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और उत्तराखंड। वार्ताकार हैं प्रदीप मेहता। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 8:10 हुए हैं।

0: plugging of the leakage, the pilferage, which was happening earlier on before this Jam Trinity came into effect. Yeah, Shubma, one cannot actually ignore the government scheme specially directed at the women folk, especially when we talk of the BPL households and the rural folk. Now, PM Ujjwala Yojana is one such scheme which has really revolutionized, you know, if you can say, you know, the healthcare, the upliftment of the healthcare of the rural women. Now, how do you see this PM Ujjwala Yojana actually, you know, benefiting the rural women?
1: That's a very interesting thing that you've asked. And frankly speaking, when PM Ujjwala, which is basically supply of LPG cylinders to the places which were earlier using only firewood, so rural areas, semi-rural areas, you know, those sort of areas. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke-laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme, because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, I mean, while the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised, the larger, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that had happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in many those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes.
0: Yeah, absolutely, Shubma. Aditi, Shubma abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL household ko khas karke Ujjwala Yojana ne benefit pahunchaya hai rural women folk ko khas karke. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें, तो
2: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को. क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी. जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
0: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभमय, सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभमय, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
1: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
0: जी
1: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया।

समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम तरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया।

0: tried, which had not worked, primarily because people lacked the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing, because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary, and so that's about it. Here, a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to pay, repay loans. And then, because the mudra loan, as you can see, is of three stages, the Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubhma. देखिए अभी शुभ ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की. स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान. ये लगभग

0: 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
1: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज

0: का, इससे ये प्रूव हो रहा है और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहां बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है, इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी
1: जी।
0: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम गरीब कल्याण। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात के 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में और हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश

0: में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

0: सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्न

0: मतदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Mi Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
5: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
4: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
5: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway.
4: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman.
6: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. SEPA is a blueprint of our shared future.
4: Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement.
6: More than 10 consignments are being shipped availing preferential duty access in Oman from different parts of India. Oman is

अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी कृष्ण कन्हैया। अगला गीत अलका याग्निक की आवाज में है, फिल्म साजन से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्री ब्रजेंद्र हर्ष, श्रीमती मीरा भारद्वाज और श्री कुंवर पाल सिंह धवल।
1: आज आकाशवाणी देहरादून पर एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 कवि भाग ले रहे हैं। मैं ब्रजेंद्र हर्ष, श्री कुंवर पाल सिंह धवल, गीत उनकी विदा है, श्रीमती मीरा भारद्वाज जी शुरुआत करता हूँ एक मुक्तक के साथ कि सवेरा हो गया जग जाइए अब, सवेरा हो गया जग जाइए अब, खुशी द्वारे पर दस्तक दे रही है, हटा भी दीजिए खिड़की से पर्दा, हटा भी दीजिए खिड़की से पर्दा, सुबह अंगड़ाई कब से ले रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वप्रथम बहन मीरा भारद्वाज जी को कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें।
2: धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। आए शरण हम हे शारदे माँ, ज्ञान की ज्योति उजियार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, झंकृत वीणा तुमसे है जग में, साधक तुम्हारा अभय है मग में, शीश झुकाए सभी जन खड़े हैं, हमको भी उत्थान विस्तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। कविता क्या है?
1: बहुत सुंदर,
2: धन्यवाद। इन पंक्तियों में देखिए कि कविता क्या है। मन के हर संवेग को देती है आकार, सहज है, सरल है, पार

0: ही विस्तार।
1: क्या बात कर,
0: आवास है ऊंचाई पर सुनती हर उद्गार, शब्दों का संसार कविता चिंतन का है सार। मैं जो रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह एक दृश्य पर आधारित है। एक मजदूर स्त्री तसला लिए हुए अपने बच्चे को कनखियों से देखती है, जिसको उसने सीमेंट के बोरों के मध्य स्थान देकर बैठाया है। प्रस्तुत है। पहुँच नहीं पाई गगन आज फिर, ठिठक धरातल पर आई, अबोध शिशु की देख छवि कांप उठी, आंखें भर आई। नहीं पहुंची गगन आज फिर, ठिठक धरातल पर आई, अबोध शिशु की देख छवि कांप उठी, आंखें भर आई। कैद हुआ बोरों के मध्य, नटखट कैसा खेल रहा, आते जाते राहगीरों को देख देख वह मचल रहा। श्याम सीमेंट उसका हम जोली, मानो खेल रहा हो होली, हाथ पांव मुख सने हुए, बोल रही अखियां भोली,
1: क्या बात,
0: बोल रही अखियां भोली।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: मात्र मिनट का दृश्य नहीं, मात्र मिनट का दृश्य नहीं, दर्पण यह तस्वीर है, मेहनत कश के जीवन लिपटी अजगर जैसी पीर है। हाँ, मात्र मिनट का दृश्य नहीं, यह दर्पण है तस्वीर है, मेहनत कष के जीवन लिपटी अजगर जैसी पीर है। विवश विडंबना मौन रहे, विवश विडंबना मौन रहे, ममता घुट घुट रोती है, और एक हुए हूँ पीठ पेट, कुंठा ही कुंठा होती है, कुंठा ही कुंठा होती है। समृद्ध नींव की बाहों में, समृद्ध नींव की बाहों में, इन शिशुओं का बलिदान है, और स्वेद कणों से अभिसिंचित भारत का निर्माण है, भारत का निर्माण है। रचना प्रस्तुत है बेटी। अच्छा लगा बिना आहट उसका यूं आना, अच्छा लगा बिना आहट उसका यूं आना, आकर बाहें फैलाना, जैसे प्यासे को सागर का मिल जाना। आज अच्छा लगा बिना आहट उसका यूं आना, आकर बाहें फैलाना, जैसे कि प्यासे को सागर का मिल जाना। सिमट गई उसकी बाहों में मैं, सिमट गई उसकी बाहों में, मुझे भी तलाश थी सशक्त कंधों की, गहरे भंवर की उलझन, मस्तिष्क की असह्य थकन, घबराता अवसादित मन टिका दिया उसके कंधों पर, गहरे भंवर की उलझन, मस्तिष्क की असह्य थकन, घबराता अवसादित मन टिका दिया उसके कंधों पर। स्नेहिल बाहुपाश की दृढ़ता, कंपित हथेलियों का स्पर्श, यकायक परिपक्व हो गया, हो गया नई ऊर्जा का संचरण। बिना कुछ कहे समझ मेरी उलझन, निशब्द तसल्ली और शांति देती मेरी युवा बेटी, आज माँ के इतना करीब थी। कितने ना समझ निर्मम है वे लोग, जो कर देते हैं भ्रूण हत्या, जो कर देते हैं भ्रूण हत्या।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मीरा जी। बेटी को लेकर के आपने जो रचना पढ़ी कि प्यार का कुछ तो नाम रहने दो, प्यार का कुछ तो नाम रहने दो, दिल को इसका मुकाम रहने दो, हमको जब साथ साथ रहना है, ये दुआओ सलाम रहने दो, ये दुआओ सलाम रहने दो। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। गुवर पाल सिंह धवल जी यहाँ उपस्थित है, उनके आह्वान के लिए मैं एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं हो था जिसकी वो गहराई नहीं होती, नहीं हो था जिसकी वो ही गहराई नहीं होती, मोहब्बत में लुटा जो हो, मोहब्बत में लुटा जो, उसकी भरपाई नहीं होती। वफा पर भी रहा होगा कभी इल्जाम कोई तो, वफा पर भी रहा होगा कभी इल्जाम कोई तो, जफा की ही जहां में सिर्फ रुसवाई नहीं होती, जफा की ही जहां में सिर्फ रुसवाई नहीं होती। मैं आमंत्रित करता हूं श्री कुंवर पाल सिंह धवल जी को।
1: धन्यवाद। मैं एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, पहले उसके पश्चात गीत प्रस्तुत करूँगा। स्वप्न चलते रहे छंद बनते रहे,

गीत की चाह में जिंदगी ढल गई। माँ शारदे को स्मरण करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मत कर इतना छल बदली

0: छिल धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर कुंवर पाल सिंह जी, आपका यह गीत समसामयिक हो सकता था यदि आज ये बादल बरस जाएं। आपकी रचना के लिए समर्पित करता हूँ एक मुक्तक कि दिल में जो होता है उसकी लब बयानी हो न हो।
0: क्या बात।
1: दिल में जो होता है उसकी लब बयानी हो न हो, प्यार हो उसकी भले कोई कहानी हो न हो।
0: क्या बात।
1: और दर्द हो तो खुद ब खुद बाहर निकल आ जाएगा। प्यार हो तो खुद ब खुद बाहर निकल ही आएगा। आंख रो देंगी भले, आंख रो देंगी भले ही उनमें पानी हो न हो।
0: क्या बात।
1: तो इस मुक्तक के बाद
2: संचालन कर रहे हैं, मैं उनको उन्हीं की पंक्तियों से बुलाती हूँ कि मैंने जब भी दिल से अपने उस हाकिम का नाम लिया, कठिन समय ने अरमानों का कसके दामन थाम लिया। कसके दामन
1: क्या बात,
2: थाम
1: क्या
2: लिया।
1: बात, बहुत
2: आदरणीय विजेंद्र हर्ष जी,
1: पुराना गीत आपने याद रखा, बहुत बहुत आभार आपका। मैं आप एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गीत का उन्वान है चंदन की खुशबू आती है। देश से संदर्भित है, राष्ट्र के संदर्भ में आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उसको सामने रखते हुए मैं गीत प्रस्तुत करता हूँ।
0: स्वागत।
1: उन्मुक्त पवन के संग बहकर जीवन की खुशबू आती है। उन्मुक्त पवन के संग बहकर

0: देश की पावन माटी से चंदन की खुशबू आती है।
1: वाह
0: और बंद है कि यह वो माँ है जो सबका ही जीवन महकाया करती है, जो अन्य रूप में खेत खेत में स्वर्ण उगाया
1: करती
0: करती
1: है।
0: है। इस माटी की पावन छवि में उपकार दिखाई देता है, वसुधा कुटुंबकम का जिसमें संचार दिखाई देता है।
1: सुंदर
0: धरती के कण कण से अभिनंदन, धरती के कण कण से अभिनंदन की खुशबू आती है, इस देश की पावन माटी से चंदन की खुशबू
1: आती
0: आती
1: है।
0: है। और अगला बंद, सूरज की किरणें हर प्रातः उसका अभिवादन करती है, गंगा सम पुनीत धाराएं इस भू का सिंचन करती हैं, इसमें सुगंध श्रद्धा की भी अनमोल आस्था गहरी है, इसकी सीमाओं का सचेत उत्तंग हिमालय प्रहरी है,
1: वाह क्या बात है।
0: इसके खेतों खलिहानों से उपवन की खुशबू आती है, इस देश के पावन माटी से चंदन की
1: की खुशबू
0: खुशबू
1: आती
0: आती
1: है।
0: है।
1: वाह
0: हर रोज ओस की बारिश ही इस धरती को नहलाती है, निस्वार्थ भारतीय प्रेम उमा बस अहलाद बरसाती है, सुरभित कर माटी का कण कण अभिषिक्त सुवासित करती है, शीतल बयार इसका आंचल छूकर आभाषित करती
1: आती
0: है,
1: है।
0: और बरखा का जल भी पी लेती तो सावन की खुशबू आती
1: आती
0: है,
1: है बहुत
0: इस
1: सुंदर
0: देश की पावन माटी से
1: माटी
0: चंदन की
1: की
0: खुशबू
1: खुशबू
0: आती
1: आती
0: है।
1: है एकदम
0: और
1: से।
0: आखिरी बंद आपके सामने प्रस्तुत है कि अनिमेष इसे संघर्षों का अनुदान निशाएं देती हैं, अन्वेषण का इस माटी को विज्ञान दिशाएं देती
1: देती
0: हैं,
1: हैं
0: परिवर्तन की अभिला

दहशत होती नहीं कभी, ममता ही इसको प्यारी है। इस धरती से कान्हा जी के, इस धरती से कान्हा के वृंदा वन की खुशबू आती है, इस देश के पावन माटी से चंदन की खुशबू आती है, उन मुक्त पवन के संग बहकर जीवन की खुशबू आती है, इस देश की पावन माटी से चंदन की खुशबू आती है। और इसके बाद एक गीत और आपके समक्ष प्रस्तुत है, और गीत का शीर्षक है तेल बिना जो दीपक में।

पाते। मैं निर्जीव बिना संबोधन बोलो कैसे लिखूं पाते। सिर्फ कल्पनाओं के बल पर अब तक जीता आया हूं मैं। सिर्फ कल्पनाओं के बल पर अब तक जीता आया हूं मैं। तप्त वेदनाओं का रक्तिम जल ही पीता आया हूं मैं। तुमको लेकर कई जन्म से असहनीय ढो बोझ रहा हूँ। तुमको लेकर कई जन्म से असहनीय ढो बोझ रहा हूँ। और तुम्हें पत्र लिखने को सदियों से संबोधन खोज रहा हूँ। तुम्हें पत्र लिखने को सदियों से संबोधन खोज रहा हूँ। अंतर व्यथा कसकती है अब दिल की।

सुलझन, ये उलझन तुम ही सुलझा दो। कैसे सुलझाऊं मैं उलझन, ये उलझन तुम ही सुलझा दो। आह्वान कैसे कर पाऊं बिन संबोधन तुम ही बता दो। आह्वान कैसे कर पाऊं बिन संबोधन तुम ही बता दो। मन उपवन भी सूख गया अब कोई कली नहीं मुस्काती। मन उपवन भी सूख गया अब कोई कली नहीं मुस्काती। मैं निर्जीव बिना संबोधन बोलो कैसे लिखूं पाती। और अंतिम बंद है कि मेरे मन पर जो अंकित है वो तुम तक कैसे पहुंचाऊं। संबोधन के बिना हृदय के भाव तुम्हें कैसे समझाऊं। साहस टूट रहा है मैंने अपना सारा ही लिख डाला। और बेसुध हो जाने से पहले तुमको अपना प्रिय लिख डाला। बेसुध हो जाने से पहले तुमको अपना प्रिय लिख डाला। जो सुधी अब आई है यदि वो कई सदी पहले आ जाती। जो सुधी अब आई है यदि वो कई सदी पहले आ जाती। मैं निर्जीव बिना संबोधन बोलो कैसे लिखूं पाती। बोलो कैसे लिखूं पाती। तेल बिना जो जी पक में निर्जीव।

कैसे लेखों पाते मुक्तक आप लोगों के समक्ष कि हमेशा जीतने वाला ही ताकतवर नहीं होता, या यूं कहिए हमेशा जीतने वाले ही ताकतवर नहीं होते। जो कट जाते हैं सरहद पर वो केवल सर नहीं होते, सवारी रोज जाती है हजारों। जिंदगी मसलन तराशे जो भी जाते हैं सभी पत्थर नहीं होते, सभी पत्थर नहीं होते। मीरा जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप

0: अपनी एक रचना और प्रस्तुत कर सकती हैं।
1: रचना प्रस्तुत है कि खगकुल विचलित दादुर मोर, प्रश्न चिन्ह है चारों ओर, तरवर मौन तपस्वी सम, पृथ्वी को जीवों का गम, उठे दृष्टि ऊपर की ओर, बरस बरस घटा घनघोर, बरस बरस घटा घनघोर, कोमल पत्तों का झुलसा तन, दग्ध दरखता शाख वसन, कोमल पत्तों का झुलसा तन, दग्ध दरखता शाख वसन, तपते भीषण व्यग्र विवर, घूमे अंडज इधर उधर, सूना मनसा पोखर छोर, बरस बरस घटा घनघोर, बरस बरस घटा घनघोर, झोपड़ शाला घर आंगन, झोपड़ शाला हर आंगन, समन चाहता जड़ चेतन, श्रम की बुझती नहीं प्यास है, तृष्णा को तृप्ति की आस है, पीहू पीहू का मचा है शोर, बरस बरस घटा घनघोर, बरस बरस घटा घनघोर।
0: मैं एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जीवन क्या है गठबंधन है, कुछ थोथे अनुबंधों का, अनुशासन बिन अनुपालन है, सारहीन संबंधों का, मान अनुग्रह ज्ञान साधना, लगती जैसे मजबूरी, बस्ती जितनी चौराहे से, आंगन आंगन की दूरी, तपता मन कैसे गा पाए, तपता मन कैसे गा पाए, गीत बस

0: मंत्रण पीड़ा के संदर्भों में घुटी घुटी सी विचलित आहे तृष्णाओं के गर्भों में ममता अचल की प्रवासनी सहती घात कमंदों का जीवन क्या है गठबंधन है कुछ थोथे अनुबंधों का तीव्र वेदनाओं का बादल क्रंदन क्रंदन बोल रहा जीवन है भयभीत आज जो मौत के साथ किलोल रहा घायल जिस्म किया सागर ने घायल जिस्म किया है सागर ने ही क्यों तटबंधों का जीवन क्या है अनुपालन है कुछ थोथे अनुबंधों का अंतिम बंध है सिंदूरी सपनों का चंदन रक्तिम होकर बिखर गया अंधियारों का रूप चांदनी खाते खाते निखर गया बदल गया विपरीत हवा के रुख उड़ते खग वृंदों का और जीवन क्या है गठबंधन है कुछ थोथे अनुबंधों का जीवन क्या है गठबंधन है कुछ थोथे अनुबंधों का अनुशासन बिन अनुपालन है सारहीन संबंधों का। और अब गोष्ठी के का समापन हम एक मुक्तक के साथ करते हैं। एक मुक्तक हमारे
1: हार भी हूँ कभी तो कभी जीत हूँ, ये मैं जीवन को परिभाषित करने के लिए मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ।

0: मैत्रीन मुक्तक दवल जी और आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में जो तीन कवि उपस्थित हुए हैं उनका परिचय देते हुए बताता हूं कि कुंवर पाल सिंह धवल जी, दूसरे श्रीमती मीरा भारद्वाज जी और मैं ब्रजेंद्र हर्ष।
1: कवि गोष्ठी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे, जिसमें प्रतिभागी कवि थे श्री ब्रजेंद्र हर्ष, श्रीमती मीरा भारद्वाज और श्री केपी सिंह से। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर रात के 10:27 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें हम आपकी फरमाइश को आमंत्रित करते हैं। तो आप अपने फ़ोन उठाइए और हमें भेजिए 7088000731 पर अपना मैसेज, अपने शहर के नाम, अपने पसंद के गीत के साथ साथ में अपना नाम भी भेजिए। और इस कार्यक्रम की शुरुआत इस पहले गीत के साथ करते हैं, जवानी दीवानी फिल्म से ये गीत है, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की है। तब तक के लिए ये गीत सुनिए और अपने मैसेज को हमें भेजिए।

कार्यक्रम में हमारे पास मैसेजेस काफी सारे आ चुके हैं। तो पहला मैसेज जो हमें मिला है दिल्ली गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही हमें मैसेज मिला है और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है जलालबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित अहूजा की। हमें मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद आराम और मोहम्मद आलम हाशमी, जो कि नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमें मैसेज कर रहे हैं। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का भी हमें मैसेज मिला है। साथ ही मैसेज भेजने वाले हमारे अगले श्रोता मोहल्ला हलवाइयान शेरकुट ज़िला बिजनौर से हैं, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी भाटिया, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर हमें मैसेज कर रहे हैं। गंजडूंडवारा, उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव हमें मैसेज कर रहे हैं। और मैसेज हमें करने वाले अगले श्रोता हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, सिंधौली बरेली से जशान वारसी। साथ ही मैसेज भेजने वाले हमारे पास अगले श्रोता हैं रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि, कृष्णा घोटके हमें मैसेज कर रहे हैं। और इन सबकी पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म ब्रह्मचारी से।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है परी महल कासगंज से आदाब खान नबील खान आरफा एमला एम असलम सैफी मास्टर जाहिद अली मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान हमें मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं गणेशपुर गंजुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख शेख शमा परवीन साइमा फारूक सरफराज शेख गुलनाज गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। साथ ही हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं। हमारे पास मैसेज भेजने वाले अगले श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साब राही मेरजहाँ आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज आया है गांव चौलदा बागवत से संजय ढिंग्या नमन ढिंग्या और अपार ढिंग्या हमें मैसेज कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास और मिला है और वो मैसेज भेज रहे हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज मिला है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया का। एक और फरमाइश आई है दीपक कुरहाड़े वंदना कुरहाड़े आशीष कुरहाड़े और कुमारी कल्पना कुरहाड़े की शांति निवास लेगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से। मैसेज भेजने वाले अगले श्रोता हैं राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी गांव फ्रांसी जिला हिसार से हमें ये मैसेज कर रहे हैं और इन सबकी पसंद का गीत अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाज़ में है। फिल्म है तेजाब।

इस कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है कांति निकेतन राजनगर मधुबनी से, रुद्र प्रताप गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, शारदा गुप्ता और कुशेश्वर कांति गुप्ता, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से, मुकेश कुमार गुप्ता, रानी गुप्ता, नीलम, रश्मि कुसुम और रूपा इलाहाबादी की। साथ ही हमें मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं आदर्श नगर मालौट पंजाब से, राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी भलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का हमें मैसेज मिला है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चंदा, जसवीर, जस्सी और सीता गीता का मैसेज साथ में मिला है। एक और मैसेज आया है गंजटुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी हमें मैसेज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से मैसेज मिला है मोहम्मद इसफाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशवाक, आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ का। साथ ही मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, कुलदीप, सिमो, एकम, दमन और अभिजोत जो कि भटिंडा पंजाब से हमें मैसेज कर रहे हैं। और एक और मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये मैसेज हमें बिजनौर से मिला है आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अरफात अदीब और कादिर का। और इन सबकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

रात के 10:54 हो गए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और अब पेश है कार्यक्रम की कुछ अंतिम फरमाइश जो हमें मिली है ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। साथ ही मैसेज आया है गांव हीरावली वाजिलगा पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, रामजी हमें मैसेज कर रहे हैं। एक और हमें मैसेज मिला है मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजास, और चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, देविस, विमला और सतीश अनेजा का। मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं वारसी क्लब सिंदौली मीरगंज, बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। साथ ही अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का फोन आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। मैसेज करने वाले अगले श्रोता मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का हमें मैसेज मिला है, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ हमें मैसेज कर रहे हैं, और एक मैसेज हमारे पास और आया है जो कि हमें भेजने वाले श्रोता हैं, उनका नाम है गांव में डाकघर निम्नावाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर हमें मैसेज कर रहे हैं। और एक और मैसेज हमें मिला है तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज, भानु राज, अमिता खन्ना और अम्मी का। कार्यक्रम में ये आखिरी मैसेज हमें मिला है छोटा पूरन, पार्वती, बाला प्रसाद, सूरज बाली और भानु राज का। ये मैसेज भी हमें तेलंगाना से मिला है। और इन सबकी पसंद का ये आखिरी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म ममता से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11 बज रहे हैं, अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
5: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
4: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said, both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said, Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman